0: This is Radio Marxist.
1: 您好。
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shutrandariki Hudiya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: It was basically revision of the notes that I prepared.
9: Last question, उन एक्सपीरियंस के लिए जो यूसीएस के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके स्टेप क्या होने चाहिए?

0: This is Radio Marxus.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shudrandiriki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
8: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

मुझको न जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मुझे हर जन्म में मां की जरूरत पड़ती है और तुम उसी मां से मेरे जाति के सूत्र जोड़ने लगते हो, विवादों में पड़कर परिभाषाएं रचने लगते हो कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी हूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मानव हूं। मानवता मेरा धर्म है, तुम्हारा कल्याण मेरा कर्म है। मैं गीता का ज्ञान हूं, कुरान की तालीम हूं, बाइबल की शिक्षा,

जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं, और तुम्हारे लिए मैं एक फकीर साईं बाबा हूं। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूं जब तुम हो, और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। एक बार जो भी जबान से मुझे नाम लेकर पुकारता है, मैं माया मोह पाप दोष कष्ट लोभ अहंकार से उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाता हूं, क्योंकि मैं साईं हूं, साईं बाबा, अल्लाह मालिक।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के
1: सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे याचना। नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ओलिविए बॉकुल्ट के लंदन मिशन को लेकर तनाव जारी है। एक प्रेस कम्युनिके में उनकी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया है कि बरतानी संसद में उनकी पहल का विरोध करने वाले समूह द्वारा उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। बयान में यह भी कहा गया कि एक वीडियो और एक फोटो प्रसारित की जा रही है जिसका उपयोग प्रतिनिधिमंडल के अनुसार यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि ओलिविए बॉकुल्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया है या शगस के मुद्दे से विश्वासघात किया है। हालांकि इस चरण पर ये आरोप केवल प्रतिनिधिमंडल के प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए दावे हैं। करीब 450 मॉरिशन विद्यार्थियों को जून महीने में कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए मैथमेटिक्स यानी गणित परीक्षा के पेपर 3 और पेपर 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून को दोपहर बाद 1:30 बजे उनके अपने कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दी थीं। हालांकि बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्रों के लीक होने की घोषणा की। MES यानी मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट की ओर से प्रभावित विद्यार्थियों को पुनर्परीक्षा के बारे में पोस्ट द्वारा सूचित किया गया तथा मीडिया के जरिए भी। MES के कैम्ब्रिज सेक्शन प्रमुख के अनुसार कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इन परीक्षाओं को दोबारा आयोजित करने का प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि उसकी परीक्षा प्रणाली की अखंडता बनी रहे और उसकी योग्यताओं को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में मान्यता मिलती रहे। पेपर 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। विदेश समाचारों में भारत के कई राज्यों में आज मॉनसून की अवधि दस्तक देने वाली है। 24 घंटों के अंदर अंदर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी यूपी और महाराष्ट्र में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इन सभी राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे और बारिश होगी, कहीं कहीं पर बादलों के गरजने की भी संभावना है। दोपहर बाद ये बादल अन्य जगहों तक फैल जाएंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 और अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात दक्षिण पूर्वी इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और बारिश की भी संभावना बनी हुई है। हवा तेज होगी और प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पूर्व में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह सूर्योदय 6:39 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।
3: You're listening RM Free Radio.

जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने उनके अमल बर्बाद किए। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर उतारा गया, और वही उनके रब के पास से हक है, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उतार दी और उनकी हालतें सवार दी। ये इसलिए कि काफिर बातिल के पैरो हुए और ईमान वालों ने हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से है। अल्लाह लोगों से उनके अहवाल यूं ही बयान फरमाता है।

0: जल्द उन्हें राह देगा और उनका काम बना देगा और उन्हें जन्नत में ले जाएगा, उन्हें उसकी पहचान करा दी है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा, और जिन्होंने कुफ्र किया तो उन पर तबाही पड़े और अल्लाह उनके अमाल बर्बाद करे।
1: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها

यह इसलिए कि उन्हें नागवार हुआ जो अल्लाह ने उतारा तो अल्लाह ने उनका किया धराकारत किया, तो क्या उन्होंने जमीन में सफर न किया कि देखते उनसे अगलों का कैसा अंजाम हुआ। अल्लाह ने उन पर तबाही डाली, उन काफिरों के लिए भी वैसी कितनी ही हैं। ये इसलिए कि मुसलमान का मौला अल्लाह है और काफिरों का कोई मौला नहीं।

बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए बागों में जिनके नीचे नहरें रवां, और काफिर बरतते हैं और खाते हैं जैसे चौपाए खाएं, और आग में उनका ठिकाना है। और कितने ही शहर की इस शहर से कुव्वत में ज्यादा थे जिसने तुम्हें तुम्हारे शहर से बाहर किया, हमने उन्हें हलाक फरमाया तो उनका कोई मददगार नहीं। तो क्या जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो उस जैसा होगा जिसके बुरे अमल उसे भले दिखाए गए और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चले।

وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة

अहवाल उस जन्नत का जिसका वादा परहेजगारों से है, उसमें ऐसी पानी की नहरें हैं जो कभी न बिगड़े, और ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका मजा न बदला, और ऐसी शराब की नहरें हैं जिसके पीने में लज्जत है, और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ किया गया, और उनके लिए उसमें हर किस्म के फल हैं और अपने रब की मगफिरत। क्या ऐसे चैन वाले उनके बराबर हो जाएंगे जिन्हें हमेशा आग में रहना और उन्हें खौलता पानी पिलाया जाए कि आंतों के टुकड़े टुकड़े कर दे।

और उनमें से बास तुम्हारे इरशाद सुनते हैं, यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास से निकल कर जाएं, इल्म वालों से कहते हैं अभी उन्होंने क्या फरमाया। ये हैं वो जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी और अपनी ख्वाहिशों के ताबे हुए, और जिन्होंने राह पाई अल्लाह ने उनकी हिदायत और ज्यादा फरमाई और उनकी परहेजगारी उन्हें अता फरमाई।

0: والله يعلم متقلبكم ومثواكم।
1: तो काहे के इंतजार में है मगर क्यामत के कि उन पर अचानक आ जाए, कि उसकी अलामतें तो आ ही चुकी हैं, फिर जब वो आ जाएगी तो कहां वो और कहां उनका समझना। तो जान दो कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं, और ए महबूब अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की माफी मांगो, और अल्लाह जानता है दिन को तुम्हारा फिरना और रातों को तुम्हारा आराम लेना।

ये इसलिए कि उन्होंने कहा उन लोगों से जिन्हें अल्लाह को उतारा हुआ नागवार है, एक काम में हम तुम्हारी मानेंगे और अल्लाह उनकी छुपी हुई जानता है, तो कैसा होगा जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करेंगे उनके मुंह और उनकी पीठें मारते हुए। ये इसलिए कि वह ऐसी बात के ताबे हुए जिसमें अल्लाह की नाराजगी है और उसकी खुशी उन्हें गवारा न हुई, तो उसने उनके आमाल अकारत कर दिए।

0: وَرَبُّكُمْ
1: क्या जिनके दिलों में बीमारी है इस घमंड में है कि अल्लाह उनके छुपे बैर जाहिर न फरमाएगा, और अगर हम चाहें तो तुम्हें उनको दिखा दें कि तुम उनकी सूरत से पहचान लो, और जरूर तुम उन्हें बात के असलूब में पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे अमल जानता है, और जरूर हम तुम्हें जांचेंगे यहां तक कि देख लें तुम्हारे जहाद करने वालों और साबिरों को, और तुम्हारी खबरें आजमा लें।

0: बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल की मुखालिफत की, बाद इसके कि हिदायत उन पर जाहिर हो चुकी थी, वो हरगिज अल्लाह को कुछ नुकसान न पहुंचाएंगे और बहुत जल्द अल्लाह उनका किया धरा अकारत कर देगा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने अमल बातिल न करो। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका फिर काफिर ही मर गए, तो अल्लाह हरगिज उन्हें न बख्शेगा।
1: फला तहिनु वतदउ इला السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم।
0: तो तुम सुस्ती न करो और आप सुलह की तरफ न बुलाओ और तुम ही गालिब आओगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हरगिज तुम्हारे आमाल में तुम्हें नुकसान न देगा। दुनिया की जिंदगी तो यही खेल कूद है और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो वो तुमको तुम्हारे सवाब अता फरमाएगा और कुछ तुमसे तुम्हारे माल न मांगेगा।
1: इन

0: अगर उन्हें तुमसे तलब करे और ज्यादा तलब करे तुम बुख़ल करोगे और वो बुख़ल तुम्हारे दिनों के मैल जाहिर कर देगा। हाँ हाँ ये जो तुम हो बुलाए जाते हो कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो तुम में कोई बुख़ल करता है और जो बुख़ल करे वो अपनी ही जान पर बुख़ल करता है और अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज। और अगर तुम मुंह फेरो तो वो तुम्हारे सिवा और लोग बदल लेगा फिर वो तुम जैसे न होंगे।
1: सदक अल्लाहुल अज़ीम। अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की। पेश खिदमत है एक हम्द, आइए समाअत करते हैं।

हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम में कौन सा अमल सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को खाना खिलाओ और हर शख्स को सलाम करो, खा तुम उसे जानते हो या नहीं। इस हदीस में नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाने को बेहतरीन इस्लामी आमाल में शुमार फरमाया। मोहताजों, मुसाफिरों, यतीमों और भूखों को खाना खिलाना दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। इस अमल से मुआशरे में भाईचारा और हमदर्दी बढ़ती है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को दुनिया व आखिरत में इज्जत अता

हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो खाना खिलाते हैं और सलाम को आम करते हैं। खाना खिलाना ईमान और हुस्ने अखलाक की अलामत है। जो लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाता है। मेहमान नवाजी और मोहताजों की मदद इस्लामी मुआशरे की खूबसूरती है।

मोहतरम सामीन, भूखों को खाना खिलाना बहुत बड़ी इबादत है। अपने घरों में आने वाले मेहमानों की इज्जत करें, गरीबों और यतीमों का ख्याल रखें, अपने दस्तरखान में दूसरों को शरीक करें। अल्लाह ताला इसे लोगों से खुश होता है। सदका इंसान के गुनाहों को मिटाता है। अपने रिस्क में बरकत चाहते हो तो दूसरों को खिलाओ। छोटा सा निवाला भी अल्लाह ताला के नज़दीक कीमती है। किसी भूखे को खाली हाथ वापस न लौटाओ। अल्लाह ताला हमें सखावत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन मोहतरम, सबाल खैर प्रोग्राम अनकरीब ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और तमाम आफात व बलियात से महफूज रखे। या अल्लाह हमें अपने हिफ्ज व अमान में रखना। आमीन सुम्मा आमीन। आइए रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजराना पेश करते हैं और इसी के साथ सबाल खैर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू।

0: 94.96
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Jani Sayaranga.

वो हमारी साथे। आवो मारी साथ है ब्यूटीफुल गुजराती गीतो तमारा माटे एंड विद दिस भाई आपणे माणस नी जारे वात करीए ने दुनिया मां सौथी अघरू काम होय छे माणस ने ओळखवो मळे त्यारे ही जुदो गरज होय त्यारे ही

0: वो हमारी साथे
1: तो वाला मित्रों आज ना अपना कार्यक्रम ने बस अहीं समाप्त करवानो समय आवी गयो छे आप सब कोई नो प्रेमाळ साथ रह्यो ते माटे खूब खूब आभार अने फरी मळीशुं जल्दी बस एवी ज आशा एवी ज कोशिश जारी रहे के आपणे जीवन मां कोई ना माटे तकलीफ उभी न करिए कोई ना माटे प्रॉब्लम्स उभी न करिए कारण के बीजा माटे प्रॉब्लम्स उभा करनार माटे हमेशा जीवन प्रॉब्लम्स माटवायलू रहे छे जो तमारी जीवन नी प्रॉब्लम्स ओछी करवी होय तो बीजाना जीवन नी प्रॉब्लम्स वधारवा करता ते लोकोनो सहयोग करो ते लोकोनो साथ आपो अने आ साथे ज बधाना माटे सारी भावना राखता मनमां आजना आपणा कार्यक्रमने बस अहीं पूरो करीशुं आजना आ छेल्ला गीतनी साथेने आ छे सूरज चौहान अने ईशा नायरना स्वरमां मुकायेलुं विशुद्धिनुं गीत अने आ गीतनी साथे बस आजनो आ कार्यक्रम अहीं पूरो थयो आप सब નો પ્રેમાળ સાથ રહ્યો તે માટે ખૂબ ખૂબ આભાર ફરી મળીશું કાલે સવારે 10 વાગે ટિલ ધેન તમે પોતાનું ધ્યાન રાખો હસતા રહો મુસ્કુરાતા રહો જિંદગી બહુ જ મસ્ત છે જબરદસ્ત છે

श्रोताओं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एमबीसी और एम फ्री रेडियो मनोरंजन के सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूँ दीविना। आध्यात्मिक कार्यक्रम भक्ति में शक्ति में। वैसे जीवन की भागदौर, चिंता तथा तनाव के बीच यदि कोई शक्ति हमें भीतर से शांति देती है तो वह है भक्ति की शक्ति। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि मन की निर्मलता, आत्मा की पवित्रता तथा ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का नाम है। आइए अगले कुछ पलों तक हम प्रभु स्मरण, प्रेरणादायक सुविचारों तथा मधुर भजनों के माध्यम से अपने मन को भक्ति रस में सराबोर करें।

श्रोताओं, जीवन में सुख हो या दुख, यदि हमारे हृदय में प्रभु का नाम बस जाए तो हर कठिन राह भी सरल बन जाती है। ईश्वर कभी यह नहीं देखते कि आपके पास कितना धन है, ये देखते हैं कि आपके मन में कितनी श्रद्धा है।

आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। वैसे कहते हैं जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब भक्ति बोलती है। ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है परंतु अंधेर कभी नहीं होता, और प्रार्थना वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। बढ़ते हैं अगले भजन की ओर।

श्रोताओं, जीवन में कई बार हम निराश हो जाते हैं ना, लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। परंतु वही क्षण होता है जब हमें ईश्वर पर सबसे अधिक विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, त्यागते कभी नहीं। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी निश्चित।

श्रोताओं कहते हैं यदि आपके मन में कोई चिंता है तो आज उसे प्रभु चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। कभी कभी ईश्वर हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमारे लिए कुछ और बेहतर स्वीकार होता है।

श्रोताओं, एक संत से किसी ने पूछा, भगवान कहाँ मिलते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ अंधकार समाप्त होता है वहीं से भगवान मिलना प्रारंभ होते हैं। इसलिए जीवन में विनम्रता, प्रेम तथा सेवा भाव रखना अत्यंत आवश्यक है।

देखते ही देखते हमारा आज का यह पावन सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य तथा सकारात्मकता सदैव बनी रहे। आपके दिन की शुरुआत प्रभु स्मरण से कीजिए, क्योंकि भक्ति में ही जीवन की सच्ची शक्ति छिपी होती है। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलते हैं भक्ति में शक्ति के अगले अंक में। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जय श्री राम।

पेपर 12 दोबारा देने होंगे। ये परीक्षाएं सोमवार 8 जून और मंगलवार 9 जून के लिए दोपहर 1:30 बजे उनके अपने कॉलेज में आयोजित की जाएंगी। इन उम्मीदवारों ने मूल रूप से ये परीक्षाएं 29 अप्रैल और 15 मई को दी थी, हालांकि बाद में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित के 3 प्रश्न पत्र के लीक होने की घोषणा की। पेपर 5 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए कोई नई परीक्षा नहीं होगी। इस प्रश्न पत्र के लिए कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने बताया कि संबंधित उम्मीदवारों को असेस्ड मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। भरी हुई वेटिंग रूम्स, दबाव में काम करते नर्सिंग स्टाफ और कभी कभी ऐसे मरीज जो खफा और नाराज हैं, ये दृश्य आज स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती का उजागर करते हैं। नर्सिंग एसोसिएशन के अनुसार नर्स की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से एक है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ की कमी सीधे तौर पर मरीजों की देखभाल को प्रभावित करती है और अस्पताल में प्रतीक्षा समय बढ़ा देती है। उनके अनुसार इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भी कमी है। वे स्वास्थ्य मंत्रालय से ठोस कदम उठाने की अपील कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यस्थिति में सुधार हो सके और मरीजों को बेहतर सेवाएँ भी मिले। विदेश की खबरों में ईरान और हिजबुल्ला को लेकर ये खबर सामने आई है। इसराइल और लिबनान एक नाजुक युद्ध विराम संधि को रिन्यू करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके तहत लिबनान के कई इलाकों में सुरक्षा स्थल कायम किए जाएंगे जहां हिजबुल्ला की सभी गतिविधियां वर्जित होंगी। दक्षिणी लिबनान पर इसराइली हमलों में 9 लोगों

की मौत के बाद ये तय किया गया। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रारोड रुसपेल में 55 साल के 55 years older के श्री प्रदुमन सिंह सिवलाल जो विकास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान रारोड रुसपेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती रामचरण पैराशी नाम पैम और जो रेखा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रजनीश और अविनाश रामचरण के मकान नंबर 199 बाउंड्री रोड रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल मां की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। एवेन्यू पेरुश मोसेलमान ले माए मेबर्ग में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री देवी पैदाशी नाम दुखी और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान एवेन्यू पेरुश मोसेलमान ले माए मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रिविया डे क्रेयोल मेबर्ग में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री बिसुंदत रामसन जो कोलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान उनके रिश्तेदार के मकान शांति रामसन के मकान रिविया डे क्रेयोल मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है। Your news on NBC Play.

0: खाना सफर खाना सफर
1: वफा जिनसे की बेवफा हो गई वादे मोहब्बत की क्या हो गए अजी वादे तो इसलिए हम करते नहीं है क्योंकि हमें आना होता है यहाँ प्यार से आपका साथ निभाने तो स्वागत करती हूँ मैं वेदिता आपका आपके ही प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र 12:16 हुए हैं और रेडियो मनोरंजन RM3 के सभी लिसनर्स सभी हमारे श्रोता मैं जानती हूँ इंतज़ार कर रहे हैं तो हमारे टिकटॉक लाइव हो चुका है शुरू हो चुका है आप चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं बस हमारा टिकटॉक लाइव फॉलो करें और अभी के लिए सुहाना सफ़र के इस सफ़र में चलिए अब चार चांद लगाने आ रहे हैं अभिमान फिल्म का ये गाना

0: खाना सफर।
1: चलिए जी, बहुत तारीफ हो गई। अब कुछ तारीफ यहाँ पर हम अपने श्रोताओं का भी कर ले जो इतने प्यार से आते हैं हमारा साथ देने। और मैं क्या बताऊँ आपको, सुहाना सफ़र वो सफ़र बन गया है जहाँ पर अभी बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड बात करते हैं अगले गाने की। तो अगला गाना हम लेकर आए हैं आप सभी लिसनर्स के नाम। मुश्ताक खान, कैसे हो आप? यहाँ पर हमारे साथ हैं रेशमा राम की सोन, दीप्ति, लैला मदारन, परीश, शारदा नकनोत, करिश्मा जहागी, सुल्ताना खानदाई, बबीता, यलेश, याश्मी, नूरुद्दीन, मिस्टर बुराही हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, और साथ में कुवैत से खान हमारे साथ हैं, प्रतिमा, इंदिरा, रामदोनिया, शालिनी कहती है मेरे पति अनूप, मेरी बेटी आयुषी और बेटे अयूर के नाम, ऑफ कोर्स राजेश शाह, कानू हलवाई जो कि हमें सुन रहे हैं, हेलो जी कैसे हो। यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा अब्दुल और सारा बानू के लिए, और यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। ये है कौन, जना। जना हमारे साथ फ्लैग से जुड़ी हुई है, और यहाँ एक मैसेज आया है, कहते हैं आई एम वॉचिंग फ्रॉम मलेशिया। ओके, आप मलेशिया से हमें देख रहे हैं और हम यहाँ मॉरिशस में हैं, तो मॉरिशस से बहुत सारा प्यार टू ऑल दोज पीपल जो हमें मलेशिया में इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सूरज सजदा हमारे साथ हैं, कैसे हो, आपको बहुत सारा प्यार है। एंड यहाँ पर गाना जाएगा प्रतिमा और साथ में है चेष्टा, रैना, देश और आंसले के लिए। यास्मीन कहती है काटुबोन से हूँ, बेटी हाजू के लिए और कातों के नाम जो भी ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगी कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, गेट वेल सून, और बहुत सारा प्यार आपके लिए। प्रेमिला जी हमारे साथ हैं, गुड आफ्टरनून आपको। यहाँ विमी भी जुड़ गई हमारे साथ और बाकी जितने भी लोग हैं, चलिए उनके कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, गीतों का खूबसूरत ये गुलदस्ता लेकर आए हैं खास आपके लिए।
2: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी हाँ सुहाना सफर है और सुहाना सफर में चलिए देखते हैं कि कौन हम सफर बने हुए हैं हमारे साथ। अगला गाना होगा रागिनी जी के लिए, जय आशा एनवी बृंदा रेखा कल्याणी हरी राम कौर अंजू और एजे को मैं डेडिकेट करूंगी गाना। हमारे साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे साथ हैं जय सिंह फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हेलो मीला रामा कैसी हो आप, और साथ में यहाँ पर गाना होगा आप लोगों के लिए जो ड्राइव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये समय होता है काफ़ी लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते करते खूबसूरत गाने हमारे एंजॉय करते हैं, तो जब ड्राइव कर ही रहे हैं तो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आपके नाम। वैसे कुवैत से खान जी ने इस गाने की फरमाइश की थी, तो चलिए उनकी फरमाइश सराकों पर और यही गाना हम सन आपके नाम डेडिकेट करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका स्वागत है। चाहे तो आप हमें एक दो मैसेज भी भेज सकते हैं।

0: खाना सफर
1: मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार। जी हाँ, चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। वेलकम करते हैं हम माधुरी, टोनी, तनवीर, एजे बीमार हैं, उनको कहेंगे गेट वेल सून। और साथ में यहाँ पर राजवीर हैं हमारे साथ, कहते हैं मैं मॉरिशस से भी छुट्टी मनाने आया हूँ, इंडिया से है, तो आपका भी वेलकम करते हैं एंड आई होप मॉरिशस इज ट्रीटिंग यू रियली वेल। चलिए जी, मीला रामा, बिंता, त्रिशा हरकू, निशा उनकी बेटी शिखा के लिए गाना मांग रही हैं। और यहाँ पे अनिल, राजन, कुजन हमारे साथ हैं। और करुणा दोमा कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए जी, तो अगला गाना बाबू से धनेश्वरन, प्यारी पत्नी सुनीता, यह देवदास फैमिली के लिए भी। कविता अनु हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं अभी, और साथ में जो हमारे दोस्त अभी काम कर रहे हैं, साहिल अभी काम कर रहा है, उनके बॉस अनिल वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के रेडियो ऑन कर देते हैं, कहते हैं नहीं विदिता का प्रोग्राम चल रहा है तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलने दो, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। तो जो लोग अभी खाना खाने के लिए निकले हैं, बोन अपेटी। चलिए इसी के साथ जो अगला गाना है, ये गाना जब चलता है ना तो ऐसा लगता है कि वक्त थम गया हो, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ सबसे दूर अपनी एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। गाना भी तो ऐसा ही है कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। रेडियो मॉरिशस के सभी हमारे लिसनर्स के लिए।
2: अक्सर ये बातें करते हैं।
1: क्या बातें करते हैं?
2: तुम होती तो कैसा होता?
1: मैं तो इधर ही हूँ।
2: तुम ये कहती, तुम वो कहती।
1: मैं बहुत कुछ कहती हूँ।
2: तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती।
1: अच्छा जी।
2: तुम होती तो ऐसा होता।
1: कैसा?
2: तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
1: वैसे तन्हाई से बात करने की जरूरत नहीं है, बात करनी है तो आप हमें 4028 0070 पे कॉल कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप टिकटॉक पे लाइव हैं तो रेडियो मनोरंजन का जो टिकटॉक है वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, गाना तो यही है ना, ये कहाँ आगे हम यूँ ही साथ साथ चलते, तो चलते चलते हम पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट अभी 15 मिनट्स रह गए हैं हमारे इस फर्स्ट आवर को, यानी एक बजे आप समाचार सुनेंगे। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं टिकटॉक पे, हमें लाइव देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। चलिए, गाने आपको पसंद है, हमारे लिए बस यही ठीक है। और अभी के लिए तो हम आरिफ प्रसाद हमारे साथ हैं, उनका हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। माधुरी जी, थैंक यू सो मच। मनीता जी खुश हो गई है बड़ी। माधुरी जी कहती है, मिस्टर इंडिया की तरह कहाँ गायब हो गए। गायब नहीं हुए, गायब तो आप लोग हो गए। शायद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी हमारे टिकटॉक लाइव पे, जिसके चलते कुछ असर नहीं दिख रहा था, लेकिन हम वापस आ गए। रेडियो मनोरंजन लाइव है टिकटॉक, आप चाहे तो हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एंड संदीप सिंह, कैसे हो ब्रदर, सब ठीक, सब बढ़िया। चले, आपको हमारे गाने पसंद आ रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। कहते हैं यहाँ पर, मैं और बॉस ओके, आपको प्यार भेज रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए जी, और गाना किसके लिए होगा, वी हैव एस्थ, हाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। एंड एक कॉलर है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो,
2: हेलो, राजू दिल इसकालिए।
1: राजू जी कैसे हो,
2: मोची पूजिया एंड सोंते
1: जी,
2: ओम पाकास
1: जी, कौन सा गाना?
2: माय हार्ट इज बीटिंग, आई एम इन लोनी।
1: ओके जी, ठीक है, ये गाना हम ढूंढेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बाय बाय। चलिए तो ये,
3: यू आर लिसनिंग टू आरएम3 रेडियो मन।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चले जी, यहाँ पर वनिता जी की ये फरमाइश है, समय तो धीरे धीरे चल, तो धीरे धीरे सही, लेकिन समय को चलना तो पड़ेगा ही ना। यहाँ पर गाना करनेल सिंह जो इटली से हमें सुन रही हैं, उनके लिए कमला जी, कृतेश, आनंद, लवली, महमूद और लीना, आपके लिए।

0: समय तो धीरे धीरे चल, हम भी चाहते हैं कि ये समय धीरे धीरे चले। यहाँ पर सूर्या हमें फिजी आइलैंड से सुन रहे हैं, जितने भी लोग फिजी आइलैंड में हैं उन सबका स्वागत है। एंड स्वागत करते हैं हम अनुषा का हमारे इस प्रोग्राम में।
1: RM3 Radio.

0: आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। शागुस मुद्दे को लेकर ओलिविए बोंकुल की लंदन यात्रा पर एक नए विवाद के केंद्र में ये आ गई है। उनके प्रतिनिधिमंडल द्वारा जारी एक बयान में दावा किया गया है कि ब्रिटिश संसद परिसर में उनके साथ डराने धमकाने जैसी घटनाएं पेश आई हैं। साथ ही कुछ तस्वीरों और वीडियो के जरिए ओलिविए बोंकुल की भूमिका को लेकर भ्रामक संदेश फैलाने की कोशिश का आरोप भी है। हालांकि ये सभी दावे फिलहाल डेलीगेशन के बयान पर आधारित होगा। वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट 19 जून को प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला है। इस बीच वित्त मंत्रालय में बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। आर्थिक विकास को गति देने और निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कदमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। करीब 450 मर्शन छात्रों को कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की दो परीक्षाएं दोबारा देनी होगी। पेपर 3 और पेपर 12 की पुनर्परीक्षा 8 और 9 जून को संबंधित कॉलेजों में आयोजित की जाने वाली है। इससे पहले ये परीक्षाएं अप्रैल और मई में हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना के बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने ये फैसला लिया। मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना और कैम्ब्रिज योग्यता की वैश्विक मान्यता सुनिश्चित करना है। हालांकि पेपर 5 यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए पुनर्परीक्षा नहीं होगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने इस प्रश्न पत्र के लिए संबंधित छात्रों को एसएस मार्क्स देने का फैसला लिया है। गंगा तालाब की आध्यात्मिक गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने 26 प्रस्ताव पेश किए हैं। इनमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को याद दिलाने पर जोर दिया गया है कि ये इलाका धूम्रपान मुक्त है तथा यहाँ शराब का सेवन प्रतिबंधित है। फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन ने कल प्रेस से मुलाकात की। स्वास्थ्य संबंधी खबर। एसएसओरन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एम्पॉक्स का एक संदिग्ध मामला पेश आया है। मरीज 64 वर्षीय विदेशी नागरिक है। आवश्यक सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लैबोरेटरी परीक्षण में ये किया जा रहा है। रिपोर्ट आज दोपहर बाद मिलने की उम्मीद है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में ईरान में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पहली बार एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग की गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सदस्यों का समर्थन किया, जिससे प्रस्ताव 215 के मुकाबले

0: मुकाबले 208 मतों से पारित हुआ। हालांकि ये भी प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है और इसे प्रभावी होने के लिए सेनेट की मंजूरी भी लेनी होगी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रिविया दे क्रियोल मेबर्ग में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्री बिसुंदत रामसन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल शुक्रवार 5 जून को सुबह के 11 बजे उन्हें के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए धनमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM एवेन्यू पेरुश मोसलमों ले माई मेबर्ग में 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री देवी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम दुखी, लोग उन्हें साबित के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio.
3: एक बजकर 5 मिनट हुए हैं, सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम सुहाने सफर में। विदिता का साथ दे रही है, प्रोग्राम है रेडियो मनोरंजन RM3 और सफर सुहाना हो यही विश करते हैं।

सुहाना सफर, सुहाना सफर, सुहाना सफर हमारा प्रोग्राम। और हमारे इस प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है। चलो जी, यहाँ पर हम अब क्या करें, अब हम गाना डेडिकेट करेंगे हमारे लिसनर्स के लिए। यहाँ पर हमारे पास गाना है सुनील मित्तू के लिए, और यहाँ पर कौन है हमारी बड़ी सवाली गुंडी जो साथ दे रही है हमारे, थैंक यू। वी हैव नाताली, ए जे बीमार हैं, गेट वेल सून। अली माधुमन, साथ में ईशान, कीर्ति संचार का आज बर्थडे है, गंगाराम फैमिली की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू। लवीश, आरती, और यहाँ पर बर्थडे है ईशान का आज, ईशान का हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी, जय चकोरी, आरती, लवीश, विधु, श्वेता, यश, वैदेही, रीना, सरोज, और यहाँ पर हमारे साथ तरुण जुड़ गए हैं। कहते हैं प्यार का नगमा हो जाए, वो नगमा हमारे पास ऑलरेडी है, समझ में नहीं आता। कभी मांगते हो आप गाने, चल जाता है, कभी नहीं भी मांगते तो गाना हमारे पास होता है। करुणा जी, कैसे हो, आपके लिए गाना एंड आपके बेटों के लिए भी। यहाँ पर परी ने गाना भेजा है, ला ला ला ला लव यू एंड आई लव यू टू एंड लव यू थ्री फोर फाइव, जहाँ तक गिनती आती है। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ गाना होगा आपके लिए, कहते हैं कि फीवर भाग जाएगा अगर ऐसे गाने चलेंगे तो, अच्छी बात है ना। एंड थैंक यू सो मच जया फॉर द लव। प्रिया, हाय, कैसे हो आप। एंड डेविड, कैसे हो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू रेडियो मनोरंजन। एंड कहते हैं कि आनंद, देव, विजय, चेतन, कौन सा आनंद ढूंढ रहे हो भाई, जो मिले ठीक है चलेगा। पामिला रामस्वामी, हाय, हाउ आर यू। गायत्री गजादर, आपका वेलकम है। आरती सदाशिवन, नमस्कार, वेलकम। चलिए इसी के साथ गाना हो जाए आपके नाम।

0: सुहाना सफर
1: ये है सुहाना सफर। चलिए जी 1:16, देखो भाई जून महीने में 4 दिन तो वैसे ही निकल गए, ऐसे ही हवा में निकल गए। अभी क्या है कि हम जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करेंगे किसके नाम, वैसे गाना लता जी की आवाज़ में है और यहाँ अनिल जी को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है और साहिल को भी ये गाना बहुत पसंद है, तो उन दोनों के नाम जो ऑफिस में हमें सुनते रहते हैं और बॉस के लिए गाना तो चलाना ही पड़ेगा क्योंकि उनके जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे वो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमारे लिए भी कोई फरमाइश पूरा कर दो। जी ज़रूर, क्यों नहीं। चलिए जी गाना आपके लिए भी डेडिकेट करेंगे और तरुण कहते हैं मैं हूं ना। थैंक यू सो मच आरती जी, आपको गाना पसंद आया जानकर अच्छा लगा। एंड यहाँ पर चले निशा, आहा कहते हैं ब्यूटीफुल सिलेक्शन डियर, थैंक यू सो मच। और कहते हैं चाची बसंती कहाँ है, बसंती कहाँ है, वो अपने धनों के साथ होगी, फिलहाल तो आप मेरे साथ हैं यहाँ प्रोग्राम में। गुड इवनिंग, ओके गुड आफ्टरनून ईश्वरी जी, कैसी हो आप। कहते हैं कि कोई भी गाना 70s का मेरे लिए, तो सुनते रहिए गाना तो आएगा ही आपके लिए। मेरा एक कज़न था वो गाना ऐसे गाता था, ओके ठीक है मुझे पता चल गया। मीतू कैसे हैं आप, मीता सब बढ़िया सब ठीक। एंड ईशान जी आपको गाना हमारा पसंद आया होगा हो, ठीक है। हाय सीताराम आपको भी। चलिए तो यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा वो डेडिकेट करते हैं आपके लिए मीता और हरिचंद जी, और साथ ही साथ गाना होगा जीवन जी के नाम, धर्म हमारे साथ हैं उनके लिए भी, बबीता जी ऑफिस में हैं एयरफोन लगाकर प्रोग्राम सुन रही हैं उनके लिए भी, और कौशन के लिए जो इस समय गाने एंजॉय कर रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर और हमें फॉलो कर रही हैं टिकटॉक पर।
2: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: प्रोग्राम है सुहाना सफर और यहाँ सफर को सुहाना बना रहे हैं हम अपने इन गीतों के साथ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आई कैन फील द सॉन्ग, गाना जो था बहुत गहरा था, सीधे दिल पे लगा। और हमारी कोशिश यहाँ पर आपकी पसंद के गीतों को चलाने का। और ग्रीनवुड काश आप अपना असली नाम लिखते, यहाँ पर असली नाम लिखा कीजिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए बबीता निमन आपका हम ये वहाँ वेलकम करते हैं। बिमला जी थैंक यू सो मच, और अनोर की हमारे साथ जुड़ गए हैं, थैंक यू। और यहाँ पर हमारे साथ गाना ओके, तो आप लोग मैसेज तो भेजते हो, अपना नाम नहीं लिखते, पेरेंट्स का नाम नहीं लिखते। मैं बोलूँगी ये मैं की तरफ से। अच्छा आप अपने मम्मी पापा को याद कर रहे हो, चलो ठीक है। शवि हमारे साथ, हेलो बोकुगाश आपको भी एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।
2: RL Free Radio Radio Radio
1: चलिए गाना खास तौर पे एजे और अंजू के नाम जो हमारे साथ जुड़े हैं। जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी जिंदगी।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जीने को तो जीते हैं सभी, लेकिन प्यार नहीं जिस जीवन में वो जिंदगी कैसी है ना। चलिए यहाँ पर गीता, शहनाज मुकीम, मलीना, विकास बातू, संगीता सुखारी, सरिता, इन सब का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ स्वागत करते हैं उनका जो यहाँ हमारे टिकटॉक लाइव पे

भले ही उनका भले वो अपना नाम नहीं भेजते, डेडिकेशंस नहीं भेजते, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती हैं कि हमें सुने। एंड इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगी हमारे तमाम लिसनर्स को। और यहाँ पर प्लीज़ कीप शेयरिंग, मैं थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग द म्यूज़िक। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत कम पल ऐसे मिलते हैं जो खुशियों से भरी होती हैं, छोटे छोटे पल आते हैं हमारे लाइफ में, उन छोटे छोटे पलों को हम यहाँ पर जीने की कोशिश करते हैं, प्यार के इस नगमे को गुनगुनाने की कोशिश करते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है हम सब की कहानी जो होती है कभी ना कभी किसी ना किसी गाने में हम अपने आप को फील करते हैं। ये उन गीतों में से एक गाना है जिसमें हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को फील करते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना आपके लिए। हमारे साथ हैं साइलेश दिनेश गोपी, नीम कहती है उनकी मम्मी हॉस्पिटल में है, तो गेट वेल सून आंटी जी। और नेक्स्ट गाना आपके लिए दृष्टि अपने पति अनिकेत के लिए गाना मांग रही है। वहीं पे सरामा संजय बुधवा हमारे साथ हैं और फरानाज उनके हबी नासिब के लिए गाना मांग रहे, कहते हैं नाराज़ हो गए। अरे नाराज़ नहीं, प्यार है कुछ नहीं। और यहाँ पर हरे कृष्णा श्याम पोराम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम होलैंड। अनुषा ननकू, रूबी शालिनी, रवि नीरव साथ में है, पुराने गाने पसंद करते हैं। वहीं पे लवली मॉर्निंग आपको भी मैंने ठीक से नोट नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया कि नाम क्या है, बस मुझे पता है नाम के एंड में नीता ज़रूर है। जय श्री कृष्णा आपको। और कहते हैं कि अगर कोई गज़ल हो सके तो हाँ, गज़ल की फरमाइश तो यहाँ पर भी आई है, एक गज़ल की फरमाइश आई है, मैं जाने से पहले शायद चलाने की कोशिश करूँ। लेकिन यहाँ पर हम नए गाने नहीं चलाते, यहाँ पर हम हर तरह के गाने नहीं, बस कुछ ऐसे फिल्मी गज़ल होते हैं जो प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, ठीक है जी। और ऐसा करते हैं कि यहाँ आगे बढ़ते हुए अशोक जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नाज आपका वेलकम है। एंड साथ में यहाँ पर हम श्याम जी आपको थैंक यू सो मच। ओके, राज सिंह दुकवा हमारे साथ हैं मदालबेस से और गाना आपके लिए होगा। इंदिरा मतव सिंह नमस्ते, सावल साहब कैसे हैं आप? स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
2: RM3 रेडियो

0: सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो भाई गाने कमाल के लेकर आए हैं आपके लिए इसको भी आप कबूल कर लो
1: सुहाना सफर
0: कतरो से किरण सिंह और साथ में लकी हमारे साथ हैं इंदिरा जी कैसी हैं आप आपके दोस्त शाम के लिए गाना होगा रेशमा नागचदी जी हमारे साथ हैं उनकी पूरी फैमिली के लिए गाना होगा और शकील जी का हम वेलकम करते हैं कैसे हैं भाई पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको और उम्मीद करती हूँ गाने आपको पसंद आ रहे हैं चलिए जी यहाँ पर नेक्स्ट जो गाना होगा वैदेही आपके लिए और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए शैलिन रायचन क्या बात है शैलिन रायचन नाम कुछ सुना सुना लग रहा है चले जी नाम सुना सुना लगे ना लगे लेकिन गाने यहाँ पर आपको सुने सुने ही मिलेंगे क्योंकि ये पुराने गीतों का प्रोग्राम है जहाँ पर मैं वेदिता आपके साथ होती हूँ हमारे बाकी के दोस्त होते हैं रेडियो मनोरंजन RM3 पुराने गीतों के लिस्ट में अब कौन सा गाना आ रहा है भाई गाने हमारे बहुत बहुत सारे गाने हैं लेकिन इस गाने की फरमाइश आई थी फिल्म का नाम है मेरा जवाब वैदेही कहती है कि बारिश तो ऐसे हो रही है कि रोड जो है वो नदी जैसी दिख रही है लेकिन कहां से ये बताना भूल गई आप बारिश का मौसम इस समय गर्मा गर्म चाय या कप की कॉफी की कप

लगता है अभी मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा और 10 मिनट में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम मेरा समाप्त हो जाएगा। चलते चलते यहाँ पर जो लोग अभी बारिश के इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए जक्की दादा जी बिल्कुल परी आपको पसंद है एंजॉय करें। अच्छा तो वैदे ही कहती है बना के में बारिश हो रही है। एजे कहते हैं आप पकौड़े भूल गई।

0: कोई कहता है गम का दरिया है, कोई कहता है प्यार की दो बोल है। चलिए यहाँ पर बना के रविया जगहों पर ब्रह्मस्थान में बारिश तो हो ही रही है, मैंने सुना फ्रांस में भी बारिश हो रही है, और यहाँ पर फैजल जी कहते थे कि 36 से लेकर अब 16 डिग्रीज का जो सफ़र है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी सर्दी कभी गर्मी। फैजल, आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। राधा कैसी है, अनिता परतोप, जीवासन पीरोमल, इन सब के लिए डेडिकेट करते हैं प्रोग्राम का अगला गाना। इसी के साथ जाने के लिए इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलूँगी मैं आपसे कल 12 बजे, भूलिएगा नहीं।
1: You're listening to RM3 Radio.

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। करीब 450 मोशन छात्रों को कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की दो परीक्षाएं दोबारा देनी होगी। पेपर 3 और पेपर 12 की पुनर्परीक्षा 8 और 9 जून को संबंधित कॉलेजों में आयोजित की जाने वाली है। इससे पहले ये परीक्षाएं अप्रैल और मई में हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना के बाद कैम्ब्रिज इंटरनल एजुकेशन ने यह फैसला लिया। मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना और कैम्ब्रिज योग्यता की वैश्विक मान्यता सुनिश्चित करना है। गंगा तालाब की आध्यात्मिक गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने 26 सिफारिशों का प्रस्ताव रखा है। इनमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ये याद दिलाने पर जोर दिया गया है कि ये इलाका धूम्रपान मुक्त है तथा यहाँ शराब का सेवन प्रतिबंधित है। फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन ने कल आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में इन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। अब स्वास्थ्य की खबर। एसएसओरन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एमपॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। मरीज 64 वर्षीय विदेशी नागरिक है। आवश्यक सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और विक्टोरिया अस्पताल की लेबोरेटरी में परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट आज दोपहर बाद तक मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेक्टर में नर्सों की कमी एक बार फिर चर्चा में है। नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की देखभाल और सेवाओं की किस्म प्रभावित हो रही है। संगठन के अनुसार इस स्थिति से प्रतीक्षा समय बढ़ रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों की कमी का भी उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय से ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। इसराइल और लेबानन ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता दौर के बाद अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों की मौजूदगी पर रोक होगी और नियंत्रण केवल लेबनीज आर्म फोर्सेस के पास रहेगा। ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब हिजबुल्ला सभी हमले पूरी तरह बंद करने और सीमा क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाए। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ती हैं शोक समाचारों की ओर। ब्लड रोड कैट्रोबोन में 103 साल की 103 ईयर्स ओल्ड की सुनमत दसोई की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गोकुल, लोग उन्हें सुगिन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी शनिवार को 12:30 बजे उन्हीं के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थौमा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 6 जून एट 12:30 PM। रामगुलाम रोड गोकुला में 37 साल के 37 ईयर्स ओल्ड के दीपक गुलाम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें ओनुल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर के 3 बजे उन्हीं के मकान गोकुला से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Center, 95.

0: 95. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: नाट्यकला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्यकला।

0: नृत्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: स्वागत करते हैं आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला नामक कार्यक्रम, जहाँ पे हम नाटक से संबंधी जो भी ज़रूरी बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं MBC टीवी और साथ ही साथ रेडियो के जरिए। जी हाँ, यह कार्यक्रम जो है रेडियो पर प्रसारित होता है, साथ ही साथ टीवी और हमारे वेबसाइट पर भी आप इसका लुफ्त उठा सकते हैं। हमारे साथ अगर आपने साथ दिया तो गत सप्ताह हमारी बातचीत हुई थी गुरुजी राजेंद्र सदा सिंह जी से, वे एक नाटक लेखन है, लेखन से जुड़े हुए हैं, लेखक है और अभिनेता है और साथ साथ निर्देशक भी है। आज भी हमारे साथ आए हुए हैं गुरुजी राजेंद्र सदा सिंह। गुरुजी नमस्ते, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो जैसे गत सप्ताह हमने बात की थी किस तरह से नाटक के इतिहास, मॉरिशस के नाटक के इतिहास में हम गए, एक बार फिर से इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी को लेकर एक बार फिर से आए हैं। और एक चलिए थोड़ा सा समय लेकर एक बार फिर से हम उसको रिव्यू करते हैं किस तरह से 1965 में 1965 से आपने कहा थी कि एक आदर्शी के अवसर पर आप लोगों की शुरुआत हुई थी थ्रियोले में। उस समय बहुत ही कम नाटक खेले जाते थे, बहुत ही कम लोग नाटक में थे। और उसके साथ साथ 1975 में पहली बार आप लोग भारत गए थे, भारत यात्रा करने के लिए गए थे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर, जहाँ पे मोहन महर्षि के निर्देशन में आप लोगों ने अंधायुग नाटक को प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद सिलसिला बढ़ता गया, कारवां आगे बढ़ती गई। लेकिन गुरुजी एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बार फिर से इतिहास में चलते हैं। 1965 में जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम लोग नाटक खेलते थे और 1965 में त्रियोले में उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन क्या उससे पहले नाटक कहीं पर भी खेले नहीं जाते थे, कहीं पे भी लोग इसको देखने नहीं जाते थे?
2: इससे पहले भी नाटक होता था मॉरिशस में, विशेषकर मैं त्रियोले की बात कर रहा हूँ, होता था वहाँ पर। उस समय अपने ढंग से लोग नाटक प्रस्तुत करते थे, जैसे कि लंका दहन, भरत मिलाप, सत्य हरिश्चन, इस तरह के नाटक की चर्चा हुई है। और जिन लोगों ने भाग लिया है, मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, और वही लोग, वे जो मतलब मर्द होते थे, वही महिलाओं की भूमिका निभाते थे।
1: हाँ, उस समय तो महिलाओं को अनुमति नहीं थी अपने घर, अपने परिवार की ओर से नाटक में खेलने के लिए। हाँ, तो कौन कौन लोग थे
2: उस समय? मुझे याद है, मैं तीनों, जब मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई नाटक के क्षेत्र में, तो जब मैंने सुना कि इन इन लोगों ने भाग लिया था नाटक में, तो मुझे उन लोगों से मिलने का अवसर भी मिला। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे सुनाई, जैसे कि हमारे बुजुर्ग थे त्रियोले के, श्रीधी राजरूप गोविंद जी थे, बाबू मनहरन जी थे, और मुनि सरदार दसोई जी थे। इन तीनों के बारे में मैं जानता हूँ।
1: तो उस समय का नाटक की कहानी हमारे शास्त्रों से
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: जुड़े हुए थे,
2: बिल्कुल शास्त्र से जुड़े,
1: जैसे राजा हरिश्चंद्र जी,
2: रामायण से आधारित राजा हरिश्चंद्र, या ऐसे

0: कुछ इतिहास या धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई थी।
1: गुरु जी, लगे हाथ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। रामलीला की शुरुआत, रामलीला का अपने नाटक एक दुनिया है, उनमें रामलीला एक नदी की तरह है, तो रामलीला के बारे में बताइए, किस आपने देखा, आपने खेला इसमें। हाल ही में आपका एक नाटक चला, रामलीला नाटक, तो

0: एक मित्र हैं त्रियोले में, उन्होंने एक लिस्टोर दे त्रियोले लिखा है, सीतोहल जी, तो उन्होंने लिखा है कि 1895 में रामलीला हुआ था त्रियोले में, और वे एक भारतीय थे जाकर मॉरिशस में बस गए थे, पंडित संजीवन लाल, वे उन्होंने ये नाटक किया था रामलीला। मैंने तो देखा नहीं तब, शायद मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास में मैंने पढ़ा कि हुआ था ये नाटक रामलीला। कैसे हुआ था ये मैं ठीक ठीक बता नहीं पाऊंगा आपको,
1: लेकिन फिर भी जैसे तैसे नाटक चल रहा था, प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन फिर भी लोग अभिनय कर रहे थे। अभिनेता थे, अभिनय थे, कहानी थी, मंच था, और प्रेक्षक भी थे, देखने वाले भी थे,
0: और वो ऐसा है कि वो मनोरंजन का साधन था। रेडियो नहीं के बराबर था उस समय, या नहीं था बिल्कुल, मनोरंजन का एकमात्र साधन था। लोग जुटते थे, भारी मेला लगता था देखने के लिए, सिनेमा तो है था ही नहीं बिल्कुल।
1: मनोरंजन की बात हो रही है तो आपने कहा कि उस समय मोबाइल सिनेमा था।
0: ये 75 मतलब कि मोहन महर्षि के आने के बाद, वे 73 में आए थे, तो 75 में उन्होंने, जैसे भारत में होता था, उन्होंने यहाँ पर भी इसे चलाना चाहा, मोबाइल थिएटर क्या है, एक लॉरी थी, कामियों जिसे कहते हैं, एक लॉरी थी, उसको थिएटर का रूप दिया गया था। आगे कुछ नहीं था, पीछे बैकग्राउंड था, और एक और सीढ़ियाँ थी चढ़ने के लिए, आगे भी सीढ़ियाँ थी, और उसमें कुछ लाइट जोड़ा दिए गए थे, उस लाइट और मतलब कि बाहर से साउंड इफेक्ट भी था, चलता था,
1: माइक सब थे, नहीं
0: सब कुछ। भीड़, भारी भीड़ लगती थी। और किस तरह के नाटक खेले जाते थे, जब कंपटीशन होता था मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित कंपटीशन होता था, तो अच्छे अच्छे नाटक चुनकर गांव में ले जाते थे, लोगों को बुलाते नहीं थे, मतलब कि उनके पास जाते थे बताने के लिए कि देखिए किस तरह से नाटक हो रहा।
1: मोबाइल थिएटर
0: उसका नाम दिया गया।
1: और उसका डेको कैसा था, बैकग्राउंड वगैरह कैसा था, क्योंकि मोबाइल लॉरी में था।
0: हाँ, मोबाइल लॉरी में था, हल्का फुल्का कुछ लगा देते थे, चिपका देते थे, मतलब कि कुछ, लेकिन था, होता था, कुछ कपड़े वगैरह होते थे, कुछ डिजाइन मतलब पेंटिंग हुआ करती थी, ये सब होता था, पेड़ टहनियाँ लगा दिया, फूल गमले, ये सब होता था, आज की तरह नहीं, लेकिन उस तरह से काम चलाओ के लिए ऐसा होता था, लेकिन लोग पसंद भी करते थे।
1: उस समय मोबाइल सिनेमा, मोबाइल थिएटर, आज मोबाइल में थिएटर देखते हैं, मोबाइल में सिनेमा देखते हैं। उसके बाद कारवा आगे बढ़ती गई 1965 में, जिसे हमने कहा कि आप लोग नागपुर गए, हमने उसकी चर्चा कर दी थी पिछले कार्यक्रम में, और उसके बाद मोहन महर्षि जी के बाद फुल लेंथ प्ले शुरू हुआ।
0: जब हम लोग लौटे 1975 में, जब हम लोग नाटक खेलने के बाद भारत में मॉरिशस लौटे, तब हमने सोचा कि अब हमें तो काफ़ी अनुभव मिल चुका है, कैसे नाटक फुल लेंथ करते हैं, लंबा फुल लेंथ मतलब लंबा नाटक, एक घंटे से ज़्यादा का नाटक होता था, तो कैसे करते हैं, तो हमने शुरुआत की इससे। मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, नटराज ऑज ग्रुप, और उसे लेकर शुरू किया हम लोगों ने। उस समय भी भारतीय स्क्रिप्ट तैयार नहीं थे हमारे पास नाटककार नहीं थे मॉरिशस में, तो मैंने शुरू किया था डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक परिचय से शुरू किया। वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, मतलब लोग उसकी आदि नहीं थे। इंग्लैंड में इसे चलाया गया था, स्टाइलाइज, एब्स्ट्रैक्ट, एब्सर्ड, इस तरह का नाटक था, लेकिन लोगों ने पसंद किया, चूँकि नाटक था लोगों ने पसंद किया। और वो एक बात कहूँ आपसे, टिकट बेचकर और टिकट की कीमत थी 5 रुपये।
1: अच्छा, 5 रुपये
0: उस समय 5 रुपये, हाउसफुल बोनाके में, हाउसफुल मोंटे ब्लांस में, हाउसफुल त्रियोले में, हाउसफुल
1: इंडिपेंडेंस डे से के बाद, या फिर
0: बाद है, ये बाद है, बाद है, इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस से पहले फुल लेंथ नहीं हुआ करता था, कोई नहीं करता था।
1: तो अगर आप बता रहे हैं फुल लेंथ, तो पहले के जमाने में नाटक कैसा था, फुल लेंथ क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है, ये बताइए।
0: फुल लेंथ मतलब एक लंबा नाटक 1.5 घंटे तक हो सकता था। जैसे पहला नाटक हुआ था मॉरिशस में फुल लेंथ, तो वो था अंधा युग, डॉक्टर भारती का अंधा युग, वही नाटक लेकर हम लोग भारत गए थे, महान महर्षि जी के निर्देशन में। तो और जो छोटा नाटक उसे बोलते हैं रूपक,

0: रूपक बोलते हैं, वन आक्ट प्ले बोलते हैं।
1: यह कितने मिनट का चलता?
0: 30 से 40 मिनट का चलता था ये। और जबकि फुल लेंथ प्ले 1.5 घंटे तक चलता था नॉन स्टॉप,
1: वन एंड हाफ आवर
0: नॉन स्टॉप।
1: लोग आते थे,
0: बैठते थे, भीड़ लगती थी, भीड़ कहा ना, हाउस फुल। वीकेंड में लिखा गया था, विष्णुदेव सी बालक थी, वो पत्रकार थे, उन्होंने लिखा था, वो वीकेंड मेरे पास अभी भी है, उन्होंने वीकेंड के लिए भी लिखते थे, अखबार के लिए तो लिखते थे, हाउस फुल फॉर ए हिंदी नाटक अटलाल माची, ये शीर्षक था। योले में वही हाल, मोताई ब्लांश में भी वही हाल। जब मैंने ये मेरा जो समाप्त हो गया, 5 या 6 हमने शुरू की थी, 5 या 6 शो समाप्त हुआ, तो मेरे मित्र महेश राम जवन जी ने शुरू किया, एक था गधा, जोशी जी का नाटक था एक था गधा, वो भी फुल लेंथ प्ले था, उसके लिए भी हाउसफुल, जहाँ भी जाते थे हाउसफुल। काथोबोन में भी खेला गया, लेकिन मैं काथोबोन शहरों में नहीं गया था, वे शहर में भी काथोबोन में गए थे, एक सिनेमा घर में, वहाँ पर खेला गया था, लेकिन भीड़ उतनी नहीं थी, फिर भी मतलब 100 लोग, लगभग 100 के लोग थे, टिकट पर।
1: जब पहले के ज़माने में नाटक खेला जाता था तो हाउसफुल मतलब अक्सर होता था, क्योंकि एंटरटेनमेंट का माध्यम उतना नहीं था।
0: मनोरंजन नहीं था उतना, तो नाटक जब सुनते थे तो टूट पड़ते थे। अभी भी आते हैं, लेकिन अभी ऐसा होता है कि हम जब नाटक आयोजन करते हैं तो निमंत्रण देते हैं, द्वार पर से बस लेती है उनको और लाते हैं थिएटर में, नाटक देख लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि गाला शो के लिए तो हम लोगों ने खाना भी दिया था सभी लोगों को, ऐसे ना, या तो जूस मिठाई वगैरह देते हैं। अभी सिलसिला
1: मैंने क्यों बल दिया हाउसफुल पर, क्योंकि गुरुजी आपने कहा कि पहले के ज़माने में ये अक्सर आम बात होती थी कि हाउसफुल जब नाटक खेला जाता था। अभी अगर हम एक नाटक खेलते हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं मॉरिशस में, जब नाटक खेले जाते हैं तो हाउसफुल तक नहीं आता था, लेकिन लोग आते हैं, लोग आते हैं, लेकिन टिकट खरीद कर नहीं आते हैं,
0: ये समस्या है। टिकट खरीद कर आते थे, अब अभी टिकट नहीं बेच सकते हैं।
1: अभी कलाकार अपनी जेब से निकाल कर खर्च करते हैं।
0: मतलब हमेशा कहता हूँ ना, घर का आटा गीला करना पड़ता है निर्देशक का, या निर्देशक को, या फिर आयोजक को।
1: हम जानते हैं कि मनोरंजन का साधन बहुत है, अभी हाथ में
0: आवश्यकता से अधिक,
1: हाथ में मोबाइल है, सामने टीवी है। आजकल के जमाने में जब टीवी के सामने देखते हैं तो एक हाथ में मोबाइल होता है, किसी के दो मोबाइल होते हैं, और टीवी भी देखते हैं और हाथ के मोबाइल भी देखते हैं। तो मनोरंजन के अनेक साधन है, तो क्यों हम जाएंगे नाटक। लेकिन गुरु जी आप तो अनुभवी है, सोफे पर बैठकर मोबाइल पर या फिर टीवी के सामने नाटक देखना और एक थिएटर में बैठकर नाटक देखना,
0: जमीन आसमान का अंतर क्या है? बहुत बढ़िया। मतलब कि मैं नाटक टीवी पर देखता हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, जबकि सभी नाटक देखता हूँ मैं, अंग्रेजी फ्रेंच में होता था वो भी देखता हूँ, शांतों लाल भी ऐसे मैंने देखा था में, किले पर 2 नाटक मैंने देखा था, शांतों लाली भी थे, फ्रांस की आज़ादी पर था, और फिर देखा था मैंने रेंडेवू दे सेप्टाम पेरावाल पर देखा था, वहाँ पर बहुत भारी भीड़ थी, वहाँ पर वो मतलब कि बजट बहुत बड़ा था
1: उस समय जब नाटक खेले जाते थे, कलाकार लोग होते थे, जैसे आपने कहा कि मोहन महर्षि जी आए थे प्रशिक्षण देने के लिए, 6 साल तक रहे मॉरिशस में, तो ये 6 साल की जो ट्रेनिंग है इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो NSD में चलता है।
0: वे कहा करते थे हमेशा कि जो कुछ मैंने 6 सालों तक मैंने तुम लोगों को सिखाया, हमारे ग्रुप में लगभग 10 या 12 लोग रह गए थे, तो कहा कि तुम लोग नियमित रूप से आते हो, साथ देते हो, जो कुछ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में सिखाया जाता है उससे ज़्यादा मैंने तुम लोगों को सिखा दिया, बस केवल परीक्षा नहीं है, और परीक्षा तुम्हारी ये थी कि तुम लोग फुल लेंथ प्ले तैयार करने लगे, यही तुम्हारी परीक्षा है।
1: बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद मॉरिशन लोगों को, मॉरिशन कलाकारों को मौका मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने

0: के लिए, वहां पे प्रश्न लेने के लिए आप के मित्रों में से एक था, अगर आप जानते हैं एक दो नाम आप बता सकते हैं।
1: हाँ, महेश राम जावन जी गए थे, सुंदरलाल मिटू जी गए थे, राजकरण बामा जी गए थे, और एक मराठी के बीवाजी गए थे, बीवाजी गए थे, हरिनारायण महावीर गए थे, इतने लोग गए थे। उसके बाद जो लोग वहां पर गए एक साल में लौट आए थे। अच्छा। इसीलिए उन्होंने, भारत सरकार ने जो है ये हटा दिया ये वजीफा,
0: कोई भी कारण हो, लेकिन फिर भी मॉरिशस को ऐसे अनुभवी, ऐसे मंजे हुए कलाकार मिले जो बाहर जाकर प्रशिक्षण लेकर, ट्रेनिंग लेकर यहाँ पे आए और ऐसे बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े प्रोडक्शन प्रस्तुत किए जो न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सुंदर। कंपटीशन के बारे में उस समय बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के तले ये होता था।
1: हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के जरिए होता था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए भी होता था, बाद में आया आर्ट एंड कल्चर की ओर। लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से होता था शुरू में, तब भी भारी भीड़ लगती थी और भाग लेने वाले एंट्री जो हैं 75 के लगभग थे, 75-80 तक आते थे, और जो कंपटीशन था बहुत टफ था, आसान नहीं था कलाकारों के लिए।
0: जब आप लोग नाटक खेलते थे तो उस समय, अभी हम भारतीय लेखकों के नाटक को लेकर बात कर रहे हैं, अभी आप लोग भारतीय नाटकों को मंच पर प्रस्तुत करते थे, लेकिन प्रश्न मेरा यह है कि क्या मॉरिशन वालों के बीच में कोई लेखक नहीं आए मॉरिशसीय कहानी को लेकर?
1: केवल एक ही अभिमन्यु अनंत जी थे, उन्होंने बाद में शुरू किया, मतलब कहानी, उपन्यास, कविताएं वगैरह लिखते थे, लेकिन नाटक नहीं लिखते थे। नाटक उन्होंने शुरू किया था टीवी के लिए लिखते थे, लेकिन बाद में जब कंपटीशन शुरू हुआ तो वे वहाँ पर ऑफिसर थे, ड्रामा ऑफिसर थे दफ्तर में, तो इसीलिए नहीं लिख पाते थे। फिर बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए नहीं।
0: फिर और लेखक लोग आए
1: और धीरे धीरे लेखक लोग आने लगे। हमने जब शुरू किया था कंपटीशन में भाग लेने के लिए, तो हम निर्भर थे इंडियन प्लेराइट पर, इंडियन नाटककार पर हम निर्भर रहते थे। उच्च स्तर के नाटक हुआ करते थे उस समय, बहुत बढ़िया नाटक, और इसीलिए कंपटीशन बहुत ही पूरा कंपटीशन था।
0: मोहन महर्षि से आप लोगों को लेखन में प्रशिक्षण नहीं मिला?
1: लेखन में प्रशिक्षण नहीं मिला, केवल मतलब नाट्य में मिला, अभिनय में मिला, निर्देशन में मिला, निर्देशन में वगैरह मिला, लेकिन लेखन में नहीं। जब उन्होंने कहा कि लिख सकते हो तुम लोग, अब तुम लोगों ने सब कुछ में भाग लिया है, देखा, काम देखा अच्छी तरह से, वर्कशॉप में भाग लिया, देखा, तो लिखना शुरू करो। तभी थोड़े दिनों के बाद भारत से बुलाए गए थे कमलेश्वर जी को और जोशी जी को बुलाया गया था। उन्होंने 15 दिनों का एक सेमिनार चलाया, स्क्रिप्ट राइटिंग का एक कोर्स चलाया, वर्कशॉप वहाँ पर, वो बहुत बढ़िया था। मैंने तभी से लिखना शुरू किया, जब इन दोनों से मुझे कोर्स प्राप्त हुआ तभी से मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि पूरा रूप से जिस तरह से वे अपनी फिल्म के लिए लिखते हैं उसी तरह से हमें बताया कि कैसे शुरू करना चाहिए, बजट को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखकर छोटी छोटी कहानियों को लेकर, मॉरिशस की घटनाओं को लेकर, मॉरिशस की कहानी पृष्ठभूमि को लेकर आप लोग नाटक शुरू कीजिए। तब से हमने, कुछ लोगों ने नाटक लिखना शुरू किया, और हमारी परीक्षा यही थी कि 15 दिनों में सभी को एक एक स्क्रिप्ट तैयार करके लाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे लिए भी उतना आसान नहीं है, इसीलिए 3-3 लोग एक नाटक तैयार करें। तो ऐसा हम लोग तैयार करते थे 30 मिनट का, और पढ़ते थे वहाँ पर, मंचन भी होता था थोड़ा थोड़ा, सभी के स्क्रिप्ट पर थोड़ा थोड़ा मंचन भी होता था और संशोधन भी होता था। एक मित्र ने लिखा था, बस से शुरू किया था, एक बस आती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो एक बस ही में तो तुम्हारा वो खर्चा चला गया सब, एक बस लेना पड़ेगा तुम्हें, वहीं पर तो 5,000 शुरू होता है स्क्रिप्ट से। तो इस तरह से नहीं, छोटी छोटी कहानी, घरेलू कहानी ये लेकर

0: शुरू करूं, बजट भी कम आएगा।
1: तो नाटक कैसे लिखे जाते हैं? मेरा प्रश्न ये है,
0: स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, टीवी स्क्रिप्ट बाय टीवी स्क्रिप्ट की बात
1: नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी नाटक के रूप में नहीं होता है। कई लोग मतलब उनको पसंद होता है नाटक, कहानी लिखना, कहानी पढ़ना, लेकिन नाटक लेखन कैसे, ये कैसे विधा है?
0: नाटक लेखन के उसका भी एक कोर्स हुआ था। आए थे भारत से एक कलाकार थे, दिनेश ठाकुर ने भी 15 दिनों का एक कोर्स चलाया था। MGI के निमंत्रण पर भी आए थे, तो वे नाट्य लेखन पर कोर्स चला रहे थे, तो हमने भाग लिया था। उनका भी उच्च स्तर का था, दिनेश ठाकुर, वे भी कुछ एक अभिनेता थे, फिल्म के भी और नाटक के भी।
1: आप जब नाटक लिखते हैं तो कौन कौन सी बातों, कौन कौन सी बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ता है?
0: मैं जब नाटक लिखता हूँ तो मैं समाज से कहानी उठाता हूँ, समाज में जो कुछ है। कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है, तो हम लोग ये कहते हैं नाटक समाज का दर्पण है। जो कुछ समाज में होता है उसको लेकर हम लोग मैं नाटक लिखता हूँ, ताकि लोग जब देखें तो ऐसा नहीं लगे कि ये तो काल्पनिक चीज़ है, ये तो मिथ्या है, ऐसा लगे कि ये तो घर घर की कहानी है। सामाजिक नाटक लिखते हैं तो घर ही से उठाते हैं, समाज ही से उठाते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। पिछले नाटक जो मैंने लिखा था उसमें समाज के कई समस्याओं पर, समाज की कई समस्याओं पर प्रश्न उठाया था उस पर, जैसे कि डिवोर्स है, जैसे कि डिवोर्स हैं, ड्रग हैं, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हैं, इस तरह की बातों को लेकर, पर्यावरण है, इस तरह की बातों को लेकर नाटक लिखता हूँ मैं। और बदलते रहते हैं, एक ही बात पर तो नहीं दोहराएंगे ना, बदलते रहते हैं, क्योंकि समाज में समस्याएं बहुत हैं अभी, और सामग्री बहुत आसानी से मिल जाती है नाटक लिखने के लिए, चाहे रूपक, अब तो रूपक नहीं लिखते हैं, मतलब रूपक 30 मिनट का नाटक होता था वो नहीं लिखते, लिखते हैं डायरेक्ट 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का नाटक लिखते हैं।
1: एक कमजोर स्क्रिप्ट और एक सशक्त स्क्रिप्ट के बीच में फर्क क्या है?
0: कमजोर स्क्रिप्ट जो है वो कमजोर ही रहेगा, उसमें मतलब कि कहानी उतनी, कहानी की पकड़ नहीं होती उसमें, और मतलब कि कैसे कहेंगे, छिछला होता है वह कहानी, छिछला मतलब ऊपरी ऊपरी बातें, मतलब दर्शक देखेगा भी उसे पसंद नहीं आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा उसे, क्योंकि हम सब कुछ किसके लिए करते हैं, दर्शक के लिए करते हैं, तो भरसक दर्शकों को, दर्शकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हमें कहानी को की जड़ को पकड़ना चाहिए अच्छी तरह से, मजबूत और गंभीर, साथ में उसमें भी कॉमेडी होना चाहिए, कॉमेडी होना चाहिए उसमें, मतलब कि जैसे कहते हैं ना रंगमंच में 3 बातें आती हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, ये तीनों साथ चलते हैं, तीनों का साथ होना ज़रूरी है, तब जाकर एक नाटक सशक्त होता है, तब जाकर एक नाटक सुंदर होता है और लोग देखना पसंद करते हैं इस तरह के नाटक। तीनों बातों को साथ लेकर चलना चाहिए, संगीत, नाटक और नृत्य। और मैंने जितने भी नाटक किए हैं फुल लेंथ प्ले, उसमें इन तीनों, इन बातों का, मतलब कि इन बातों को ध्यान दिया है और पूरा पूरा लिया है इन बातों को।
1: संगीत, नृत्य और नाटक, जैसे कि आपने कहा 3 स्तंभ होते हैं नाटक के, जो उसको सशक्त बनाता है, एक स्क्रिप्ट को सशक्त बनाता है। फिर आज के ज़माने में 2025 के युग में हम जी रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, स्क्रीन है, इंटरनेट से म्यूज़िक डाउनलोड, AI है, AI से हम म्यूज़िक बनवा सकते हैं, तो इन सब को लेकर क्या अभी भी हम इन्हीं 3 स्तंभों का साथ लेना चाहिए, मतलब नृत्य, संगीत और नाटक?
0: नाटक मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक नाटक शुरू करेंगे एक कहानी को लेकर, मैंने कहा ये 70 मिनट का, 75 मिनट का, तो एक मतलब कहानी देखते देखते दर्शक बोर हो जाएगा, चाहे कैसा भी नाटक क्यों ना हो, बोर हो जाएगा, और बीच में एक नृत्य डाल देते हैं और जहाँ मोहताज करते हैं संगीत नृत्य से, तो वो कहानी जो है, वो नाटक जो है एकदम ही मजबूत हो जाता है नाटक, और दर्शक को भी लुभा देता है, दर्शक देखना पसंद करता है।

0: देखते देखते बोर हो जाएगा, फिर एक नृत्य डालते हैं संदर्भ में, ठूंसते नहीं है नृत्य, ठूंसते नहीं है ना, बस संदर्भ में आता है नाटक, संदर्भ में आता है। देखा ऐसा है कि एक एक वृद्ध का वो जन्मदिन है, उसमें जन्मदिन के अवसर पर मतलब एक गीत डाल देते हैं, नृत्य हो जाता है, गीत गाते हैं मंची पर, गीत गाते हैं, नृत्य चलता है, इस तरह की घटनाएं उसमें जोड़ देते हैं नाटक में। और कई ऐसी घटनाएं हैं जोड़ देते हैं ताकि नृत्य आ जाए उसमें, संगीत आ जाए उसमें, तो ये एक नाटक सशक्त बनाता है इन बातों।
1: जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक नाटक भी ही चल रहा है कि आप बता रहे हैं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ और इस नाटक में संगीत का समय आ गया है। तो चलिए लेते हैं कि म्यूजिकल ब्रेक, इस गीत के बाद हम फिर वापस आते हैं।

0: नाट्यकला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा।
1: नृत्य, संगीत और नाटक तीन स्तंभ है जहां जिसके जरिए एक नाटक जो है, एक स्क्रिप्ट जो है वो सशक्त होता है और उसमें बल आ जाता है, और खेलने के लिए भी, देखने के लिए भी जो प्रेक्षक होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, उनको उनकी रुचि भी बढ़ती है। हमारे साथ है गुरुजी राधानंद सरा सिंह जी। आप एक लेखक भी है, नाटककार भी है, अभिनेता भी है और निर्देशक भी है। बात करें हम नाटक इतिहास मॉरिशस में, खासतौर पर आपके अनुभव से जुड़े हुए जो भी आप जानते हैं, तो एक बार फिर से हम चलते हैं इतिहास में। जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह से मोहन महर्षि जी आए और उन्होंने प्रशिक्षण दिए 6 साल तक के एक मॉरिशन कलाकारों को, और उनमें से आपको मौका मिला है। इन 6 सालों में लगातार आपने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद और कौन कौन से लोग आए, क्या सिर्फ भारत से या फिर अन्य किसी देश से आए, और किस तरह के सेमिनार्स का आयोजन किया गया?
2: ऐसा है कि जब मंत्रालय ने देखा कि मॉरिशस के जो कलाकार हैं वे लोग नाटक में रुचि बहुत लेते हैं, केवल हिंदी में नहीं, अंग्रेजी, फ्रेंच, सभी लोगों के लिए उन्होंने देखा कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने कुछ निमंत्रण किया कुछ विशेषज्ञों के, नाटक विशेषज्ञों के। जैसे भारत से सबसे पहले रणबीर सिंह जी आए, मोहन महर्षि जी 6 साल तक रहे, रणबीर सिंह जी भी 3 साल तक रहे। उन्होंने भी वर्कशॉप किया, यहाँ पर ट्रेनिंग दी लोगों को। फिर अमेरिका से आए थे चार्ल्स पेस, वो मतलब कि अफ्रीकी नस्ल के थे, ऊंचे ऊंचे बाल थे इसे, इस तरह से चार्ल्स पेस। फिर इटली से आए थे फाबियो पाचियोनी, ब्रिटिश काउंसिल शेक्सपियर के विशेषज्ञ एंटोनी कॉर्निश इंग्लैंड से आए थे, और फ्रांस से आए थे जाक बुल्बे। सभी की जो ट्रेनिंग था एक ही तरह की ट्रेनिंग थी। सर बहुत अच्छा लगा, मतलब कि ऐसा लगा कि ये यहाँ आया, इंग्लैंड से आया है या फ्रांस से आया है, तो उसकी कॉन्टीन्यूटी लगता है कि कॉन्टीन्यूटी है, इस तरह से चलता था। बहुत अच्छा लगता, क्योंकि नाटक तो रंगमंच है, एक ही है, मतलब एक ही तरह से होता है सब। तो इस तरह से रेजिडेंशियल सेमिनार होता था, ये ज़्यादातर पॉइंट जेरोम में होता था। फिर नॉर्थ में इधर चलता था, ऑस्लागे में चलता था।
1: जब आप कह रहे हैं कि ये सब नाटक नाटक से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, वो आए और ट्रेनिंग दी, तो आपने कहा कि सभी लोगों की ट्रेनिंग बराबर थे, क्या अच्छा आपको लगा, या फिर कुछ छोटा मोटा फर्क जो अमेरिका से में अलग होता है, फ्रांस में अलग होता है, भारत को थोड़ा सा अलग रखता है, इसमें क्या फर्क है?
2: फर्क ये था कि मतलब कि कैसे एंटोनी कॉर्निश को लेते हैं, ये ब्रिटिश काउंसिल टूर थे, यूके से आए थे, तो इन्होंने बल दिया था शेक्सपियर के नाटकों के बल। एक अन्य

0: अंश लिया, एक दिन में 15 दिनों में एक अंश लेते हैं वे शेक्सपियर के नाटक का, एक अंश लेकर मतलब पूरा दिन उसी पर काम करते थे, एक एक अंश लेकर शेक्सपियर के नाटक का एक अंश लेकर पूरा दिन उसी पर काम करते थे। बहुत अच्छा लगता था, खड़ा कर देते थे दो मेल कलाकारों को इस तरह से, मतलब कहा कि एक पेड़ है और एक सांप आता है और उसी तरह से इधर से उधर जाता है, इधर से उधर पेड़ पर चढ़ता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था ये। और जितने लोग भी आए, जितने लोगों ने आए अपने अपने ढंग से, बस नाटकी पर बोला और नाटकी पर काम कराया। उसमें एक्सरसाइज था, आँखों का एक्सरसाइज है, कंधे का एक्सरसाइज है, हाथ, हर बार पर लोग केवल हाथ का प्रयोग करते थे लेकिन सिखाया गया कंधों से करना चाहिए, आँख से करना चाहिए, सिर से करना चाहिए, हर बात मतलब हाथ उठाकर नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम ध्यान में रखते थे और बोलना, चिल्लाना नहीं। बहुत से लोग नाटक करते थे उस समय शुरू में, तो मेलो ड्रामा ये शब्द मैंने उन्हीं लोगों से सीखा है जो चिल्ला कर करते हैं, जो कुछ भी करना है चिल्ला कर करते थे ताकि लोगों तक की आवाज़ पहुँचे। ये मतलब धीमी आवाज़ करके भी बोल सकते हैं अभिनय के द्वारा, लेकिन मेलो ड्रामा का अंत हुआ। उस समय कलाकारों को कहा जाता था कि एक अंश प्रस्तुत करो जाकर, तो कहा स्क्रिप्ट दे दिया, छोटा सा स्क्रिप्ट, चार पंक्तियों का स्क्रिप्ट एंटोनी कॉर्निश देते थे कि इसको अभिनय करो मंच पर जाकर, तो इसी पर काम होता था। बहुत दिलचस्प था, लेकिन लाभ उठाते थे सभी कलाकार, बहुत ही लाभान्वित हुए थे इससे।
1: और उस समय फुल लेंथ पे शुरू हो गया था,
0: और अभी हाल ही में शुरू हुआ था, और हमने सोचा था कोर्स से पहले कि हम जो कुछ कर रहे हैं यही बेस्ट है, लेकिन जब हम लोग सेमिनार में गए तो हमने देखा कि नहीं, ये बेस्ट नहीं, अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत आगे जाना है, तो हम लोग उसमें हेयर बदल कर काम करते थे। ये था फायदा उस सेमिनार
1: और का। नाटक का रूप हर मतलब हर एपिसोड, हर साल, हर एक फेज होता है, वो बदलता रहता है। हाल में ही जब हम नाटक के बारे में पढ़ रहे थे तो एक मॉडर्न नाटक का एक कॉन्सेप्ट आया। मॉडर्न नाटक एक होता है पुअर नाटक, पुअर नाटक मतलब गरीब नाटक। कैसे एक कलाकार होता है स्टेज पर, कुछ नहीं होता है, वो अपने अभिनय से सब कुछ दिखाता है। मान लीजिए चेहरा वो धो रहा है, पानी नहीं, कुछ नहीं है, बस दिखा रहा है, अभिनय कर रहा है, उसको कहते हैं पू नाटक, एकदम गरीब। फिर उसके बाद हम आएंगे जब आपने कहा कि पहले के जमाने में नारियों को, महिलाओं को अनुमति नहीं थी नाटक में भाग लेने के। आपकी याददाश्त में, आपके इतिहास में अगर हम जाएंगे तो कब से महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई?
0: ये मुझे याद है 1970 से मैंने जो नाटक दिखा था पोर्ट्री थिएटर में, नाटक होता था तब, अंग्रेजी और फैंसी के नाटक होते थे, लेकिन पोर्ट्रीज का एक ग्रुप था अनोवा सर्कल, तो वहाँ पर मैंने हिंदी में एक नाटक देखा था, ध्रुव स्वामिनी देखा था। तो वहाँ पर एक अभिनेत्री थी, हिंदी अध्यापिका थी, अभी भी हैं, देखा था उनको, शोभना दशरथ जी, मिस शोभना दशरथ, उन्होंने अभिनय किया था, अच्छी अभिनेत्री थी। तब से सभी लोग उसे बुलाने लगे थे अपने ग्रुप में खेलने के लिए, मैंने भी उन्हें आमंत्रित किया था खेलने के लिए, सीरियल में खेलने के लिए वो आई थी।
1: सीरियल की बात बहुत ही रोचक, इसके बाद आएंगे, लेकिन मेरे हाथ में एक पुस्तक है सिर उठा के जियो। फिर उसके बाद आपने, आप व्यक्तिगत रूप से आपने न सिर्फ एक्टिंग में बल्कि लेखन में भी कलम चलाई है, सिर उठा के जो आपकी पुस्तक है,
0: ये मेरी पुस्तक है,
1: इसमें कितने नाटक है?
0: इसमें चार नाटक है कुल मिलाकर, चार फुल लेंथ प्लेज हैं, चार नाटक हैं, मतलब कि एक घंटे 10 मिनट, 70 मिनट का, 70-75 मिनट का, चार नाटक है इसमें
1: चार नाटक फुल लेंथ प्ले का। और थोड़ा सा इतिहास आपने बताया है मॉरिशस में, किस तरह से मॉरिशस में नाटक का मतलब उसकी शुरुआत
0: हुई थी।
1: अब आते हैं वह रोचक मोड़ गुरुजी, जहाँ पे नाटक की शुरुआत किस तरह से, किन परिस्थितियों में हुई, फिर उसके बाद अभिमन्यु अनंत जी आए, किस तरह से उन्होंने नाटक को प्रोत्साहित किया, कलाकारों को प्रोत्साहित किया, किस तरह से प्रशिक्षण औपचारिक रूप से शुरू हुआ।

0: हुआ, किस तरह से सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से कंपटीशन शुरू हुआ और सेमिनार्स, वर्कशॉप वगैरह उन लोगों ने आयोजन किया। अब आते हैं नाटक, जो मंच से निकलकर पर्दे पर आते हैं, टीवी पर आते हैं, एक नया रूप लेता है, सीरियल। सीरियल के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह से शुरू हुआ और किन किन कलाकारों को मौका मिला?
1: सीरियल शुरू में, मतलब कि शुरू किया था सीरियल, एक कहानी थी रामदेव धुरंधर की, एक कहानी पर, एक कहानी पर दो एपिसोड बनाया गया था हरेश व्यास ने, तब वो एमबीसी में थे और नंद कुमार बोदा जी यहाँ पर डायरेक्टर जनरल थे, मुझे याद है।
0: तो यहाँ पे मॉरिशस में सिर्फ हम एमबीसी ही थे, यहाँ जो मतलब एंटरटेनमेंट टीवी पर प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे। फिर उसके आपने कहा एक कहानी
1: विश्वमंथन कहानी थी, उसके आधार पर दो एपिसोड बनाया गया था, लेकिन सशक्त था, वे तो कैमरामैन थे, वे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्र थे, यहाँ पर काम करते थे, एमबीसी में काम करते थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो यहाँ पर से शुरू उन्होंने किया, लेकिन वो दिलचस्प कहानी थी और सीरियल भी अच्छा आया था, मुझे उसमें खेलने का अवसर मिला।
0: फिर इसके बाद हम सब जानते हैं कि आयाम फिर नया आयाम
1: मतलब कि पूरा सीरियल तो नहीं था, छोटी छोटी कहानियों को लेकर इस तरह से
0: कई मॉरिशनों को मौका मिला।
1: हाँ, बहुत बहुत मॉरिशनों को मौका मिला। और फिर उधर रोमेश शर्मा सेलावी भी एमबीसी ही का मेरे ख्याल से था, जॉइंट वेंचर था एमबीसी और रोमेश शर्मा जी का, उसमें मुझे खेलने का अवसर मिला।
0: अभी जो हम अब प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को टीवी के जरिए, फेसबुक के जरिए लोग देख पा रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर बैठे हुए निजाम मनबोध, उनको मौका मिला था आप लोगों के साथ काम करने का।
1: एक सीरियल हमने शुरू की थी, 8 एपिसोड 12 एपिसोड का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन 8 एपिसोड आते आते मतलब रुक गई, यहाँ काम यहीं पर रुक गया,
0: किसी कारणवश तो रुक गया।
1: हाँ, कारणवश, कारण उस कारण में नहीं जाना चाहते हैं हम लोग, लेकिन हुआ था, पूरा हुआ था, रात दिन बहुत मेहनत की थी कलाकारों ने, और हमारे कैमरामैन में सशक्त कैमरामैन थे हमारे,
0: बिल्कुल
1: निजाम मनबोध जी, बहुत बहुत काम किया था इन्होंने,
0: उस समय रात दिन काम होता
1: रात
0: था।
1: भी रात को भी हम लोग जाते थे शूटिंग के लिए, मुझे याद है एक सब्जी के खेत में गए थे, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी नाटक की, मतलब कि रात देर तक, यहाँ 11 बजे तक वहाँ पर हमने काम किया था।
0: तो गुरु जी, जो प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग आप लोगों को मिला नाटक में, थिएटर में, वही ट्रेनिंग, वही टेक्निक्स को आप लोग सीरियल में, टीवी में अप्लाई करते थे?
1: कहानी को लेकर, अभिनय को लेकर, बाकी नहीं, बाकी तो सब तो मतलब टेक्निकल था, वो टेक्निक का काम था, लेकिन केवल अभिनय, जो अभिनय हमें प्राप्त हुआ था ट्रेनिंग में, उसी को हमने मतलब कि सीरियल में उसी को प्रयोग करते थे, अभिनय, वही अभिनय सीरियल में करते थे, और बाकी जो टेक्निक का काम था वो टेक्नीशियन करते थे सीरियल में। तो इस तरह से सीरियल भी हुआ, काफ़ी सीरियल
0: आपने
1: हुआ।
0: आपने नाटक में खेला, आपने टीवी सीरियल में भी खेला, तो दोनों के एक्टिंग में फ़र्क क्या होता है?
1: फर्क ये है कि मंच पर जब खेलते हैं तो अभिनय अलग होता है, और जब स्क्रीन कैमरा के आगे खेलते हैं तो वो सीमित रहते हैं थोड़ा।
0: वो कैसे होता है?
1: वो मतलब कि एक दायरा होता है कि यहाँ से वहाँ तक चलना होगा, रेखा खींच देते हैं, मतलब कि यहाँ से वहीं तक चलना है सीरियल में, और जबकि नाटक में पूरा मंच का प्रयोग करते हैं। ये है फर्क, ये है। और आवाज़ में भी उसी तरह से, मतलब जैसे कि कभी कभी चिल्लाना पड़ता है, लेकिन सीरियल में उतना चिल्लाना नहीं पड़ता।
0: और ये जो सारे जो सीरियल चले मॉरिशस में, सब कहानी मॉरिशस की है और मॉरिशन लेखकों द्वारा
1: जो मैंने सेलावी मॉरिशस की कहानी थी, विश्वमंथन मॉरिशस की कहानी थी, और नया आयाम जो था वो भी मॉरिशस की कहानी थी।
0: फिर उसके बाद आता है फटा जूता,
1: वो भी मॉरिशस की कहानी थी।
0: और आज हम देखते हैं कि ना सिर्फ मॉरिशस बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन बहुत सारे ऐसे क्रू होते हैं जो मॉरिशस में आकर फिल्म करते शूटिंग करते हैं

0: और यहाँ के कलाकारों को लेते हैं।
1: हाँ,
0: हमको मौका भी मिला था, एक द बुक नाम का एक मूवी थी और यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। कहानी मॉरिशन कहानी है और हमको मौका मिला था एक पुलिस ऑफिसर प्ले करने का। तो इस तरह से जैसे ही वे लोग आते हैं मॉरिशस में प्रोडक्शन करते हैं तो मॉरिशन कलाकारों को लेते हैं, इस तरह से कलाकारों को भी मौका मिलता और कारवां चलती आगे चलती
1: बढ़ती है, मिलता है कलाकारों को बहुत आगे इस तरह से आगे।
0: और अभी तक कहा अगर इतिहास में जाएंगे, इतिहास से लेकर अभी तक 2026 में अभी तक आप जैसे निर्देशक होते हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं थिएटर के जो अभी भी नाटक खेलते हैं, नाटक लिखते हैं, उनका मंचन होता है या तो धार्मिक गतिविधियों के बीच में होता है, दुर्गा पूजा हो, एकादशी हो, या फिर रामनवमी के बीच में हो,
1: होली हो,
0: दिवाली हो, वे लोग खेलते हैं, नाटक का मंचन होता है और मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की ओर से कंपटीशन भी आयोजित होता है और MFDC की ओर से भी बहुत सारे ऐसे फिल्म्स आते हैं, कंपटीशन आते हैं जहाँ पे अभिनेता, निर्देशक और लेखक को मौका मिलता है इस इंडस्ट्री में अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए। गुरुजी, इन सब बातों को हमने हमारे जो लिसनर्स है, जो हमारे दर्शक है, उन लोगों के सामने रखा, कुछ छोटा तो नहीं, क्योंकि काफी लंबा गया
1: हम लंबा
0: कुछ छोटा तो नहीं, बिल्कुल। और अगर कोई छोटा कुछ टूटा हो तो गुरुजी तो है ही हमारे साथ है, तो फिर से बुलाएंगे, फिर से बातचीत होगी। तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया, तो ऐसे ही आप लोग नाटक में दिलचस्पी रखिएगा, नाटक लिखिएगा, नाटक का मंचन कीजिएगा, अभिनय कीजिएगा और इस कला को आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि यह कला, यह रंगमंच, यह नाटक बहुत ही सशक्त होता है, वो सीधा वार करता है प्रेक्षक तक और इमोशन के साथ, भावनाओं के साथ खेलते हैं और जो भी कुछ घटता है समाज में, इन सारी घटनाओं को मंच पर लेकर लाकर लोगों के सामने प्रस्तुत, ताकि लोगों के सामने एक उदाहरण मिले, रखें, देखने का मौका मिले कि किस तरह से हम भी एक चेंज, एक थोड़ा सा बदलाव ला सके, ताकि यह समाज एक अच्छा समाज हो सके। गुरुजी राजेंद्र सरदार सिंह जी, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपको भी नमस्कार।
0: तो चलिए आप लोगों ने साथ दिया इसके लिए।
2: नाट्य कला, रंगों की

0: choses marchent et tu viens couper.
1: तो अभी के लिए आपको छोड़े जाते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ, मिलते हैं अगले सप्ताह एक और कहानी के साथ, एक और नाटक के साथ, एक और अभिनेता के साथ। तब तक हमारी ओर से नमस्कार।
2: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित कुशराज लचिगादू मामले में अदालत का फैसला अब बाद में सुनाया जाएगा। साइजेस अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने मामले पर अपना फैसला स्थगित कर दिया। ये मामला 2018 का है जब कुशराज लचिगादू पर लगभग 33 मिलियन रुपये मूल्य के 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स वाले एक पार्सल प्राप्त करने का आरोप लगा था। वर्ष 2024 में दो नए वाहनों गवाहों के सामने आने के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अब अदालत का फैसला एक दूसरी तारीख को सुनाया जाएगा। वैदिक ज्ञान, सत्य की खोज और समाज सुधार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आर्यसभा मॉरिशस ने जून महीने को सत्यार्थ प्रकाश को समर्पित किया है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए पूरे महीने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और आज पोटली स्थित आर्य भवन में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की गई कि 1 से 5 जुलाई तक मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। साथ ही स्वामी दयानंद के प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश की प्रतियां भी वितरित की जाएंगी। आज हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुकी है, लेकिन मॉरिशस के आसमान में पहली बार किसी विमान ने कब उड़ान भरी थी इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1922 में वाकवा के जिमखाना क्लब मैदान से एक विमान ने पहली बार मॉरिशस के आसमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 104 वर्ष बाद एनजीओ SOS पैट्रिमोन उस भूले बिसरे अध्याय को फिर से जीवित करने और देश की विरासत का हिस्सा बनी इस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में कथित ठगी के मामले में आज एक नया घटनाक्रम सामने आया है। मुख्य संदिग्ध 64 वर्षीय हेमराज मोहनौ को पोटली अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत का विरोध किया गया। इसके बाद उसे दोबारा पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में संदिग्ध धन के लेन देन से जुड़े आरोपों को लेकर एक अन्य व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। FCC के अनुसार अब तक 11 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि करीब 40 अन्य मामलों की जांच जारी है। कथित ठगी से हुए नुकसान का आंकड़ा 30 मिलियन रुपए से अधिक हो सकता है। विदेश स्तर पर इजराइल और लिबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुए वार्ता दौरे के बाद अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। समझौते के तहत दक्षिणी लिबनान में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे, जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों को मौजूदगी पर रोक होगी और नियंत्रित करने के लिए जो ताकतों के पास उनके पास रहेगा। ये व्यवस्था तभी लागू होगी जब हिजबुल्ला सभी हमले पूरी तरह बंद करे और सीमा क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Non seulement Saint-Henri, Saint-Hubert-Aimé, 27 साल की कृष्णा चकोरी, 27 years old की कृष्णा चकोरी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल सुबह के 10 बजे उनकी दादी सुकन दमयंती के मकान Saint-Hubert से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM स्वराज भवन लेन लालमाती में 89 years old की कलावती मंगो पैदाइश नाम लखन, लोग उन्हें विद्यापति के नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे मनीष मंगो के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्डेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: You're listening, RM Free. Radio.

नमस्कार और आदाब। आप सभी श्रोताओं को और समस्त दर्शकों को हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आज की चर्चा, इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत हम करते हैं। यो तो आज तकनीक पर अंजू लक्ष्मण हमारा साथ दे रही है, प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा और इस प्रोग्राम के निर्देशक हैं निसाम। तो हम सब बिल्कुल तैयार हैं और ये प्रोग्राम चलेगा दिन के 10 बजे तक। और जाहिर है आप ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है किस विषय पर आधारित होगा। यूँ तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हरियाली, स्वच्छ परिस्थिति का यंत्र जो है मानव जीवन की, उसके बिना उसके कल्प

कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज हम विशेष तौर पर पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा करेंगे। और आज पूरी दुनिया जो है जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है।

0: इन तरह की चुनौतियों को लेकर के हम लोगों की जिम्मेदारी कौन सी है, हम लोगों की क्या कदम उठाना पड़ता है, इसी विषय को लेकर के इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो वरिष्ठ अतिथि हैं। आप लोग उन लोगों से भली भांति परिचित हैं। और मेरी जो दाई ओर है, हमारे साथ हैं डिविजनल एनवायरनमेंट ऑफिसर जो पर्यावरण मंत्रालय से आए हुए हैं, आप हैं श्री सत्यानंद बसकरावत जी।
1: नमस्कार
0: जी। और हमारे जो दाएं बाएं ओर हैं, हमारे साथ हैं सब इंस्पेक्टर ओमदत्त सीताराम जी जो पुलिस दे लॉन्विरोनमेंट के कर्मचारी हैं। आप दोनों को नमस्कार और स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। और श्री सत्यानंद जी, पहला हम ये पूछब जा, जैसे कि सब कोई जाने लग जा कि कल आज तो 4 जून है, 4 जून कल मतलब हमने के पूरा देश जो है विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनावल जाए, तो मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो हम आपसे यही पूछब कि जो एनवायरनमेंट डे जो दिवस जो है वो काहे चाहला मनाए के, एक मायना कौन ची है, और हर बरिस में एगो टेम रहेला, हर बरिस एगो टेम, तो ये टेमवा कौन ची है मतलब 2026 के, और एक इम्पोर्टेंस कौन ची है, कृपया हमने के श्रोता और दर्शक लोग के बतावा।
1: पहला बात बा जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस, वो हर साल 5 जून के हमने मनाएला सा दुनिया भर में, प्लस की 150 पेई एकरा सेलिब्रे करेला। और ये कमेंसे हो रहा लाने 1972 से, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एकरा डिक्रिटे करे रहा, तब लाने 1973 से प्रोमियर फॉर कमेंसे हो सेलिब्रे करे के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और उकर स्लोगन रहा ओनली वन अर्थ, यानी कि एक मात्रा पृथ्वी। हाउले पकवा से अभी तक हमने आदमी लोग के कॉन्शियंटिजे करते हैं सा, सेंसिबिलाइज़े करते हैं सा, लैम्पोटेंस धरती माँ की, लैम्पोटेंस लॉन्विरोनमेंट की, और कौन कौन कदम चाहिए ले के हमने के पर्यावरण के कैसे बोलिला सा बचाई के सुरक्षा करे के, और क्लाइमेट फ्रेंडली बने के, यानी कि क्लाइमेट चेंज के भी कौन बात करे के। तो हाई साल लाने 2026 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रे हो, उकर टेम है क्लाइमेट चेंज पर। और काहे सेलिब्रे करीला से, ये कॉन्शियंटाइजेशन करे खातिन सभी कोई जानी कौन ची है लॉन्विरोनमेंट, उकर इम्पोर्टेंस काहे है, बस कि हमने के ध्यान में रखे चाहिए कि अगर हमने अपन लॉन्विरोनमेंट के नई प्रोटेजे करब सा, तो हमने के लॉन्विरोनमेंट हमने के नहीं सकी प्रोटेजे करे, यानी कि हमने ये के जीवन अफेक्टे होए, और हमने के जो जेनरेशन फ्यूचर बा वो लोगों और ज़्यादा अफेक्टे होए,
0: जस्ती असर पड़े उन लोग के पर। तो देखा जा कि कोई कोई जगह ऐसे टेम्परेचर जो न वो कभी मोटे होला, तो कभी बारिश ना हो के बराबर रहेला, इन ओंदाशों वो रहेला, और हर तरह के मतलब सकब जा बोले काफ़ी असर पड़ता हमने के जो इन मौसम पर। तो ये सब कौन कारण सकेला?
1: हाई कारण पर आई के अगर ये हम बोलती जब लॉन्विरोनमेंट के जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रे करी ला सकता, जो जो डिफरेंट टेम पर सेलिब्रे करी ला सकता, पहला बा चेंजमेंट क्लाइमेटिक, और दूसर दूसर टेम हर साल एगो टेम रहेगा,
0: एगो
1: कोनो लाने सेलिब्रे करें सा प्लास्टिक पोल्यूशन, सब जब मोरिस में ढेर प्लास्टिक हो गल बा, तालिर ले बतिया आपसे प्लास्टिक कैसे चाहिए जिमिनी हो बा मोरिस में, और कौन कौन ऑल्टरनेटिव बा, और कौन कौन लालवा बा, और एयर पोल्यूशन बोलना सा पोल्यूशन लेयर, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जितना जीव जंतु बा ओकरा चाहिए प्रोटेजे करके प्रिजर्व करे के, सी लेवल राइज जो बोलना सा समुद्र के स्तर में वृद्धि हो गल बा मोटे हुआ था, और कंसुमेशन जी हाँ मान ला हमने अभी एगो लेमोन में जिया था ऐसा जहाँ सब चीज़ फासिल दिखिला सा, मान ले मान ला एगो चिट टूट गल बात नहीं बनाप सौकरा दूसर नवा किन देव

0: parce qu'il facilite dhirma ta ego concept ha jan bolila sa reduce reuse recycle aage ke aadmi karat rahlai se ta hamni ke onkwaaze karte se sab kare ke aur jan ba food security abhi hal hi mein lane 2020 mein 2019 mein dekhli sa covid aavat rahal ta dher koi sochela paisa ba se kyan se khareed dei ए पोते हो जाए दूसर देश से खाई के चीज ले गेम सब चीज तो देखल हौले पकवा में ए पोते वो नहीं सकत रहल होई बस के ढेर पे अफेक्टिव हो गया रहा तो हमने के चाहिए अपन ओतो सफिशिएंस अलिमेंटे यानी के माने के
1: अपन चाहे करे के
0: जो पैदा करीला से हौ खाप सा और ऐसे हमने पर्यावरण के पोते जिक्रप सा और एगो बात जो बोलीला सा लाना चाहिए इकोसिस्टम जितना चीज है कैसे लॉन्विरोनमेंट सब चीज चाहिए पोते से करके अब दूसर बात बा बोला सौजमों क्लिमाचिक कैसे होला सौजमों क्लिमाचिक हुआ था सैप सैप लॉन्गाज में एक्सप्लिके करत है कि जब हमने जितना एक्टिविटी करत है सर कैसे बोलेला सर डिफरेंस सकते हैं बा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करत है सर तो हैवी फ्यूएल ऑयल से भी करब से तो एगो गैस इमिट होला कार्बन डाइऑक्साइड वो एगो ग्रीन हाउस गैस है तो ये एगो गैस है जो बोली जा सकते ग्रीन हाउस गैस और ये जब एटमोसफेयर में जाला तो धरती के माने एगो मोल्टो निखर टूब देवेला तब धरती के तापमान भरे लगेला अब दूसर सीखते बा कैसे बोले जा सकते ट्रांसपोर्ट के सीखते हैं जितना व्हीकल बा लोटो बीस कैमियों जब मोटे रूले होला तो फ्यूएल से भी होला डीजल लाइसेंस तो हयो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर असल में कार्बन डाइऑक्साइड एक को ग्रीन हाउस गैस नहीं है और दूसर प्रकार के गैस बा एग्रीकल्चर वो जब करेला से जो देश में कैसे चावल पैदा होला हो जा पर ही एक गैस है मीथान वो एक ग्रीन हाउस गैस है तो और कैसे बोले सर इंडस्ट्रीज में जिसमें में हैवी फ्यूएल ऑयल से भी होला और बॉयलर में वापे अप्रोजिया करके और मशीन के सब चलाए के तहियो से गैस आलिफे देश से अप्रोज होला जिनके बोले ऐसा ग्रीन हाउस गैस तो हई सब गैस वन जब एटमोसफेयर में एमिट होला तब जितना सूरज के किरण जो ना होला लाली में सोले जितना होला सबके रिफ्लेक्टे कर देवला फेनों से लाते में तो धरती माँ के तौर पर गाचे बरे लगेला जब बरे लगेला तो हई पोलनो पोलसिद में जोन बा आइसबर्ग सब फोन हो लगेला ये जब फोन हो लगेला तब समुद्र के स्तर मतलब कर निवो मोटे हो लगेला तब जैसे छोटा छोटा देश बा कैसे मोगिस है गो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है तो देख बा प्रॉब्लम होता इरोजन को चाहिए मतलब कोस्टल इरोजन होता प्रॉब्लम होता जितना कोई बोला में रहेला सब कोई अफेक्ट होता
1: आजकल हमनी के मोगिस में सगरो ऐसे होला तो हमनी के कौन कौन खास ऐसे जो हमनी के डोमिनेट होता कौन कौन ची
0: मन मोले खोज तो कैसे जस्ती अफेक्टिव होला
1: सर
0: तो क्लाइमेट चेंज से सब सिकते अफेक्टिव होला
1: कैसे ई बरिस 2026 के वर्ल्ड पर्यावरण दिवस की टेम जुन है एक्ट नाउन मतलब क्लाइमेट एक्शन देखे में तो ई में हमनी कौन ची चाहेला मोरिस में कौन खास ऐसे होता है जुन हमनी के चाहे अपन प्रिकॉशन लेके अपन मतलब जिम्मेदारी लेके कि कुछ
0: हमने जनता लोग जो बोली ला सा ढेर एक्शन सकप से ले क्लाइमेट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने के पहला कौन कौन प्रभाव होता जब तो पे गाचा उग मौते होता मॉरिशस में तो है जो प्रोजिक्शन एग्रीकोल अभी बट रही सा फूड सिक्योरिटी तो जो प्रोजिक्शन एग्रीकोल होता उसकी बेसे हो जाए तो पूसों से लाने दी मिल सें कौंटली और जो प्रोजिक्शन कान है है चीनी के पैदा जन पैदा करीला सा ओकर रनमो सा की बेस हो जाए 48% से 68% दे बस के क्लाइमेट चेंज से पहला टेम्परेचर ऑगमेंटे होला ता प्लांटो अफेक्टे होला डीजेम ओकर पानी जन बरसेला कमती होता घटता ता प्रोजेक्शन बेसे होला अब देखब सा प्रोजेक्शन को कोते पानी के देखब सा ता पानी घट गलबा 1950 से अभी तक 2026 ले जितना पानी बरसेला बेसे हो गल बा 8% से और अभी 2050 तक जो पानी हमने के मिलेला बारिश के पानी और घट जाए 13% से अभी बोलते हमने के देश
1: सेव वाटर
0: होती सुफे होता कुते पानी

0: के मिले ला बारिश के पानी और घट जाए थ्रेस भूसों से अभी बोलते ऐसा हमने के देश
1: सेव वाटर
0: हवा थी सुफे होता कुते पानी और रिजर्वोर में हर साल उतना सिक्लोन नहीं आता
1: हमने बोली ला जा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप लोगों के जो कौन चीज कौन जिम्मेदारी आवेला ये जब दिवस आवेला कौन खास जिम्मेदारी होला
2: देखा पुलिस डे लॉ जो ना हमने खातिन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था इसे तो हमने 5 June के मनाया सा थ्रूआउट द वर्ल्ड तो हमने खातिन जो हमने ला पुलिस डे लॉ व्यू मैं हमने खातिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे साग जो रोज के रोज आवेला बस कि कहे हमें जितना कॉम्प्लेट मिलेगा सब लिए है लॉ व्यू पॉइंट से तो हमने जब कॉम्प्लेट हुआ जब मिलेगा तो हमने जो लेकिन बा हमने जो टीम बा जो 7 टीम बा ऑचे मुरुस में तो वो लोग तो कोनो ना कोनो फासो जाते हैं सर लॉ व्यू में खातिन ना काम करे हमने तो जब सब बोले हमने खातिन वर्ल्ड एनवायरमेंट में सब जो है टू ले जो हमने खातिन अधिया वर्ल्ड एनवायरमेंट में तो हमने कोई कैसे करीला सर हमने कैसे पर्यावरण के बचाव दे सर जो लालुआ बा जितना लालुआ बा लॉ व्यू में के हमने ऑन फोर्स करीला सर फॉर एग्जाम्पल लालुआ बा ते इलेगल डंपिंग के प्लास्टिक के बा स्मोक के बा और जितना भी l'environnement c'est lié à des temps offense il sait que amené
1: amené
2: et par temps qu'il a déjà hop quand les zada sensitization qu'il a ça jaune bi complaint qu'il a ça ou mes sensitization jahan bi jail a ça bazo me jab ça plastique glass bi back par sensitization crap ça je damping jahan hola je acquise jab mile la ta ou que ta fixe penalty dès là déjà mais seulement जब जाएगा जब जहाँ आकीज़ नहीं है तो हमारे गांव के जो आदमी बा वो लोग सब के सेंसिटाइजेशन के लिए सा कॉलेज में लेकोल में जाके सब रू सेंसिटाइजेशन हमने के कैंपेन है हाई के छोड़ के है सब के छोड़ बाद आर हमने क्लीन अप कैंपेन भी कर ला जा जहाँ पर डैम्पिंग रहला है सब जाके मनी ट्वायास के लिए सा ढेर लोकल उस होती बा हमने के जे हमने के संगे साथ में मिल के काम के ला सा तो है सब कमन तो ना हमने तो रोज के रोज हमने कहा दिन
1: वाला अच्छा इस साथ इसे कौन सी बोले ला थी ऑफेंस पर कौन सी कितना और मतलब दो बरिस आगे कितना रहा और अब है भाभी
2: नहीं देखा स्टैटिस्टिक जिम्मी नहीं होता बस कि काम करे दे जा कैसे आगे हमने जन लिटरिंग में लिया जा कैसे वो सैंप वैसा इलेगल लिटरिंग कैसे वो एक वो व्यक्ति वो फीमेल करके वो सिगरेट में वो सिगरेट जीटर बेकरा हमी कॉन्टोमोशन शुरू में लगा दिस ढेर रहा अब कल कल कॉन्शियंटिस उठन सर वो लोग के अति कमती होता डैम्पिंग भी कमती होता कैसे टपास बा मोटरसाइकिल में भी की कमती बा वैसे मैं फिनी के तो फिनी नहीं हुई ना ये सब डैम्पिंग बा जितना कॉन्टोमोशन बा स्टैटिस्टिक बदलाव ला कि थोड़ा सुन बेसे होता वैसे मैं अभी बहुत चीज बा
1: और यहाँ मोरिस में ये सब होता था रोड्रिगो के पर आप लोग ही काम कर लेते
2: हाँ देखा रोड्रिग में भी एक टीम बा पुलिस उकार जो ऑफिस है पोमाचेरे में पोमाचे में है वहाँ पर एक टीम बा वो भी वो लोग भी अपन जितना काम बा वो लोग के लॉ व्यू उनमें के वो लोग अपन वहाँ काम करते हैं जा अब एक बात बोला था कि वहाँ पर प्लास्टिक जितू नहीं बा एक पेय ऐसा मुखिस से बहुत आगे बा
1: अच्छा
2: वहाँ पर प्लास्टिक नहीं बा वहाँ पर प्लास्टिक फ्री है वहाँ के आदमी लोग जैसे आगे सर्विस कर ले जाए टॉन्ट ग्राफिया के वाकुआ के यही सब जाफे वन जस्टी सर्विस कर ले जाए मिल देख बहुत अच्छा हो जा लो
1: तो इस समय हम आज की चर्चा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपके पास कोई सवाल हो या कोई सुझाव आप देना चाहेंगे तो 4028085 पर हम लोगों को ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं फिलहाल अंजू से गुजारिश है कि गाना चलाएं हमारी श्रोता और दर्शकों के लिए

0: जैसे कि सब कोई जाने लगा कल हमनी मनावब जा विश्व पर्यावरण दिवस और हमनी के जन प्रोग्राम आज यही विषय पर आधारित है। और श्री बसकलावा जी आपसे यही पूछब कि जन टेम रखल गलबा ई बरिस जैसे कि आप बोला इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड हमारे जो भविष्य के बारे में मतलब फ्यूचर के बारे में तो ये जन टेम जन है कौन कदम हमने के चाहेला अपनावे के और ये टेमवा काहे रखल बा काहे रखल गल बा
1: पहला ये टेमवा जैसे बोला इंस्पायर्ड बाय नेचर यानी कि प्रकृति से प्रेरित जैसे बोलेगा सर परोपकारी पेड़ एगो गौची जब छोटा से बड़ा होला तो जब बड़ा हो जाए तो लकड़ी मिलत रहा लागे से भी कर से पकाई के मेप बनाई के खाई के मिली ओकर जे पत्ता रही बोध मोम पत्ता और फल मिली तो खापसा वो खाली देवेला तो हमने लानाचिया के फोतेजे करे चाहिए हमने के चाहिए लानाचिया के जैसे लानाचिया हमने के सब चीज़ देवेला हमनियों के चाहिए लानाचिया के फोतेजे करके और इंस्पिरे हो के ओकरा पोल्यूशन नहीं करके है पहला बन बा देजम बा फॉर क्लाइमेट यानी कि जलवायु के लिए अभी दुनिया भर के सभी देश अफेक्ट होता सौ क्लिमाटिक से जो छोटा छोटा देश बा जैसे मॉरिशस बा एगो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है मान लो चारों बगल पानी बा तो बहुत अफेक्ट होला सा तो हमनी सौ क्लिमाटिक पर हमनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर सौ क्लिमाटिक के हमने के एमिशन गैस वाले फेदे से 0.0

0: 9% हुए हैं सिर्फ जो सर देश है जो बड़ा बड़ा भी है डेवलपे है वन सा वो लोग बहुत इमित करेला और हम नहीं अफेक्टे हो ला सा सिर्फ सापा भेजिया कि हम नहीं एक्शन नहीं ले वापस हमने के देश में बहुत एक्शन लिया था सोल मोकरी माचिक पर और त्वाजम है जो बोली ला सा फॉर आवर फ्यूचर यानी कि हमारे भविष्य के लिए जितना एक्शन आज ले हुआ था ऐसा जो फ्यूचर जेनरेशन बा वो लोग पर निमन प्रभाव पड़ी अब जो एक्शन नहीं ले वापस तो हमने के फ्यूचर जेनरेशन बोलियन सा हमने से तो नदी रहल नदी से पोलियो हो गल अब कुछ नहीं बा लामे रहल लामे में मच्छी रहल बहुत मच्छी रहल सब मच्छी लापिस करके सब फिनी कर दिली सा तो जो लानाचिया है ओकरा चाही हमने के चाही निमन से ओकरा सेवी करके जब मैं फ्यूचर जेनरेशन जो आए वो लोग कंटिन्यू से कैन से सेवी करे एक बोले ला सा डेवलपमेंट जीराब तो अब जो जस्ती ध्यान में चाहिए रखे के लानाचिया और लावी इमेन हमने के सेवी देपान है लानाचिया पर जो लानाचिया के पोते से निकल सकते तो हमने के लावी दौजे में हो जाए और ये खातिन हमने के चाही एक्शन लेके और जैसे बोली ला सा ये एजेंस क्लिमाची का भी चाहिए ढेर एक्शन ढेर कोई एक्शन ले होता तालेर ले सकब सब टिप्स बोले कैसे चाहिए
1: क्लाइमेट बोले कि लिमिट टेंपरेचर जो चाहिए ला 1.5 डिग्री रहेगी तो दिखल जात बाकी एक से जस्ती हो जाता
0: हाँ जितना एगो प्रोग्राम कर ले सा नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन में तो ये प्रोग्राम बोलाटली सा ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपारे होला मोरिस प्रिपारे कर 29 सितंबर 2025 में एक में सब प्रकार के एक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ले पब्लिक ले प्राइवेट सेक्टर ले सब कोई और जनता कौन कौन एक्शन ले सब ओकर में डालल बा तो सब पे जब अपन एनडीसी सुमित कर लन सा जो कौन शौकात है क्लाइमेट चेंज पर तो देखल कि हाई 1.5 डिग्री के टॉर्गेटवा जो है जो टेम्परेचर मोटे होता ओकरा 1.5 डिग्री से जस्ती नहीं हो दे चाही तो देखा था जब सब पे के जब कंट्रीब्यूशन आजुते करके देखल बा तो वो 1.5 डिग्री पर नहीं होता वो 2.5 डिग्री 3 डिग्री पर गिरा था तो वही से अभी ओ निवो इंटरनेशनल बोलाल बा जितना पे अपन एन डी सी प्रिपार कर रहा था चाहे जस्ती एम्बिशियस रहे कि मान ली कैसे सकें घटाई हाई गाज आले फे देसे है और चाहे ज़्यादा रेजिलियंस ऑगमोंटे करेगी यानी कि कैसे हमने जस्ती से कब सा अडाप्टे हो हमने के डिफरेंस सकते हैं कैसे पानी के सकते हैं कैसे अडाप्टे हो सर कैसे बहुत ज़्यादा बनाओ अब सर कोची कर अब सर आगे कल्चे में क्या कर अब सर चाहे जस्ती आगे कल्चे करे के लेगीम सब पैदा करे के सिर्म फैचिलीजों ढेर से भी नहीं करे के मैं फीमिये और कॉम्पोस्ट सकब सा ज़्यादा से भी करे बायोडाइवर्सिटी कैसे जीव जंतु कैसे हमने सकब सा प्रोटेजे करे जो हमने के प्लांट एंडेमिक बा जो खाली हमने के देश में रहेला और दूसर जीव जंतु कैसे प्रोटेजे करब सा हमने के जंगल में जन्म खाली एन पूसो नहीं तो दे पूसो जंगल रगल बा तो ऐसे ऐसे ढेर एक्शन बा जो हमने दिया था प्रोटेजे करे के ला नेचर के एनवायरनमेंट के और क्लाइमेट के प्रभाव जमे हमने पर ढेर नहीं पड़े
1: तो सीताराम जी हमने के नया पीढ़ी के जागरूक खाते खातिर कौन ची जस्सी लौफा जालेगी कौन ची बोल बाई कर पर
2: देखा हम तो हमने कैसे बोले जा हमने एनफोर्समेंट में से ज़्यादा तो हमने देखी ला जा कि कितना कौन केस हो उसमें जस्सी लौवियों के हानिकारक बा हमने के जस्टिम लोकेला डैम्पिंग जो होता पर्यावरण में इतने अच्छा बना इसे बोले सा इलेगल डैम्पिंग जो है वो बोले सा इलेगल सारे जो कानून के खिलाफ बा इतने नहीं अच्छा बा तो हम तो जनता के जो पहुँचे जनता बा नई पीढ़ी हो जो बा उन लोग के भी हम बोला कि हाई सबसे दूर रह के जो डैम्पिंग बा ये नहीं करेगी जो पब्लिक बा हमने के इन्फॉर्म ही करेगी पब्लिक के हमने तेरा पुलिस से कुछ देखी पैसा पहुँचे मोहिस में जिस 36 पर्सनल बा काम करेगा मोहिस में तो हमने तो ओमनी प्रेजेंट इरप्शन है सगलो तो हमने के ला पुलिस काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन से तो हमने के बोलती कि पब्लिक के सेकेंड से हमने के जो हॉट नंबर हॉट लाइन के जो नंबर बा उनमें कंप्लेन करे के फेंकाटा जाना डिनोंस करे के ये सब कम हुआ करता और फिर भी जे कोनो डंपिंग साइट हो ढेर कोई एक कूट फेंकी दो कूट फेंक

0: पेटे ढेर मना कचरा हो जाला वहाँ पर। तो हमने के चाहना बोलिए कि इस डैम्पिंग साइट वा कहाँ पर बा, हमने के मिल जाए जानब से कहाँ बा। तो हमने सकब से अपन लेकिप के सर्विलांस में डाले वहाँ पर,
1: एक चीज बोला क्रैक डाउन ऑपरेशन, कहाँ कहाँ पर करीला।
0: तो हमने जहाँ पर सस्पेक्टेड केसेस है वहाँ पर हमने क्रैक डाउन ऑपरेशन करीला सर। हमने लैंड सिविल में भी काम करीला जा, तो हमने लैंड सिविल में डाल लीला जा, जब मैं पब्लिक नहीं जाने की के हाँ वहाँ पर, तो लोग वहाँ लैंड सिविल में डाल के और सब क्रैक डाउन ऑपरेशन हमने करीला जा। सब टाइम में सब कैसे बा इलीगल डंपिंग के ओकर क्रैक डाउन करीला सर, स्मोक ऑपरेशन के बाद ओकर भी क्रैक डाउन करीला सर, प्लास्टिक के जो बा ओकर भी क्रैक डाउन करीला सर। जितना ओफेंस लिए हैं वीमा से हमने क्रैकडाउन,
1: तो व्हीकल्स ब्लैक स्मोक पोल्यूशन क्रैकडाउन कैसे कैसे प्लान कर रहे
0: हैं। देखो ब्लैक स्मोक तो जाने लगकर में कॉमन है, वो तो लासोंटी के नीचे। अब पहला हमने के जो सैटो देखी बा हमने ऑर्गेनाइजर के रास अति कैसे बड़ा ऑपरेशन ऑंचे मोरिस में, तो हमने वो ला पारे है स्मोक मीटर और मॉक कैपेले वो ला लेके सेवी के रास उसे हमने जितना सस्पेक्टेड व्हीकल है दूर से देखी रास जो व्हीकल जो ब्लैक स्मोक एमिट करता, तो ओके हमने आगे टे करके तो चेके के लिए मशीन वहाँ से, तो जब भाई मशीन वहाँ से चेके कर एगो पूसोंटाज है में ब्लैक स्मोक जब वो पैकेट के लिए 50% आम मोटी रही तो एगो ऑफेंस हो जाला। तो जब 50% से जब ज़्यादा रहला तो एगो जुर्माना है 10,000 rupees, तो उसे फेवा के जिसमें ओके दे ला सर। अब जो व्हीकल के 70-75% ब्लैक स्मोक बा जो इमिट कर रहा, तो ऊ के होला मानवा पारी हुए है जिसमिल हुए है, जिसमिल है प्लीज एगो ओकर पॉबिज में एगो प्रोहिबिशन नोटिस है ऊ आफिक्स कर दिला सर। का है पा प्रोहिबिशन नोटिस हुआ, वो प्रोहिबिशन नोटिस हुआ ऊ डाली ला सर, जब मैं वो व्हीकल हुआ ओके जो पोपीटे हुआ बा ओकर डिवॉ बचा के बना के ये पारी करके ओके तब एनएलटीआ में जैसे वैसा एनटीआ वहाँ जाके पूछिए करेंगे, तब एनटीआ के ऑफिशियल होकर चेके करें सर, जब ठीक रही तब वो पीटवा के इजाज़त दिया सर कि व्हीकल हुआ से कैंसर उड़े करे, नहीं तो ऐसे कैसे बोलवा कि ओके धुआने रही उड़े करेंगे। और काटो जूम में चाहना हो कि व्हीकल हुआ ले जाके रिपाई करके एनटीआ ले जाएंगे।
1: अच्छा मान लो एक व्यक्ति के घर के पोल्यूशन सुनो के कम्प्लीट आलबा, जब बोला था कि ओकर वाजें जोर से ला म्यूजिक चला हुआ था, तो पुलिस जिला एनवायरमेंट के एक्शन कौन सी है में।
0: हाँ तो हमने के जब ऐसा कॉम्प्लेट मिला तो हमने के लिए कि टू स्वीट स्वा हमने के एगो सेटन डेटो में चल जाए से देखे जाए से देखी ला सर, तो हमने हर सिचुएशन के असेसमेंट कर ला सर इसकी ला म्यूजिक हुआ फू बा कि नहीं बा। हमने के लापारे हमने जो नौ डेसिबल बा उसे नहीं काम किया जा, हमने के लापारी डेसिबल हमने के कान हमने के कान से देखी ला सा कि वो वैन सेकमेट से इसकी टापाज हुआ उतना फो बाकी नहीं बा।
1: अच्छा।
0: ये ढेर फोर रहे जे उफिया मेजिया जब आप उसे ला सकते हो एटोसिटी हुआ जो है ना टामिसिक हुआ के वो मोटे हो जा, तो जब जब से वहाँ पर टलामिसिक हुआ ढेर फोर रहे तो हमने कॉन्ट्रामोशन ले ला सर, हमने कॉन्ट्रामोशन ला एगो न्यूजेंस है ना हमने के लालवा में गला कि मेकिंग नॉइज कोजिंग न्यूजेंस, हमने हाई लालवा में ओके कॉन्ट्रामोशन देप सर फिक्स पेनाल्टी देप सर ओके 10,000 rupees है ओकर ना मान। ये जिस खाली घर से नहीं है ये प्रॉब्लम अभी कैसे देखबा बिजनेस लोग बा जो नवयुक्त लोग बा वो लोग अपन लुट में और देखबा तो म्यूजिक डाल रहे सर कानो बास देखबा अपन बॉक्स खोल के देखबा तो लापारी भरल बा ओकर में, अब डाल के वो प्लास में डाल के कस के बजे सर नहीं तो साइकिल लॉन्डवा में वो आदमी लोग के फांसी गए सर एगो न्यूजेंस लिखन, तो हई लोग पे भी हमने हई फिक्स पेनाल्टी दे ला
2: हई मोटरसाइकिल वो पर
0: एगो एगो बड़ा प्रॉब्लम है। अभी के जेनेस लोग बा पा गए वो लोग देखबा तो ओकर मफला है एगो मफला है ओकर लिसाकमा में वो निकाल लेवल जा वो निकाल दियन सर, तो वो बहुत बड़ा सौ दी अब वो लोग भी फांसी के गला, तो ओकर भी हमने क्रैक डाउन ऑपरेशन के ला जा, तो क्रैक डाउन ऑपरेशन के ला सर तो ओकर भी 10,000 rupees ओकर फिक्स पेनाल्टी है। तो ऐसे मोरिस में ऑंचे मोरिस में जन बड़ा हमने है सब ओपे आशंकन कही ला जा, आज पुलिस भी हमने के एडे कहला लोकल पुलिस
2: रेगुलर पुलिस फोर्स
0: वो लोग भी एडे कहला सर, तो मिल के है सब ओपे आशंकन कहला सर, तो ढेर कॉम्प्रोमोशन लेगा।
1: और एक व्यक्ति इलीगल डंपिंग के ऑफेंस कर लगता एक जुर्माना कितना बा।
0: इलीगल डंपिंग

0: ई ढेर ढेर निपान है एगो व्यक्ति जब ढेर थोड़ा ज्यादा रही तो 25,000 है जब एक एक वयास एक किसे बोल रहा एक वयास कामियों से एक कामियों साथे पिक डिलन तो ओकर जुर्माना वेंसेंट मिला अब थोड़ा जे कमती रही एगो थोड़ा ज्यादा कमती रही तो सैंक मिल रही और डेनियन जो है टॉ मिला कैसे कोई आदमी से फीमे करके उसी आगे में उसी आगे पे कर रहा सिपाही कुछ बूटे प्लास्टिक नीचे फेंक दिला वो टॉ मिल रुपया
1: और एक बात बोलती जो तपास है दो को लाल बाबा तपास के एगो जो पुलिस दे लॉन्विरोनमेंट सर्वी करे लंसा मान ला जब सुने लंसा तपास वो एगो न्यूजेंस करता ढेर कस के बाद तो कॉन्ट्रावेंशन लेवे लंसा और देखिए लापारी सर्वी करे ला कैसे मिनिस्टर ला सांते के ऑफिशियल लोग जब वो लोगों के कॉम्प्लेंट मिले लाता वो लोग आके एगो लापारी से मिजीरे करे लंसा अब जब तबिया डेसिबल के बाद बोला जब उतना होकर लिमिट है डिपासे हो तो वो लोगों से की कॉन्ट्रावेंशन दे
2: तो मिनिस्टर एनवायरनमेंट देने से कौन कौन गतिविधि प्रबंध कर गल बा जबकि कल हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनावा था
1: पहला बार सच्चे के काल सैंक्शन है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर सा और जैसे सब इंस्पेक्टर सीताराम बोलन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने के रोज के है और जनता भी रोज के कोनो न कोनो कदम उठावेला एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने के और क्लाइमेट फ्रेंडली बने के ये खाली ले सैंक्शन खातिर नहीं है सलमा हाई दिनों सेलिब्रेट कर ला सा जब मैं ज़्यादा सेंसिबिलाइज़े कॉन्शियंटाइज़े कर सा और सेतु जैन लोग के जो छोटा छोटा लड़का लोग बा छोटा हुए से चाहिए सिखाए के जब मैं लोग बोन आबिचित बो मानिए रही एनवायरनमेंट कॉन्शियस रही अंश क्लाइमेट कॉन्शियस रही अंश और एक्शन ली अंश कैसे बोला था काल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से मैं काल ही से मान ले पर्यावरण मंत्रालय एगो लॉन्चमेंट कर ले बा एगो कोस्टल वॉकिंग ट्रैक जो ले बुशों पब्लिक बीच से हाउ पास जियोमेट्रिक वर्जिनिया लगे और एगो लॉन्ड्रॉ है पोन नेचुरल और ले सुफ्लेर की रीजन में एगो हेल्थ ट्रैक निखर बने ले बा और हाउ जा पर हाउ रीजन में ढेर प्लांट एंडेमिक बा एक इम्पोर्टेंस का है पहला है और कोस्टल रीजन जो है मान ला सबके ज्वाइन करके एगो हेल्थ ट्रैक बनाए के बस फिर हाउ लॉन्ड्रोवा में ढेर प्लांट एंडेमिक बा जो उनके चाहिए प्रोटेज करके और मैम तो जब आदमी लोग चलियन सा एग्जरसाइज करियन सा तो उन लोग के स्वास्थ्य ठीक रही बस फिर हमने के चाहिए ध्यान में रखे कि क्लाइमेट चेंज हमने के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव करेला और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जिस ला सौते पर नहीं मेंटल हेल्थ वो अफेक्ट करेला क्लाइमेट चेंज कैसे जब हीट स्ट्रेस होला जब ढेर तापमान बढ़ जा रहा तो आदमी लोग अफेक्ट होला और जब क्लाइमेट चेंज से जब ढेर डिजास्टर्स होला कैसे इनोडाशियों फ्लैश फ्लड सब होला कोई हला सेशरेसो होला तो कोई अपन सब चीज गंवा दे बोलन से कैसे घर सब डूब जाला पानी से सब पेज होला तो मेंटल स्ट्रेस होला तो वो ला सौते मेंटल वो अफेक्ट होला तो ऐसे पहला एगो हेल्थ ट्रैक लॉन्से कर लक मिनिस्टर दे एनवायरनमेंट काल ही दूसरा मा एगो कंपनी दे सेंसिबिलाइजेशन कर था ऐसा जैसे हमने के भाई सब इंस्पेक्टर सीताराम बोलक वो लोग खाली एनफोर्समेंट नहीं करे लंसा खाली एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट से काम नहीं चली चाहे दोनों संगे करे के वो लोगों सेंसिबिलाइजेशन करे लंसा बहुत बस कि जब जनता लोग जनियन सा कौन सी अच्छा बात नहीं अच्छा बात तब वो लोग को कदम लियन सा जब मैं मारू काम नहीं करियन सा निमन काम करियन सा और नॉर्मल एनफोर्समेंट चाहे करे के जो लोग कॉम्पो नहीं हुई तब पर लालवा से भी करे के हमने के दूसर सोल्यूशन नहीं बा चाहे से भी करे जहाँ से भी करे के चाहे से भी करे के
2: जैसे बोला जाए एनवायरनमेंट की समस्या खाली मिनिस्टर नहीं सकी सुलझावी
1: और पर्यावरण मंत्रालय में एगो डिवीजन बा इंफॉर्मेशन एजुकेशन डिवीजन वो लोग बहुत सेंसिबिलाइजेशन करते हैं सा पूरा साल सेंसिबिलाइजेशन कर रहे हैं कैसे जैन लड़का लोग के यूथ बोली रहा सा जेनिस लोग के वुमेन एसोसिएशन में अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे खातिन सभी सोशल वेलफेयर सेंटर्स में अभी 7 गो सोशल वेलफेयर सेंटर्स में सेंसिबिलाइजेशन कर रहे थे सर एनवायरनमेंट पर क्लाइमेट चेंज पर और इम्पोर्टेंट है पब्लिक जाने कि काहे चाहिए प्रोटेज करके एनवायरनमेंट

0: चाहे चाहे सगरो साफ सुथर रखे के और ईजैन जो बलिला से ईजैन वो बहुत ऐप होता है बसकीर जब ईजैन नहीं रही तब भी देख प्रॉब्लम होला कैसे जहाँ पानी जमा होला सकी मलोया डेंग चिकुगुनिया हो जाए
1: बीमारी पैदा हो जाए
0: और जुनते हैं वाक बा सब कोई बोले ला हमनी के घर के आगे सब चीज साफ सुथरे रखब सा घर भारब सा आंगन भारब सा मेगायो जो रही बागा सा हो धो देब सा सलमा सब कचरा जन बा सब सालते जाके आकुते तेरा वाक में डिपो तो समझ के फेंक देवत वन सा और एक जैसे बोला इलीगल डंपिंग है करना मान ढेर फो है नहीं चाहिए करे के अब जब हौजा पर ही आकुते हुए में 10 मिनट 20 मीटर पर फेंकल बा तो हौजा मुसिक हुई तो मुसिक वहाँ तोहरे लगे नहीं आए हौजा पर ही चूहा हुई था लेप्टस पे रोज के प्रॉब्लम भाइयो हो जाए मलादी हो जाए तो वही से सेंसिबिलाइजेशन बहुत अहम होता है एनवायरनमेंट पर और सांसमो क्लिमाटिक पर और जन बोले ऐसा एनवायरनमेंट स्टीवर्डशिप मान जब मैं सब कोई सोल्डा दे लोविरोनमो बने से जब लोविरोनमो के प्रोटेजे करे के बहुत एक्शन लियन से तो ऐसे बहुत सेंसिबिलाइजेशन होता
1: तो जनता के कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है
2: सीताराम
1: जी तो आप जनता से कौन मांग कर
2: हम जनता से मांग कर कि ऐसा ऐसा पहला तो बोल कि पर्यावरण हमने के जो धरती माँ के हमने के चला प्रोटेजे करे के पोटेजे करे के चाहें हमने के प्रिजर्वे करे के चाहें और जो आदमी नहीं समझी हम तो लोग से मांग कर कि जो आदमी एक है करा था जो अच्छा नहीं करा था दिनों से करे के लापुरी से बोला कि कौन प्रॉब्लम बा फोटे हमने से बोल बा तब हमने आप से एक्शन ले हमने तो भर सक खोजिला सक कि मोटोमोशन नहीं लेके सेंसिटाइजेशन जस्ती ज़्यादा करेंगे तो जो आदमी नहीं कैसे भाई बस करावा बोला जन आदमी नहीं समझी क्या करब बड़ी एक्शन लेके ना
1: ये जो क्रैकडाउन ऑपरेशन एक महीना में कितना बार हो गया
2: तो हमने के क्रैकडाउन ऑपरेशन तो उतर भर सक बोले सप्ताह में 2-3 बार होला ज़्यादातर नॉइज पोल्यूशन के जन बा प्लास्टिक के बा स्मोक के बा है डैम्पिंग के बा है तो चारों के हर सप्ताह में यही नॉन स्टॉप है ये होते रहला
1: और मोरिस में कितना जगह में वेस्ट रमासल जाला जो ये हमने के सब ट्रांसफर स्टेशन बोली ला जा
2: हाँ देखा पहला शुरू करी सा कि हमने के जो गवर्नमेंट बा फैसिलिटीज दे वेला डोमेस्टिक वेस्ट के डोमेस्टिक वेस्ट आवेलन सा सप्ताह में 1-2 बार आवेलन सा कामियों लेके जाला अब जो दूसर वेस्ट बा उतर चना ट्रांसफर स्टेशन में है सब जितना वेस्ट बा सब ट्रांसफर स्टेशन में जाला तो कैसे बोला रहा थोड़ा बहुत जो वेस्ट बा जो नहीं सक बिदा करे सब मौसिको जला जनेरा में सिर्फ ट्रांसफर स्टेशन सगरू बा लेनो में बाटे उडो में बाटे उडो ट्रांसफर स्टेशन ईस्ट में फ्लैप के डिविजन में बाटे लालुगा में और बोलवी के डिविजन में अठी में बा कैसे बोल रहा है सेंट्रल में लेवा ब्रासरी और वेस्टर्न में सोमिया और हम एगो ज्यादा चीज बोले खोते कि कोई भी ये तुम्हारा लगे 500 किलो से कमती हुए से रही 500 किलो से तू सब अपन ने ट्रांसपोर्ट में हम ट्रांसफर सिस्टम में जाके सब छोड़े
1: जनता में
2: अपने ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा लगे वो काट पाओ काट पा तू एगो अपने ट्रांसपोर्ट में हम बस 500 काजे सब ये किलो रही जब ज्यादा रही तो थोड़ा पड़ी कामियों देखे के जो उनके वेस्ट परमिट रही
1: अच्छा
2: तो वेस्ट परमिट में तब जाके वहाँ छोड़े सब पर नहीं तो ज्यादा रही तो वो लोग पेमी देखी
1: एरिया
2: देखा तो ऐसा फैसिलिटी हुआ बा फिर कोई अभी हाल ही में पास होते देखते एगो आदमी कोई ना कोई एगो बिस्तर फेंक दे बा मतला सीमा के बोर में तो उतर नहीं छपा ना अब कोई देखा तो रेफ्रिजरेटर कोई टूटल बा वो फेंक दे बा हम तो मांग करती कि टूटा सकबा रेफ्रिजरेटर वाला लेके सकबा जाके छोड़ दे अथी में ट्रांसफर स्टेशन में तो लगे ट्रांसपोर्ट बा ट्रांसपोर्ट के फेंक के छोड़ हम तो जनता से मांग कर अब कि ऐसा ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने के तो अभी देखा तो सेफ सिटी सकबा हमें हमें तो चेक कर सेफ सिटी में जे ऐसा नाकिजे मिल जाए तो टूका करबा ऐसा नाकिजे के

0: ton leke.
1: Chahi leke.
2: Paske hay la responsabilité, hay John Navi kwa kwa kwa la responsabilité, jitounen pa. Oui, bon, la ki chan la responsable leke. Ki hay sa bami ke pari avaren, John ba, yo vous a fait beaucoup important. Ki chan la bhar sak, aysan ka leke ki hamne ke pari avaren saaf sout rehi. Ar, kese wo la, kese kub sa niman sans le, kese bhai bolak, acha leke, hamar manga isi ba publik se.
0: और भाई बसकलावा जी यदि आपको जनता के केवल तीन सरल सुझाव देवे के बा
1: जब पानी बरसेला घर के लाहो के पानी हाउस सिस्टम चियो पर लिखलेला त एगो धोम डाल के पन्यारा मास के सेकंड साली धोई लोटो धोई आगो से करे एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट फ्रेंडली बन गई ना देश में अभी बहुत अभियान होता है एकदम सेंसिबिलाइजेशन कंपनी होता है हवती इलेक्ट्रिसिटी पर बस के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बहुत हैवी फ्यूल ऑयल से भी होला जो ग्रीन हाउस गैस एमिट करेला तो कूरों गैस प्याज नहीं करके कैसे कूरों गैस प्याज नहीं कर सा एनर्जी एफिशियंट बल्ब से भी करके लॉम्पुल इकोनॉमिक जब फ्रिजिदे और कोनो चीज की नत है सा तो चाहे जो कंसोमेशन इलेक्ट्रिसिटी कम है जस्ती एफिशिएंट है कैसे एयर कंडीशनर जो जस्ती एफिशिएंट है फ्रिजिदे जो जस्ती एफिशिएंट है उसका ग्रेड है आ बी सी डी जिसका ए ले रहे ला ए एफ ले चाहे आ ले के जो कुल एवेयर है तो वो डिजाइन लेबल्ड है वो कमती इलेक्ट्रिसिटी से भी करेला और त्रीजियम जो मोलेटरी सा है जो वेस्ट है कचरा सब कोई के चाहिए भर सक जितना सकियन सा जो बोलेला सा ऑर्गेनिक वेस्ट माना जितना चीज सकी सारे कैसे ला क्विजिन में ला पो पोम देते बा और कागोत के पत्ता बा और जितना चीज बा सब सकियन सा बनान के ला पो सब रमास के कंपोस्ट करे के और कंपोस्टांस करियन सा ता सब कोई कंपोस्टांस करी जिकल आगे फांसीते बा करियन सा तो कौनसी वेस्ट जो बा आधा से जिमिनी हो जाए और आधा वेस्ट खाली जाए मॉसिकोज लैंडफिल साइट बस कि मॉसिकोज वो जब जा तब या बोली सा चार पांच गो ट्रांसफर स्टेशन बा हौजा से सब वेस्ट जला हौजा से जला मॉसिकोज तो जब मॉसिकोज जला तो हौजा पर ही जब अथी सौ डॉफिस मो टेक्निक जो है तो हौजा पर ही जब ओकरा थ्रेते होला तो एगो गैस एमिट करेला मीथेन ओहो एगो ग्रीन हाउस गैस है तो ऐसे जब हमने रिड्यूस करब सा जिमिनी करब सा कौन चीते देश जो प्रोजिया करते हैं सा तो हमने एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट फ्रेंडली बन जाब सा और धरती माँ के सकब सा जस्ती प्रोटेज करे और बोली ला सा प्रोटेज माँ मनाते हैं माँ मनाते हैं प्रोटेज नो
0: प्रकृति के हमने चाहे ना हमने साफ सुथरा रखे के तब भी तो अंत में कौन दो शब्द बोल बा
2: तो हम भी
0: काय की काल जैसे पर्यावरण दिवस वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस कौन ची बोल बा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ढेर काम करता बहुत सारी गतिविधि एक्टिविटी होता
2: तो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का दिन हम जनता से मांग करते हैं कि देखा अभी तो सब कोई गांसी का डाटा सक रो हम बोलते हैं जुआ का दिन सबको एक गो गांछी प्लांट के देश में एगो गांछी के हमने के बहुत इम्पोर्टेंस प्लांट ट्रीज देश हम जाफे बोलती कि हमने कोटे एनफोर्समेंट में हम बोलती कि जितना कोई भाई जाफे इलीगल करता है सब आखिटे करेगी है डैम्पिंग जोन कर बन जा जो उनके व्हीकल में स्मोक करता है सब के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गए सेकेंड के बुलबा की जनता के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जे सब कोई अपन अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो हमने के जो पर्यावरण बा हमने हमने हमने के चाहना एगो कैसे तुम एगो पाल ली के इलाफो तैसा कब से हमने पर्यावरण के खातिर कुछ करे हम जनता से मनाओ थे कि सबको एक मिल के हमने के पर्यावरण के बचाई सर
0: और आप अंत में दो शब्द
1: जैसे सब इंस्पेक्टर प्रधान हमने के सब कोई चाहिए मिलजुल के जो पब्लिक है जनता है कोनो न कोनो एक्शन ले के पर्यावरण के सुरक्षा करे के और एगो दैनीय जाफे तब या भूला कर ली बोले के हई पर्यावरण के जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बा आर एगो एक्टिविटी होता सोधना वेलनेस पार्क में हौजा पर एगो लैंडस्केपिंग फैसिलिटीज बनावल बा जहाँ पर पब्लिक लोग सखी

0: et profiter carré,
1: अच्छा.
0: jogging carré, l'environnement que ça placard que plante ou bas, ta visiter carienza. Ta gouvernement d'air facilité d'elba, que c'est health track, différents facilités d'elba, la nature, mais que c'est les pétrins, bah, sacro. Ta l'école que tu as juste sensibilisé carré que l'environnement par climate change par jamais chota ouais, c'est barali bon habitude. Bon manière or niman citizen banyan sa
1: joint jaise ki sab institution mein sense
0: ok et promouvoir quelque chose de responsabilisation quelque khali laika lo kene sab ko ki
1: oui l'école se hi shuruaat hui
0: la parce que jitna action gouvernement kari je public ke sahyog nahi rahi ta dher dur nahi sak
1: ta hamare do sammanit atithiyon ne paryavaran ki suraksha ke mahatv सरकार की पहलों तथा नागरिकों की जिम्मेदारियों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है. तो विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. मतलब हम सब मिलकर के ये सब हमारी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है. छोटे छोटे जो कदम है, जैसे कचरे का सही प्रबंधक, प्लास्टिक का कम उपयोग, पेड़ लगाना, जैसे अभी हमारे जो मेहमान उन लोगों ने बताया पेड़ लगाना, और इससे बड़ा बदलाव ला सकते हैं. तो ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है. आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, श्री बसकलावा जी जो डिविजनल ऑफिसर है आप एनवायरमेंट से, और सब इंस्पेक्टर श्री सीताराम जी जो पुलिस एनवायरमेंट से, और हमारे साथ अंजू उरुसा और निजाम को धन्यवाद देते हुए अगले प्रोग्राम तक हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार और आदाब.
2: नमस्कार. आज की चर्चा RM3 रेडियो.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: अपने घड़ी मिलाते चलिए, शाम की ठीक 4 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको आस्था।
4: नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बैंक की अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस पूरे महाद्वीप में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिक मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने में सफल रहा है, हालांकि औद्योगिक

0: औद्योगिक क्षेत्र की आगे की वृद्धि के लिए कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। सदक के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारी का एक संघ, उसने अपने पेंशन से कम पेंशन योजना में बदलाव की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि इस मुद्दे से करीब 310 कर्मचारी प्रभावित। मॉरिशस लेबर कांग्रेस से जुड़े इस संघ ने आज प्रेस वार्ता के दौरान अपनी मांगे सामने रखी। साथ ही उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन में शिकायत दर्ज कराने का भी फैसला किया। जब कोई कंपनी रिसीवरशिप के तहत आती है तो कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। ये कहना है एफटीयू यानी फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष आत्मा शांतो का। आज पोर्टली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने रिसीवरशिप के तहत चल रही चार कंपनियों की स्थिति पर चिंता जताई। सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच और तटीय इलाकों में प्रस्तावित होटल परियोजनाओं का मुद्दा आज फोरम सिटोयन लिब्रे की प्रेस वार्ता में प्रमुखता से उठाया गया। बेल विलेज में आयोजित इस प्रेस बैठक के दौरान रोज आयान ने होटल परियोजनाओं को दी गई जो मंजूरियां हैं और उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल खड़े किए। विदेश स्तर पर अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें ईरान के खिलाफ युद्ध में अमरीकी सैन्य भागीदारी समाप्त करने की मांग की गई है। हालांकि इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रस्ताव को कुछ रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन मिला है जबकि इस सप्ताह सेनेट में भी इस पर चर्चा और मतदान होने की संभावना है। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि युद्ध जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में कांग्रेस की भूमिका को बनाए रखना आवश्यक है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

नमस्ते, हेलो सभी को। मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप कर सुन रहे हैं RM3। ये आप ही का प्रोग्राम है। यहाँ पर रेडियो कहते हैं ना, जब बोलता है

0: भैया हम ना तो आपको यही कहेंगे कि बिल्कुल भीगिए मत, अपने घर पे आराम से पहुंचिए। कई लोग इस समय अपने घर से कहते हैं ना कि कहीं बाहर जा रहे होते हैं और कई प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई ऑफिस से घर वापस जाएं और वहां पर जाके थोड़ा सा रेस्ट करें, बट फिर भी कई बार होता है कि नहीं नहीं चलो रास्ते में से ही कुछ प्लान और बन जाता है। पर ऐसे कोई प्लानिंग मत कीजिएगा, घर आइए आराम से, क्योंकि ये टाइम है आपके सिर्फ गाने सुनने का और थोड़ी सी ठंडी ठंडी कहते हैं ना कि या तो कोल्ड कॉफ़ी हो जाए या गर्म गर्म चाय थोड़े से पकौड़ों के साथ या कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फैमिली के साथ में इंजॉय की जाती हैं। तो बस थोड़े से घर वापस आइए और आराम से आइए, ये टाइम आप सबका है।
1: RM3 Radio.

4:25 हो चुके हैं और 4 जून का प्यारा सा दिन। और कहते हैं ना, थर्सडे जब आता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगता है, क्योंकि पता होता है कि एक दिन रह गया फ्राइडे का और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिलेगा और साथ में अगर आ जाए बारिश तो और बात ही क्या। तो ये भी बहुत इंजॉय करने वाला मोमेंट होता है जब हमारे पास शाम होती है, साथ में बारिश होती है और साथ में थर्सडे का दिन आता है, तो बस

जाएगी जी आपका ये गाना। और अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार और उदित नारायण की आवाज़ में दीवाना दिल। तो भाई ये गाने बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं 90s के, यहाँ पर जो यादें होती है बहुत ही अजीब गरीब सी होती है, समझ नहीं आता हम आगे चले या पीछे के याद करें। तो बस मुझे लगता है कि जहाँ पर अभी हैं उसी को याद करते हैं और इन्जॉय करते हैं आपका ये नेक्स्ट ट्रैक। RM3 Radio.

0: दोस्तों 4:31 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं दिल से मिले दिल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूँ पूनम इस समय। और ये मुझे लगता है ये जो गाने होते हैं ना ये बहुत ही दिल के करीब इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा टाइम था जब ये गाने बजते थे और हमको अच्छा लगता था। और लता मंगेशकर की आवाज़ में और जॉली मुखर्जी की आवाज़ में जब ये गाने चले तो कहते हैं कि पूरा इंडिया क्या हो और पूरा वर्ल्ड क्या हो सब ने ही नाचना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये गाने तो बहुत ही मस्त हैं तो ये गानों के साथ इन्जॉय कीजिए। और साथ में कहती हूँ रिम झिम थोड़ी सी अगर बारिश की भी बात हो जाए तो क्यों गलत थोड़े ना होगा। तो चलिए एक 1942 लव स्टोरी से एक प्यारा सा गाना लेते हैं आज के खूबसूरत माहौल के लिए।
1: RM3 Radio.

0: अगर आज कोई आपके चेहरे की मुस्कान की वजह है तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर किसी को ऐसे एहसास नहीं मिलते। तो इंजॉय कीजिए आपका नेक्स्ट ट्रैक।
1: RM3 Radio.

दोस्तों बाहर बारिश की फुहारें और साथ 90s की एक खूबसूरत गीती सी के साथ आज की मुलाकात यहीं तक। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे आरम 3 पर। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने दिल के करीब लोगों का ख्याल रखिए।

0: नमो नमः सर्वेभ्यः।
1: जानातु संस्कृतम्, संस्कृत को जानिए। साप्ताहिक कार्यक्रम में आज पुनः डॉक्टर कीर्ति रामजतन और सुश्री सुरभि मोतिया आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हैं। इस कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए श्रीमान संजू ठकुरी को हमारा धन्यवाद। तो आइए आज का सत्र प्रार्थना से प्रारंभ करें।
2: ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु

0: मस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए पिछले सत्र में जो हमने समय देखना सीखा उसके एक अंश का एक बार अभ्यास कर लेते हैं। एकवादनम एक बजे, सपाद एकवादनम सवा एक बजे।
0: एकवादनम सपाद एकवादनम।
1: इसी प्रकार द्विवादनम सपाद द्विवादनम।
0: द्विवादनम सपाद द्विवादनम।
1: त्रिवादनम सपाद त्रिवादनम।
0: त्रिवादनम सपाद त्रिवादनम।
1: चतुर्वादनम सपाद चतुर्वादनम।
0: चतुर्वादनम सपाद चतुर्वादनम।
1: पंचवादनम सपाद पंचवादनम।
0: पंचवादनम सपाद पंचवादनम।
1: षड्वादनम सपाद षड्वादनम।
0: षड्वादनम सपाद षड्वादनम।
1: सप्तवादनम सपाद सप्तवादनम।
0: सप्तवादनम सपाद सप्तवादनम।
1: अष्टवादनम सपाद अष्टवादनम।
0: अष्टवादनम सपाद अष्टवादनम।
1: नववादनम

0: सपाद नववादनम्।
1: नववादनम् सपाद नववादनम्।
0: दशवादनम् सपाद दशवादनम्।
1: दशवादनम् सपाद दशवादनम्।
0: एकादशवादनम् सपाद एकादशवादनम्।
1: एकादशवादनम् सपाद एकादशवादनम्।
0: द्वादशवादनम् सपाद द्वादशवादनम्।
1: द्वादशवादनम् सपाद द्वादशवादनम्।
0: आइए अब हम वाक्यों में इनका प्रयोग देखें। बालकः एकवादने पुस्तकं पठति।
1: बालकः एकवादने पुस्तकं पठति।
0: युवकः सपाद एकवादने जलं पिबति।
1: युवकः सपाद एकवादने जलं पिबति।
0: जनकः द्विवादने आपणं गच्छति।
1: जनकः द्विवादने आपणं गच्छति।
0: पुत्रः सपाद द्विवादने मोदकं खादति।
1: पुत्रः सपाद द्विवादने मोदकं खादति।
0: अध्यापकः त्रिवादने गीतं गायति।
1: अध्यापकः त्रिवादने गीतं गायति।
0: छात्रः सपाद त्रिवादने श्लोकं पठति।
1: छात्रः सपाद त्रिवादने श्लोकं पठति।
0: बालिका चतुर्वादने दुग्धं पिबति।
1: बालिका चतुर्वादने दुग्धं पिबति।
0: अम्बा सपाद चतुर्वादने मंदिरं गच्छति।
1: अम्बा सपाद चतुर्वादने मंदिरं गच्छति।
0: युवकः पञ्चवादने ईश्वरं नमति।
1: युवकः पञ्चवादने ईश्वरं नमति।
0: गायिका सपाद पञ्चवादने गीतं गायति।
1: गायिका सपाद पञ्चवादने गीतं गायति।
0: अध्यापिका षड्वादने पत्रं लिखति।
1: अध्यापिका षड्वादने पत्रं लिखति।
0: शिष्या सपाद षड्वादने देवं नमति।
1: शिष्या सपाद षड्वादने देवं नमति।
0: बालिका सप्तवादने गृहं आगच्छति।
1: बालिका सप्तवादने गृहं आगच्छति।
0: छात्रा सपाद सप्तवादने पाठं पठति।
1: छात्रा सपाद सप्तवादने पाठं पठति।
0: शिक्षकः अष्टवादने फलं खादति।
1: शिक्षकः अष्टवादने फलं खादति।
0: शिष्यः सपाद अष्टवादने विद्यालयं गच्छति।
1: शिष्यः सपाद अष्टवादने विद्यालयं गच्छति।
0: किं बालकः नववादने विद्यालयं गच्छति।
1: किं बालकः नववादने विद्यालयं गच्छति।
0: नैव बालकः सपाद नववादने विद्यालयं गच्छति।
1: नैव बालकः सपाद नववादने विद्यालयं गच्छति।
0: जनकः दशवादने कुत्र गच्छति।
1: जनकः दशवादने कुत्र गच्छति।
0: बालिका सपाद दशवादने खेलति।
1: बालिका सपाद दशवादने खेलति।
0: किम् अध्यापकः एकादशवादने आगच्छति।
1: किम् अध्यापकः एकादशवादने आगच्छति।
0: नैव अध्यापकः सपाद एकादशवादने आगच्छति।
1: नैव

0: अध्यापकः सपाद एकादशवादने आगच्छति।
1: अनुजः द्वादशवादने धावति।
0: अनुजः द्वादशवादने धावति।
1: अग्रजः सपाद द्वादशवादने धावति।
0: अग्रजः सपाद द्वादशवादने धावति।

0: श्रोताओं, आइए अब हम भविष्यत काल में कुछ वाक्यों का अभ्यास करें। श्वः सः अष्टवादने विद्यालयं गमिष्यति।
1: श्वः सः अष्टवादने विद्यालयं गमिष्यति। वह कल 8 बजे विद्यालय जाएगा।
0: सा कदा संस्कृत पुस्तकं पठिष्यति।
1: सा कदा संस्कृत पुस्तकं पठिष्यति। कदा का अर्थ है कब। वह कब संस्कृत की पुस्तक पढ़ेगी।
0: त्वं कदा फलं खादिष्यसि।
1: त्वं कदा फलं खादिष्यसि। तुम कब फल खाओगे।
0: अहम् गुरुवासरे मंदिरं गमिष्यामि।
1: अहम् गुरुवासरे मंदिरं गमिष्यामि। मैं गुरुवार को मंदिर जाऊंगा।
0: किं भवान् पत्रं लेखिष्यति।
1: किं भवान् पत्रं लेखिष्यति। क्या आप पत्र लिखेंगे।
0: भवती सत्यं वदिष्यति।
1: भवती सत्यं वदिष्यति। आप सत्य कहेंगी।
0: सः सायंकाले 5 वादने खेलिष्यति।
1: सः सायंकाले 5 वादने खेलिष्यति। वह शाम को 5 बजे खेलेगा।
0: सा कथं धाविष्यति।
1: सा कथं धाविष्यति। वह कैसे दौड़ेगी।
0: त्वं किं खादिष्यसि।
1: त्वं किं खादिष्यसि। तुम क्या खाओगे।
0: अहम् सपाद 4 वादने एकं श्लोकं वदिष्यामि।
1: अहम् सपाद 4 वादने एकं श्लोकं वदिष्यामि। मैं 4:15 बजे एक श्लोक कहूंगा।
0: भवान कदा गृहं आगमिष्यति।
1: भवान कदा गृहं आगमिष्यति। आप कब घर आएंगे।
0: किं भवती प्रातःकाले देवालयं गमिष्यति।
1: किं भवती प्रातःकाले देवालयं गमिष्यति। क्या आप सवेरे देवालय जाएंगी।
0: श्रोताओं, अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 4, 5 और 6 इन 3 श्लोकों का पाठ करेंगे। उसके बाद अर्थ इकट्ठा बताएंगे। आप हमें ध्यान से सुने और हमारे साथ दोहराएं। श्लोक 4।

0: समायुधि
1: भीमार्जन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।
0: अब एक एक पंक्ति को देखते हैं।

0: युधि
1: युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः
0: युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।
1: इस बार पूरे श्लोक का पाठ करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।
0: अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च

0: द्रुपदश्च महारथः।
1: श्लोक 5। दृष्टकेतुश्चेकितानः।
0: दृष्टकेतुश्चेकितानः।
1: काशीराजश्च वीर्यवान्।
0: काशीराजश्च वीर्यवान्।
1: पुरुजित् कुन्ति भोजश्च।
0: पुरुजित् कुन्ति भोजश्च।
1: शैव्यश्च नरपुङ्गवः।
0: शैव्यश्च नरपुङ्गवः।
1: अब प्रत्येक पंक्ति का अभ्यास करते हैं। दृष्ट

0: पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः
1: पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः।
0: इस बार पूरे श्लोक का पाठ करते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः।
1: दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः।
0: छठा श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत
1: उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
0: सौभद्रो द्रौपदेयाश्च
1: सर्व एव महारथाः।
0: अब इस श्लोक की भी प्रत्येक पंक्ति का पाठ करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
1: युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
0: सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः
1: सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
0: इस बार पूरे श्लोक का वाचन करें। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
1: युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
0: अब आप इन तीनों श्लोकों का अर्थ सुन लीजिए। यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु द्रोण को पांडवों की सेना के महावीरों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं। सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी यानी युयुधान और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। श्रोताओं, आज के सत्र के इस अंतिम चरण में आइए हम आपको एक श्लोक

0: लोग सुनाते हैं जिसमें परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है। श्लोक इस प्रकार है, उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि,
1: उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि,
0: न मनोरथैः,
1: न मनोरथैः,
0: न हि सुप्तस्य सिंहस्य,
1: न हि सुप्तस्य सिंहस्य,
0: प्रविशन्ति मुखे मृगाः,
1: प्रविशन्ति मुखे मृगाः,
0: उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः,
1: उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः,
0: न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः,
1: न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः,
0: उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः,
1: उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, परिश्रम से ही कार्यों में सफलता मिलती है, केवल इच्छा करने से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करते।
0: तात्पर्य यह कि जिस प्रकार जंगल का राजा होने पर भी शेर के मुख में उसका शिकार यानी उसका भोजन मात्र उसकी इच्छा करने पर अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसको भी अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार केवल इच्छा करने से किसी भी व्यक्ति का कार्य पूर्ण नहीं होता, उसको भी सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जो मनुष्य परिश्रम करता है उसको अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होती है, अतएव उसे प्रयत्न करने से कदापि पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। श्रोताओं, आज का हमारा सत्र यहाँ समाप्त होने जा रहा है। हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि हमारा यह कार्यक्रम आप सबको कैसा लग रहा है। आप हमें लिखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, चाहे कोई फीडबैक हो या कोई सुझाव सजेशन, हमें जरूर लिखकर भेजें। लिफाफे पर लिखें जानातु संस्कृतम रेडियो प्रोग्राम MBC मोका और हमको आपका संदेश प्राप्त हो जाएगा। एक और बात, पत्र में अपना परिचय भी देना मत भूलिएगा। आइए अब हम प्रार्थना से इस सत्र को समाप्त करें।
2: ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: इस समय मॉरीशस में शाम के 5:28 हुए हैं।
4: राम रसधारा, रसधारा
3: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। राम रसधारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में 5 बहनें उपस्थित हैं जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माला जी, अंजू जी, कृष्णी जी, सुभाषिनी जी, गायत्री जी, जय सिया राम,
5: जय सिया राम।
3: आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की और श्री हनुमान जी की स्तुति के साथ। जय सिया राम,
5: जय सिया राम,
6: जय सिया

0: राम रसधारा रसधारा
1: जय सिया राम। श्रोताओं, हर रामायण पाठ से पूर्व हम सब मिलकर सुमिरन गाते हैं, सुमिरनी गाते हैं। सुमिरनी में हम भगवान श्री गणेश, कृपा निधान परमपिता परमेश्वर श्री हरि नारायण आदि देव श्री शंकर भोलेनाथ जी को एवं अपने गुरुजनों की वंदना करते हैं। चलिए हम स्टूडियो में उपस्थित बहनों से सुनते हैं सुमिरनी। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: रसधारा रसधारा
1: जय सियाराम। श्रोताओं, संपूर्ण रामचरितमानस के इस भावपूर्ण यात्रा में आज हम उस प्रसंग का भ्रमण करेंगे जहां पर माता पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमावन के राज्य में होता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार आगामी गुरुवार 18 जून को पार्वती जयंती मनाई जाएगी। पार्वती माँ जो प्रकृति का प्रतीक है, पार्वती माँ जो अन्न देवी स्वरूपिणी है, संपूर्ण जीव जंतुओं को धारण करने वाली धैर्यवती भूमि देवी है। उसी माँ पार्वती को के जन्म से लेकर उनका विवाह शिव शंकर भोलेनाथ तक इस यात्रा को पूज्यपाठ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सौम्य रूप से रामचरितमानस के बालकांड के पहले भाग में वर्णित किया है। आज हम आज और आने वाले दो हफ्तों के अंतर्गत हम संपूर्ण रामचरितमानस के इस प्रसंग का रसपान करने वाले हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं दोहा नंबर 65 के गायन के साथ स्टूडियो में उपस्थित बहनों के संग। जय सियाराम
2: जय सियाराम।

0: राम रसधारा रसधारा
1: सदा सुमंगल फल सहित सब दुम्र नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। इससे पहले वाले प्रसंग में माता सती अपनी योगिक शक्ति के बल पर अपने शरीर को भस्म करने से पहले विष्णु भगवान से वरदान मांगती हैं कि जब वो फिर से जन्म लेगी तो उनके अगले जन्म में वे फिर से सदा शिव शंकर भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनेंगी। श्री हरि नारायण से वरदान प्राप्त कर लेने के बाद माता सती आत्मदाह कर लेती हैं। उसके पश्चात वही माता सती पर्वतराज हिमावन और माता मैनावती के राज्य में सुपुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और माता पार्वती का आना राज्य को हर प्रकार से ऐश्वर्य से पुष्ट और युक्त कर जाता है। जय सिया राम।
2: जय सिया राम।

0: राम रसधारा रसधारा
1: सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। जिस युग में हम सब एनवायरनमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, जहां हम सब बायोडायवर्सिटी की संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं, इस युग में ये प्रसंग हम सबको याद दिलाता है कि ये धरती ये गगन सब कुछ हमें धरोहर के रूप में सौंपा गया है, जिससे कि हम इस धरती को उत्तम स्थिति में आने वाली अगली पीढ़ी को सौंप सके। यहाँ पर कोई भी किसी वस्तु का मालिक नहीं है। मुट्ठी बांध आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। चलिए सुनते हैं दूसरी चौपाई।

0: रसधारा।
1: पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होता ही है जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। दुनिया में हर बच्चे का आगमन इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हम पर अभी भी विश्वास रखते हैं। जिमी जनु राम गति के पाए नित्य नूतन मंगल गृहतासु। जब श्री राम भक्ति मन में जागती हैं, उसी समय हर प्रकार की शक्ति, हर प्रकार का ऐश्वर्य हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। सुनते हैं अगली चौपाई। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। हमारे शास्त्रों में श्रोताओ, नारद मुनि जी ने अहम भूमिका निभाई है। हिरण्यकशिपु के महल में वे नारद ही थे जिन्होंने गर्भवती माता कयादु को श्री हरि कथा सुनाकर भक्त प्रहलाद को शिक्षा दी थी। यहाँ पर वो नारद मुनि ही होंगे जो पार्वती माता को उनके जीवन का लक्ष्य बताएंगे। चले हम सुनते हैं अगले चौपाई। जय सियाराम।
2: जय सियाराम।

0: रसधारा।
1: फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण अदोक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। सो चलते हैं, सुनते हैं अब दोहा। जय सियाराम।
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: जय सियाराम। हिमावन ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, अर्थात नारद मुनि भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके सर्वज्ञ पहुंच हैं, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। सो नारद मुनि पार्वती माँ के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं और आगे जाकर वे रामचरितमानस में श्री राम कथा में क्या भूमिका निभाएंगी, इसको जानने के लिए हम अगले गुरुवार को फिर से सुनेंगे उपस्थित होने वाले राम रस धारा सत्संग में हमारी बहनों की मुखार बिंद से।
2: राम रस धारा, राम रस धारा।

0: रसधारा।
1: देवी और सज्जनों, इसी के साथ ही आज का राम रसधारा प्रोग्राम, ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होने को चला। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित पांच बहनों को, माला जी को, अंजू जी को, कृष्णी जी को, गायत्री जी को, सुभाषिनी जी को, कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग, आपकी उपस्थिति के लिए। देवी और सज्जनों, अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में। अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पाठ पांच बहनों के साथ। जय सिया राम, जय जय हनुमान,
2: जय सिया राम।

0: भक्ति प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की
1: जय।
0: पवन पुत्र हनुमान की
1: जय।
0: उमापति शिवशंकर भोलेनाथ की
1: जय।
0: जय सियाराम
2: जय सियाराम।

शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर डालती है। पुतदो में नई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन, करीब 3400 घरों को मिलेगी बिजली, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम। मॉरिशस में कई बिलियन रुपए के नए निवेश की संभावना है, ईडीबी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दी मंजूरी, निवेश बढ़ाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। मॉरिशस में एमपॉक्स के स्थानीय संक्रमण का पहला मामला दर्ज, 64 वर्षीय व्यक्ति आइसोलेशन में है, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया संपर्क खोज अभियान। कुसराज लचगादू मामले में अदालत का फैसला बाद में सुनाया जाएगा, सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मॉरिशस में पहली हवाई उड़ान के 104 वर्ष, 1922 की ऐतिहासिक घटना को फिर जीवंत करने की पहल।

0: देश स्तर पर इजराइल और लिबनान युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत, दक्षिणी लेबानन में विशेष सुरक्षा क्षेत्रों की योजना, लेकिन सीमा पर तनाव अब भी बरकरार है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। मॉरिशस में रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। बुधवार में आज एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया, जो लगभग 3,400 घरों को बिजली देने में सक्षम होगी। एमसीबी ओमनिकेन और कलिसे इंटरनेशनल के सहयोग से तैयार इस परियोजना पर 250 मिलियन रुपये का निवेश किया गया है। खास बात ये है कि यहाँ बिजली उत्पादन के साथ कृषि गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, बिजली उत्पादन में अक्षत ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% तक पहुँचाना और 2035 तक कोयले के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करना है। मॉरिशस में आने वाले समय में कई बिलियन रुपये के नए निजी निवेश देखने को मिल सकते हैं। निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार प्रदान करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड यानी ईडीबी ने अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल को और अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही देश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए और अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से कई नई पहलों की घोषणा की गई है। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस पूरे महाद्वीप में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिक मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने में सफल रहा है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र की आगे की वृद्धि के लिए कई चुनौतियां भी मौजूद है। करुणा लालू।
1: अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडेक्स 2025 में मॉरिशस 5वें स्थान पर है, यानी मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और टूनिशिया के पीछे। ये वर्गीकरण देशों की विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मूल्यवर्धित उत्पादन विकसित करने की योग्यता के आधार पर हैं। रिपोर्ट में मॉरिशस की कई विशेषताओं को उभारा गया, जिनमें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा, अनुकूल व्यवसाय वातावरण और अर्थव्यवस्था का विविधीकरण शामिल हैं। रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि मॉरिशस उच्च मूल्यवर्धित विनिर्मित उत्पादों का निर्यात करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर दृष्टि सिंह रामदेनी कहते हैं, हम रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुकूल हैं, खासकर डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण को लेकर। अनेक सेक्टरों में टेक्सटाइल से परे फूड एंड बेवरेजेस को लेकर भी, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में है। हालांकि मॉरिशस महाद्वीप की सबसे अधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट कई चुनौतियों की ओर भी संकेत करती है। अंतर अफ्रीकी व्यापार बहुत कम है, धीरे धीरे प्रगति हो रही है, एक संभावना के तौर पर देखना है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह एक सतत मंच की जरूरत है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 2010 में 14.2% से घटकर 2024 में 10.8% हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता है। फिस्कल और वित्तीय समर्थन, मूल ढांचा आदि पर फिर से गौर करना चाहिए। एसएमई को केंद्र में रखना चाहिए, निवेश को लेकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, विशेष आर्थिक जोन से जोड़ना चाहिए। अब चुनौती ये होगी कि बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच इस सकारात्मक गति को कैसे बनाए रखा जाए।
0: मॉरिशस में एमपॉक्स के स्थानीय संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 64 वर्षीय विदेशी मूल के एक व्यक्ति में इस वायरस की पुष्टि हुई है। उसे पॉपलमुस स्थित सर श्री सागर राम गुलाम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत संपर्क खोज अभियान शुरू कर दिया है, ताकि संक्रमण के स्रोत और संभावित संपर्कों का पता लगाया जा सके। अशिता रघु।
2: ये स्थानीय स्तर पर एमपॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है। पूर्व में 2 आयातित मामले थे। व्यक्ति एक निजी क्लिनिक में त्वचा पर समस्या की शिकायत के

0: साथ आया था, जहां वहां के डॉक्टर ने उसे एक त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट के यहां भेजा और डर्मेटोलॉजिस्ट को संदेह हुआ कि ये एम्पॉक्स हो सकता है, जिसके बाद तुरंत मरीज को SSRN अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। वहां भी उसे डर्मेटोलॉजिस्ट ने जांचा और उसके खून का एक सैंपल कॉन्डस अस्पताल भेजा गया। 2 बजे के करीब नतीजे प्राप्त हुए, जिससे ये पुष्टि हुई कि ये एम्पॉक्स का मामला है।
1: Tout de suite à l'hôpital SSRNH au nord, dans isolation ward, et il est vu par un dermatologue également, et il lui fait une frottis, un échantillon de peau qu'il nous envoie au laboratoire de Candace. Et là, les résultats sont tombés vers 2 heures, c'est confirmé M-pox. Monsieur en question, il habite à Maurice pendant
0: संक्रमित व्यक्ति पिछले 20 सालों से मॉरिशस में रह रहा है। ये एक स्थानीय मामला है। हम सक्रिय रूप से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये एम्पॉक्स से संक्रमित हुआ है, क्योंकि ये नजदीक के संपर्क से ही फैलता है।
1: Pustule, la croûte, ça c'est ben un problème qui nous commence à gagner dans la main et nous gagne ça au visage, mais aussi dans ma partie privée.
0: Symptoms में त्वचा की समस्या जैसे पुटिका, सूखे व उखरे दाने होने लगते हैं, जो हाथ, चेहरे व अंतरंग में हो सकते हैं।
2: सिंथेटिक ड्रग से जुड़े बहुचर्चित कुसराज लच्छिगादू मामले में अदालत का फैसला अब बाद में सुनाया जाएगा। असाइजेस कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने मामले पर अपना निर्णय स्थगित कर दिया। ये मामला 2018 का है, जब कुसराज लच्छिगादू पर लगभग 33 मिलियन रुपये मूल्य की 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स वाले एक पार्सल प्राप्त करने का आरोप लगा था। वर्ष 2024 में 2 नए गवाहों के सामने आने के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। सुनिए,
3: पिछले मंगलवार को असाइज़ेस कोर्ट में न्यायाधीश लक्ष्मी प्रसाद ओजायब ने कुसराज लच्छिगादू के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अपना फैसला नहीं सुनाया। ये मामला 27 फरवरी 2018 का है, जब कुसराज लच्छिगादू ने 2.2 किलो सिंथेटिक ड्रग्स का एक पार्सल अपने कब्जे में लिया था, जिसकी कीमत का अनुमान 33 मिलियन रुपये का लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने थ्रियोले स्थित कुसराज लच्छिगादू के कथित गुप्त ड्रग प्रयोगशाला पर छापा मारा। हालांकि फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री की जांच में कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला। कुसराज लच्छिगादू 23 अप्रैल 2018 को उस समय चर्चा में आया जब वो बाकवा डिटेंशन सेंटर से कुछ पुलिसकर्मियों की मदद से फरार हो गया था। उसके खिलाफ चल रहा मुकदमा मार्च 2022 में समाप्त हो गया था और अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था। 2024 में ये मामला फिर से खोला गया, जब 2 गवाह सामने आए। उन्होंने कथित रूप से दावा किया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने कुसराज लच्छिगादू को गलत तरीके से फंसाया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अदालत अपना फैसला ऐसी स्थिति पर सुनाएगी जिसकी सूचना संबंधित पक्षों को परिपत्र के माध्यम से दी जाएगी।
2: आज हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुकी है, लेकिन मॉरिशस के आसमान में पहली बार किसी विमान ने कब उड़ान भरी थी, इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1922 में वकवा के जिमखाना क्लब मैदान से एक विमान ने पहली बार मॉरिशस के आसमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 104 वर्ष बाद NGO SOS पैट्रिमोन उस भूले बिसरे अध्याय को फिर से जीवित करने और देश की विरासत का हिस्सा बनी इस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सुनिए ये विशेष रिपोर्ट।
3: वाकवा में जिमखाना क्लब के इस मैदान से पहली बार मॉरिशस से एक विमान ने उड़ान भरी थी। ये घटना 1922 की है। दक्षिण अफ्रीका के मेजर हुनेट ने इस विमान का संचालन किया था। उन्होंने इस विमान बायप्लेन को इंग्लैंड से समुद्री मार्ग के जरिए मॉरिशस तक पहुँचाया था। उस समय जिमखाना क्लब बरतानी सैन्य मुख्यालय का हिस्सा हुआ करता था। जिमखाना क्लब के अध्यक्ष रवीन बिनेश्री सिंह ने कहा, ये क्लब अंग्रेजों का था जो गोल्फ खेलना पसंद करते थे, इसलिए साफ जमीन की जरूरत थी। विमान ने इस क्लब की जमीन का इस्तेमाल किया। 2 जून को सफल परीक्षण उड़ान के बाद इस विमान ने 4 जून को आसपास में कई चक्कर लगाए। 6 जून के रिसेनीय समाचार पत्र के संस्करण में उल्लेख किया गया कि विमान ने भीड़ की जोरदार ताली

पार्टियों और उत्साहपूर्ण स्वागत के बीच बड़ी सुंदरता से उड़ान भरी। आज इस ऐतिहासिक क्षण का कोई भौतिक चिन्ह बाकी नहीं। इसी स्थिति को बदलने के लिए गैर सरकारी

0: की। ये स्मृति संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है ताकि मॉरिशस के विमानन इतिहास का ये अहम अध्याय समय के साथ भुलाया न जाए।
1: वैदिक विचारों, सत्य की खोज और समाज सुधार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आर्य सभा मॉरिशस इस पूरे जून महीने में सत्यार्थ प्रकाश से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रही है। आज पोटवी स्थित आर्य भवन में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान बताया गया कि सत्यार्थ प्रकाश जयंती 12 जून को मनाई जाएगी। 1 जून से शुरू हुई प्रवचन और विचार गोष्ठियों की श्रृंखला 5 जुलाई तक आर्य समाज के विभिन्न शाखाओं में जारी रहेगी। साथ ही दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश अर्थात सत्य का प्रकाश ग्रंथ की प्रतियां भी वितरित की जाएंगी। पूजा सुकालू की रिपोर्ट पेश है।
2: आर्य समाज के संस्थापक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के दर्शन और शिक्षाओं को इस पूरे महीने विशेष रूप से उजागर किया जाएगा। इस अवसर पर देश भर में आर्य समाज की विभिन्न शाखाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक प्रेस सम्मेलन में इस पूरे महीने के दौरान आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी गई।
3: सत्यार्थ प्रकाश इसी ग्रंथ के माध्यम से मॉरिशस में प्रकाश फैला है। अंधविश्वासों की जड़ को काटने का पूरा पूरा प्रयास किया गया और विद्या का जो प्रकाश है वो घर घर तक पहुंचाने का हमने प्रकाश प्रयत्न किया हमारे पूर्वजों ने, और इस समय वर्षों से आर्य सभा यह कार्य कर रही है।
2: इस विशेष अवसर पर भारत से आचार्य धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी आध्यात्मिक सभाओं और विचार विमर्श सत्रों में प्रवचन देंगे।
4: सत्यार्थ प्रकाश वह कालजयी ग्रंथ है जिसने न केवल भारत में अपितु विश्व के तमाम देशों के अंदर एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति की स्थापना की है। और स्वामी जी को इस ग्रंथ के लिखने में लगभग 3-3.5 मास का समय लगा।
2: ये कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य के प्रकाश पर केंद्रित है जो स्वामी दयानंद सरस्वती की एक महत्वपूर्ण कृति है। इस अवसर पर सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियां भी देश भर में वितरित की जाएंगी ताकि अधिक से अधिक लोग स्वामी दयानंद के विचारों और उनके संदेश से परिचित हो सकें।
1: सर्दियों ने दस्तक दे दी है लेकिन मौसम में अभी तक उसकी ठंडक पूरी तरह महसूस नहीं हो रही है। मॉरिशस में तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम का ये बदला हुआ रुख जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों की ओर संकेत करता है जिसका असर दुनिया के कई हिस्सों की तरह अब हमारे इलाके में भी साफ दिखाई देने लगा है। सडेक के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारियों के का एक संघ अपनी सिकम पेंशन योजना में बदलाव की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि इस मुद्दे से करीब 300 जस कर्मचारी प्रभावित है। मॉरिशस लेबर कांग्रेस से जुड़े इस संघ ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी मांगे सामने रखी। साथ ही उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन में शिकायत दर्ज कराने का भी निर्णय लिया। जब कोई कंपनी रिसीवरशिप के तहत जाती है तो कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। ये कहना है एफटीयू यानी फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष आत्मा शांतो का। आज पोटली में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान उन्होंने रिसीवरशिप के तहत चल रही 4 कंपनियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच और तटीय इलाकों में प्रस्तावित होटल परियोजनाओं का मुद्दा आज फोरम सिटोयन लिब्रे की प्रेस वार्ता में प्रमुखता के साथ उठाया गया। बेल विलेज में आयोजित इस बैठक के दौरान रोर आयान ने होटल परियोजनाओं को दी गई मंजूरियों और उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल खड़े किए। और अब बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी सैन्य भागीदारी समाप्त करने की मांग की गई है। हालांकि इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रस्ताव को कुछ रिपब्लिकन सांसदों का भी समर्थन मिला है जबकि इस सप्ताह सीनेट में भी इस पर चर्चा और मतदान होने की संभावना है। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है युद्ध जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में कांग्रेस की भूमिका को बनाए रखना आवश्यक है। इजराइल और लिबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमत

सहमति जताई है समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां हिजबुल्ला के लड़ाकों की मौजूदगी पर रोक होगी और नियंत्रण केवल लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस के पास होगा यह व्यवस्था तभी लागू होगी जब हिजबुल्ला सभी हमले पूरी तरह बंद करे और सीमा क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाए चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान है कि आज रात को सेंट्रल प्लेटो पर रहकर कुछ बरसात हो सकती है देर रात को और कल सुबह के दौरान मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे कल दोपहर बाद देश के उत्तर पश्चिम उत्तर और सेंट्रल प्लेटो पर रहकर बरसात होगी और कभी-कभी जो काफी तेज भी हो सकती है रात को हल्की हवा बहेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दूर समुद्र में नहीं जाएं न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 20 से 22 अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा सूर्यास्त 5:47 पर सूर्योदय 6:39 पर होगा

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। ब्लैकबर्न रोड कोंगोमा में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की दिवानन रामरिचा जिन्हें लोग लुलो के नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके भाई मंगल रामरिचा के मकान कोंगोमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट नून। Mancellement Prud'homme, Rivière des Anguilles, 86 साल की 83 years old की जयमुंती लखन पैदाइश नाम लक्ष्मण, लोग उन्हें जामुन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे सुरेश लखन के मकान रिविया दी जोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM। कलपुलेन मैडम लुलू रोजबेल में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड के श्री धनंजय लाला की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिरानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। 14A सर हिलारी ब्लड एवेन्यू कटरोबोन में 103 वर्ष की 103 ईयर्स ओल्ड की सुनमती दसोई की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गोकुल, लोग उन्हें सुगिन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के बल्कि शनिवार 6 जून को दिन के 12:30 बजे उन्हीं के मकान काठरोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन ऑन सैटरडे 6 जून एट 9:30 AM। जिल्फा लेन सेंट जूलियन दुतमो में 109 साल की 109 ईयर्स ओल्ड धनमतिया सुको पैदाइश नाम रतन, लोग उन्हें मुना के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दोपहर बाद 1 बजे उनकी बेटी अनिता सुको के मकान सेंट जूलियन दुतमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौतवाल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM। बाउंड्री रोड रोजिल में 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती देवी रामचंद की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पेम, लोग उन्हें रेखा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन

0: tomorrow at 1 p.m. Swaraj Bhavan Lane, Lalmatimi, 89 years old ki Shrimati Kalauti Mangar, paidaish naam Lakhan, log unhi Vidyapati ke naam se adhik jante the ki mrityu ho gayi hai unki arthi kal din ke 11 baje unke bete Manish Mangar ke makan Lalmati se uthakar antim sanskar ke liye Kondemas ki shamshan bhumi le jaya jayegi. Cremation tomorrow at 11 a.m. Mosselman Saint-Henri Saint-Hubert-Ami, 27 साल के, 27 years old के कृष्णा चकोरी की मृत्यु हो गई है. कृष्णा चकोरी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी दादी के मकान Saint-Hubert से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 a.m. मेबर्ग में Rue des Créoles, Mayburg, mais 55 saal ki, 55 years old ke Shri Bisundat Ramson ki mrityu ho gayi hai. Log unhein Kolu ke naam se adhik jante the. Unki arthi kal din ke 11 baje unki maa Santi Ramson ki makan Mayburg se uthakar antim sanskar ke liye pranmaniyon ki shamshan bhumi le jaya jayegi. Cremation tomorrow at 11 a.m. La rue Laurillière, Verdemi पोस्ट ऑफिस के करीब 87 साल के 87 years old के भगवत प्रसाद झुमक की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें दयानंद के नाम से ज्यादा जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान वैद्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 a.m. एवेन्यू पेरुश मोसलमान ले माए मेबर्ग में 85 years old के 85 साल की सावित्री देवी की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम दुखी, लोग उन्हें साबित के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के मकान एवेन्यू पेरुश मोसलमान ले माए मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 a.m. रामनारायण रोड कोटेज में 75 साल की 75 years old की बसंती रामचंद की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम चमन, लोग उन्हें सुनीति के नाम से ज्यादा जानते थे. उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान कोटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोटेज की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 a.m. बेक्सले हीफ कैंट यूके में 74 साल के 74 years old के जयराज जीवन की मृत्यु इंग्लैंड में हो गई है. लोग उन्हें अनिल के नाम से ज्यादा जानते थे और वे मॉरिशस में पहले टैगोर रोड फोंजिसा के रहने वाले थे. उनकी अर्थी कल यूके के समयानुसार वहीं पर सुपहर 3 बजे उठाई जाएगी. रॉयल रोड ग्रैंड रिट्रेट में 72 साल की 72 years old की अंजलि रुकमिन की मृत्यु हो गई है. अंजलि रुकमिन की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम दमरी, लोग उन्हें रजनी के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन की डेढ़ बजे उनके बेटे उदय रुकमिन के मकान ग्रैंड रिट्रेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 p.m. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Up center, 95.5. North, south, 95.6. East, west, 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: अपने घर ही मिला लीजिए देवी और सज्जनों. इस वक्त शाम के ठीक 6:26 हो गए हैं.

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम में। इस वक्त शाम की 6:32 हो गई है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां

पर हम एक विचार लेकर के आते हैं जहां पर इसको सुनने के बाद पता नहीं आप प्रभावित होंगे या नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश में लगे रहते हैं और उस विचार को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हमें लगता है कि हाँ हमने अपने लक्ष्य की पूर्ति की है।

लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम अभी के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? हम तो एकदम फिट एंड फाइन हैं। आज हम बात करने वाले हैं खुद के बारे में, मेरे बारे में नहीं लेकिन आपके बारे में। आप जो पूरी दिन एकदम थक गए हैं, पस्त हो गए हैं, हेक्टिक लाइफ में इतने जकड़े हुए हैं कि आप भूल गए हैं कि एग्जैक्टली आपके पास भी एक खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा समय जहां पर आप खुद के बारे में सोचेंगे, एक ऐसा समय जहां पर आप कहेंगे कि तो ठीक है ना, जहां पर आप कहेंगे कि हाँ मेरी सांस चल रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ, या फिर आज गुस्से में हूँ, या फिर आज सेटिस्फाइड हूँ, या फिर आप कहेंगे मुझे डर लग रहा है। खुद से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फंस जाते हैं दिन के दौरान कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा भी एक सपना है। और जब दिन ढलने लगता है, रात की शुरुआत होती है, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ यार मेरा भी एक सपना था। पता है जब हम लोग जवानी के टाइम में होते हैं ना, हमारे दिमाग में सपने को लेकर के बहुत ही साफ होते हैं कि एक दिन मैं ऐसा करूँगा, एक दिन मैं बनूँगी। लेकिन समय के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हम लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए रुक जाते हैं और हम लोग और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने लगते हैं। जिम्मेदारियां आ जाती हैं, नए रिश्ते आ जाते हैं, ये जो सपना है टूटता नहीं है, बस खामोश हो जाता है। तब बाद में 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हम उस सपने को के बारे में सोचते हैं कि मैं ये भी कर सकता था लेकिन समय निकल गया यार। और इसी टाइम पर हम लोग कहते हैं कि क्या अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग करते क्या हैं? इस भागदौड़ी जिंदगी में हम लोग इतने उलझ गए हैं कि हमारे जो सुकून है उसको हम पोस्टपोन करते जा रहे हैं। और उस सुकून को पोस्टपोन करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि भाई मैं भी तो जिंदा हूं। RM3 क्या आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपने अपने सुकून को पोस्टपोन कर लिया है और ऐसी स्थिति में आप लोगों को कुछ पता नहीं है, या फिर इनडायरेक्टली आपको पता नहीं है कि आपने उस अपने सुकून को पोस्टपोन कर दिया है? It's time to take some time for you. समय आ गया है अपने लिए, खुद के लिए समय निकाले, उस सुकून को अपनाइए, उस सुकून को enjoy कीजिए।

पता है, ऐसे गीत सुनने के बाद सचमुच अरिजीत सिंह को सुकून तो मिल ही गया है, इसलिए यू नो इस गायकी की दुनिया में उसने अपना पूरा जो समर्पण का जो भाव है उन्होंने उसको पूरा कर लिया है, इसलिए उस गायकी की दुनिया में उन्होंने वनवास ले लिया है। उसने शायद खुद को पहचान लिया, खुद से बातें की। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम लोग खुद ना खुश हो जाते हैं। अरे मेरे दोस्त, सब लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करेंगे, therefore it's okay। अब इस दुनिया में आपके आजू बाजू में पाए जाने वाली सब लोगों को खुश आप थोड़ी कर पाएंगे, आप एक ही

इंसान हैं, आपके पास इतना ही एनर्जी है जितना कि आप संजो करके रखते हैं। मान करके चलिए आप 8 घंटे के लिए सो रही हैं तो इतना ही एनर्जी होगा आपके लिए। तो 10 काम करने के बजाय अगर आप 7 काम कर लेते हैं या 6 काम कर लेते हैं, 4 काम नहीं हो पाया क्योंकि आप उन 4 लोगों को खुश नहीं कर पाए, इट्स ओके फाइन, कम से कम 6 तो आपने किया है ना। वो 4 नहीं हुआ, वो आपसे नाखुश हैं, वो आपको आपकी आलोचना करेंगे, देन इट्स ओके फाइन, यू आर ए ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। आप एक इंसान हैं और इंसान के पास उतनी ही यथाशक्ति है जितना कि वो संजो करके रखते हैं। सो इट्स ओके फाइन, जस्ट टेक इट पॉजिटिव, आप स्ट्रेस मत होइए। कभी कभी काम में ऐसा होता है हम लोगों ने काम को पूरा नहीं किया है और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग मतलब घर पहुंचने के बाद, अरे यार मेरे से नहीं हो पाया, कल सुबह जब मैं जाऊंगा ना वही काम मैं शुरू करना शुरू करूंगा, और आपके दिमाग वो शिफ्ट ही नहीं होता है, आपके दिमाग पूरे काम में ही कंसंट्रेट हो जाता है। आप घर पर पहुँचते हैं, आपका बच्चा आपसे मिलने के लिए छटपटाता है लेकिन आपके दिमाग जो है वो काम पर ही अटका हुआ है। आप भूल जाते हैं कि कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सो स्ट्रेस और काम के जो काम है, काम की जो बातें हैं उसको आप काम पर ही छोड़ दीजिए। जब आप घर पर पहुंचते हैं तो आप अपने परिवार, अपने फैमिली, उस मुस्कान को और ज़्यादा बढ़ाइए अपने बच्चे के साथ। आप खुद बच्चे बन जाने के बाद आप उनसे खेलिए, उनको टाइम दीजिए। मुझे लगता है अगर आप ये करेंगे डेफिनेटली लगेगा कि हाँ वो सुकून फिर से मिल रहा है। पता है अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक नई किताब लिखना शुरू करेंगे, नए नए चैप्टर्स आप लिखना शुरू करेंगे, बिकॉज यू आर द ओन राइटर ऑफ योर लाइफ, अगर आप शुरू करेंगे ना तब जा कर के लगेगा कि हाँ ये ज़िंदगी बहुत ही गुलजार है। और हाँ एक और बात है, ये जो राइटर है आप है, कलम आपके हाथ में होना चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं। आपकी खुशी के रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में होनी चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के 7 बजे हैं। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की असल खूबसूरती ये है कि लोग आपसे कितने खुश हैं। एंड दोस्तों, आप लोगों को खुश करने के लिए अभी पहुंच गया है हर थर्सडे की रात को, और हम लोग यहाँ पर मिल करके जिंदगी को बिताएंगे, प्यार करेंगे, बातें करेंगे, आपकी फरमाइशों को भी सराखों पर ले

दोस्तों आप लोगों की रात को रंगीन करने के लिए अभी पहुंच गया है और ऐसे टाइम पर ऑन 402-80-70 पर 402-80-70 पर आप हमें फोन कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको यहां पर हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू मे आल्सो सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200। मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मिल गए हैं, एक लिस्ट बन करके तैयार हो गई है। ये ऐसे ऐसे गाने हैं जो आप लोगों ने खुद यहाँ पर उनकी फरमाइश की है, उसको हम चलाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपका गाना नहीं चला रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं दूसरे के गाना चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मायूस मत रहना, निराश मत होना, बस हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ सुदेवी भी आ गई हैं, उन्होंने कहा हेलो अभी कैसे हो, मैंने कहा क्या बात है, थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड ऑफ कोर्स सुदेवी, अगला गीत हम आपके नाम चलाएंगे जो वाकवा के रहने वाली हैं। अभी मैं आपके प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रही हूं, मैं थ्रियोली से हूं, वाकवा से या थ्रियोली, सुदेवी वाकवा के हैं, अच्छा उनकी दीदी ललिता जो थ्रियोली के रहने वाली है, अच्छा अब आई बात समझ में। सभी कुशल फैमिली के लिए वी ऑल्सो हैव भाई आत्माराम मालिंगा से हैं, वी ऑल्सो हैव राम रतन फैमिली और अभिजीत के लिए भी अगला गीत हो जाए। सो चलिए अगला गीत स्पेशली हम सुदेवी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है।

चले चलो, बहुत सारे लोग इस वक्त नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं और ऐसे टाइम पर उन लोगों के हौसले को अफजाई करने के लिए मौका तो हम लोगों को भी मिल रहा है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। रात बाकी और बात भी बाकी है और इस वक्त रात के 7:24 हो गए हैं। दिल से हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी हूँ अभी, ये प्रकाशवती है फ्रॉम बेल्जियम। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, मैं चलाऊंगा डेफिनेटली। आदाब अभी, कैसे हो? प्लीज जियाद के लिए अगला गीत हो जाए। वी ऑल्सो हैव जालिला और रेहाना की तरफ से, साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गाने की फरमाइश की है, मनवा लागे, चलिए उसको हम चलाएंगे जी। 402-80-70 पर 402 आज 070 पर अगर आप लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल मेरे दोस्त, आराम से जाइए, एंजॉय कीजिए वो म्यूजिक। आप अकेले हैं मुझे पता है, और अकेलेपन में जब म्यूजिक आप एंजॉय करते हैं ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है, एक स्माइल के साथ। और पता है कल भी आपको काम पर जाना होगा, उसके अगले अगले दिन भी काम पर जाना होगा। अब इन सब को लेकर के माथा पच्ची करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस ऐवे ही निकल जाइए और ड्राइव कीजिए, काम को भूल जाइए, अब घर की ओर जाइए और एंजॉय करते जाइए। लेकिन अभी के लिए मुझे फोन मत करना, आप लोग जो लोग ड्राइव कर रहे हैं मत फोन करना, ना पुत्र ना, मत करना। अगर कोई है बगल में तो उसको एक कहना, ए मुझे एक मैसेज, अभी को एक मैसेज भेज दो ऑन 5250-6200। पता है 90s की स्पेशलिटी की कुछ अलग है, ये जो गाना है ना, हाय हाय क्या बात है। इसमें जो एक्ट्रेस हैं, हाय हाय सुभान अल्लाह क्या बात है। ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त किचन में बहुत ही बिजी है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

भी बहुत इंटरेस्टिंगली हो जाते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको कहना चाहेंगे इस वक्त रात के 9:43 हो, 9:00 नहीं मेरे दोस्त, 7:00, हाँ 7:43 हो गए हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटे छोटे शहर में, बड़े बड़े शहर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। वी डू हैव, कौन है यहाँ पर? हेलो ब्रो, नमस्ते, प्लीज़ अगला गीत मेरे लव के लिए हो जाए और मेरे लिए भी। दिस इज़ भगवत बीडीसी ऑफ टायाका और अनुषा मेरे जो लव हैं, जो मोहताबा के हैं। क्या बात है, मूड रोमांटिकली सेट हो गया है ना। चलिए, इसी को कहते हैं इश्क वाला लव।

चलिए आप लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए हम तो यहाँ पर आए हुए हैं। विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। उनके सभी दोस्तों के नाम जो इवेंट में स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिलाई जिस वक्त रात की ठीक 8 बजी है। वेलकम बैक फॉर योर नई शो। जी हाँ दिल दोस्तों, दिलों की आवाज कार्यक्रम में दिल से हार्दिक स्वागत हम करते हैं। 402-80-70 पर फोन करना मत भूलिएगा। दिस इज योर मैजिकल नंबर, सेंडिंग योर मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। दिस इज योर सिनोरिटा फॉर योर मनोरंजन रेडियो, अभी के साथ रात के 9 बजे तक का।

दोस्तों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए खुल करके जियो अपने जिंदगी को, पूरे शिद्दत के साथ आप जीते जाइए।

जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। Once again, welcome back for your दिलों की आवाज शो ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन अभी के साथ रात के 9 बजे तक। इस वक्त रात के 8 बजकर 11 मिनट हो गई हैं एंड ऑफ कोर्स आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन 402-4500 पर, या फिर आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं ऑन 5250-6200। हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्योति फ्रॉम शातो बिनारस। उन्होंने कहा अगला गीत सुरेखा, रेखा, अश्मि और जितने सारे मैंडव फैमिली हैं उनके लिए हो जाए। वी ऑल्सो हैव रीटा और अजय, विदाउट फॉरगेटिंग पूनम और मनीष, परितुष्टि, अखिल और व्योम्स। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे भाई आत्माराम के नाम, जो इस वक्त नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा ये गाना अगर वो सुनेगा सो उनकी जो नाइट शिफ्ट है ना वो ऐवे ही निकल जाएगी। दिस इज फॉर यू आत्माराम, दैट्स झुमरू।

और इस वक्त हमारे साथ विनय गोविंद जुड़ गए हैं फ्रॉम कनाडा बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है उनके लवली बच्चों के नाम, जिनका नाम है यतीश और सानवी, और गौरी भी उनके साथ जुड़ी हुई है। वी ऑल्सो हैव सभी गोविंद फैमिली जो उस बैल के हैं।

0: हम भी उसके दिल में समा गए हैं और बस यही कोशिश में लगे हुए हैं कि ये जो मूड रोमांटिकली सेट हो गया है उसको मेंटेन करते जाएंगे रात के 9 बजे तक। दिस इज योर 90s। जी हाँ बिल्कुल, इस गाने की फरमाइश की है वेद ने और उन्होंने कहा वो इस वक्त लंदन से हमें याद कर रही हैं उनके लवली पत्नी के नाम जिनका नाम है वैकुंठ। वाओ So guys, waiting for you on 5250-6200 for your messages happening right now on Radio Manoranjan.
1: सपना मेरा सच्चा

पता है इसी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको लगता है कि एक्चुअली वे लोग बहुत ही अनलकी हैं क्योंकि उनको प्यार ही नहीं मिलता है। अरे मेरे दोस्त, ऐसे प्यार मन ढूंढो जहां पर एक तरफा मिले, जहां पर आपको लगेगा कि आप खुद इसमें हैं, दूसरे तो है ही नहीं। तो ऐसे प्यार ढूंढने की कोशिश करो जो दो तरफा है, जो रेसिप्रोकल है, जो आपके प्यार का कदर करता है।

अनिल कपूर और मनीषा कोइराला, क्या बात है। इस गाने की फरमाइश की है अजय ने उनके लवली पति पत्नी सॉरी नीता के नाम। मेरे को हो क्या रहा है आज यार, गलती पर गलती करता जा रहा हूँ। नहीं है, उनकी पत्नी है जिनका नाम है नीता। अभी के लिए कुछ ना।

अभी के लिए तो इस पल में तो मैं हूँ और आप हैं और स्विनल भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रवण भाभी हैं कीर्ति अभिनव कियान नव्य और तिलक फैमिली के लिए ये हो जाए। चलिए ये गाना आपके नाम।

जब हम किसी से बेमतहाशा मोहब्बत करते हैं लेकिन उसके बदले में हमें वो प्यार नहीं मिलता है, शायद उनको खुद पता नहीं है जिस सलीके से, जिस शिद्दत के साथ हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। कभी कभी दिल महसूस कर रह जाता है कि अरे यार, उसके बदले में मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। और उसी टाइम पर एक ऐसा एहसास होता है कि उस एक तरफा प्यार में कम से कम मुझे तो एक संतुष्टि मिल रही है ना, कि मैं उसके हर एक लम्हे का पूरा पूरा दीदार को संजो करके उसको एंजॉय करते जा रहा हूं ना। अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है।

जहाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं हैं तो हम कुछ नहीं हैं, इसीलिए आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है ऑन 5250-6200। इस गाने की फरमाइश की है वाक्वा की वीना, उन्होंने कहा उनकी सभी शुभा फैमिली के लिए ये गाना हो जाए। जिस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और किचन में सब लोग हैं, क्या बात है, ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

का जो कारवा है उसको हम मेंटेन करते जा रहे हैं रेडियो मनोरंज की लहरों पर। RM3 दोस्तों, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ नाउ। बात करते करते मैं भूल गया कि मुझे भी जाना होगा। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। लेकिन अगला जो थर्सडे है हम लोग मिलते जाएंगे, तब तक अभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आदाब, बाय बाय।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन हैं, बुरे लोग हैं,
5: और इतनी सी बात के लिए हमारी बहन से शादी नहीं करेगा।
6: है कोई घर में बहन, बेटी, भाई, कोई भी शादी के लायक
5: है ना? लड़की संजना बहन।
7: और हमारे से ज्यादा शरीफ खानदान आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा।
5: प्लीज वेलकम।
3: रविवार 7 जून को एनबीसी 3 पर दिन के 12 बजे स्पेशल फादर्स डे हिंदी फीचर फिल्म वेलकम 2007 की ये मूवी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म वेलकम।

0: भोजपुरी की धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: जी हाँ, आज 4 जून 2026 बीफे के रात के 9:03 और हम

किरण आप सब कोई के स्वागत करत है। हमार करजोर नमस्ते स्वीकार करा ये उम्मीद के साथ कि आज के दिन आप सब कोई के बहुत अच्छा से बीतल और आज के जो शाम है, आज के जो रात है, बहुत खास है। कहे कि काल शुक्रवार है और सुख के दिन के इंतज़ार सब कोई के रहेला। कहे कि वो इस सप्ताह के अंतिम दिन है और सप्ताहांत चलाई और एक बार फिर परिवार के साथ, अभी जैसे सुनला फादर्स डे आवा था तो एक बार फिर पारिवारिक माहौल बंध जाए और ऐसन में एकर से अच्छा का रही कि आज के शाम एक बार फिर खुशियों के साथ आपके फरमाइशी गीत के साथ एगो सुंदर महफिल सजाओ जा अभी से रात के 11 बजे तक। और ये जोन प्लेलिस्ट बनल बा आपके जोन पसंद है ओकर पर ही आधारित बा, लेकिन जैसे जैसे आपके फ़ोन कॉल्स आए, जैसे जैसे आपके नवा फरमाइश आए, वैसे वैसे ये प्लेलिस्ट के हम बदल ले जाब और आपके हर एगो जोन फरमाइश रही, हर एगो जोन मांग रही ओके पूरा करे के पूरा कोशिश रही। तो चला शुरू करी जा आपके ही मनपसंद गीत के साथ, सुदेश बोइजू के आवाज़ में आपके मनपसंद गीत।

संगे। रात के 9:14 होलबा और आप लोग के फोन कॉल्स आवता एक के बाद एक, और जितना भी गीत के आप लोग मांग कर ले हा वजह, वो सब गीत अभी चली त हमने संगे जुड़ल रहिया। और जितना कोई के भी फोन कॉल्स अभी हम नहीं सका थे लेवे, त थोड़ी देर में आप सब कोई के फोन कॉल्स लो, कहे कि बहुत ज्यादा फोन आवा था, त थोड़ा धीरज धरा, धीरे धीरे हम सब कोई के फोन कॉल्स ले अब और आप सब कोई के गीत चली। ये बखत 9:14 होलबा और भोजपुरी तड़का चला था आज बिफे के रात, हमेशा के तरह 9 से 11 बजे तक।

देशो विदेशवा सगरो घूमे आइले और ये बखत देश विदेश हमी के ढेर जना सुनत हवन जा आप सब कोई के नमस्ते। और अभी मॉरिशस में शीला जी हवन अपन पति के साथ फ्रांस से, और इनकर नाम हांसले एगो गीत के मांग कर ले हवन ला फ्रांस। और हांसले ये गीत शीला के साथ साथ मेरिलिन जे कैथ्रोबोन से हवन, और ला रेनियो में उनकर मौसी

0: जोजियान के नाम करत हवन और जितना कोई भी भोजपुरी बॉयज के फैन हवजा आप सब कोई के नाम ला फ्रांस के ई गीत और जितना कोई फ्रांस से हमने के सुनत हवजा आप सब कोई के नाम
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:23 होलबा और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सबको के आपके फ़ोन कॉल्स खातिर। और काफ़ी शिकायत भी मिला था कि आपके फ़ोन कॉल्स उठावे में देरी हुआ था, कहे कि एक के बाद एक, बल्कि एक ही हालात 6-7 गो फ़ोन कॉल्स जब आवेला तो कैसे सकब से सब एक खुले हुए। लेकिन सच में पूरा कोशिश रहेला हमने के कि आप

सब से बात करब जा आप सब के जो गीत बा उ ई प्रोग्राम में शामिल करके ई प्रोग्राम के और सुंदर बनावब जा कहे कि ई प्रोग्राम आप लोग के हा आप लोग के पसंद पर चलेला और साथ में हमनी के जितना भी भोजपुरी कलाकार बा उ लोग के जितना चहेता चहेती हवन जा हमनी चाहिला जा कि उ लोग के बढ़ावा मिली उ लोग के बढ़ावा दियन जा। और अगला जन गीत चली बसंत सुपोल की आवाज़ में एगो बहुत खुशनुमा गीत जोन हर घर में खुशहाली के समा बांध देवेला ख़ास तौर पर जहाँ पर अभी जन्मदिन चलता। आप इशारा समझ गल हुई बा कि यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के गीत चले होला बा जितना कोई के आज जन्मदिन बा जितना कोई के जन्मदिन का रहल या अभी से लेके हमने के मुलाकात हुए तक जितना कोई के घर में आपके परिवार आपके सगे संबंधी आपके दोस्त आपके पड़ोसी आपके पड़ोसन जितना कोई के जन्मदिन बा हमर ओर से आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। आपके जीवन में हमेशा खुशी रही आपके जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रही और आप सबके जीवन में खुशहाली अनब रोशनी अनब ऐसन शुभकामना के साथ ये अगला गीत चली और एकर फरमाइश खास तौर पर कर ले हवन विजय बेनी प्रसाद जी आज उनकर धर्म पत्नी श्रीमती संगीता बेनी प्रसाद के जन्मदिन बा और घर में सब कोई मिलजुल के ये जन्मदिन के खुशी बाँटत हवजा खुशी मनावत हवजा। संगीता जी के उनकर पतिदेव विजय के ओर से और उनकर बेटा बेटी रोशनी कुशल के ओर से और पूरा दूली परिवार पूरा बेनी प्रसाद परिवार के ओर से जन्मदिन के ढेरों शुभकामनाएं।

हैप्पी बर्थडे अभी और भी बाकी बा ढेर फरमाइश आल बा और जन्मदिन के थोड़ा घड़ी में वो सब फरमाइश भी पूरा करब जा। फिलहाल जो अगला गीत चली वो राधा कृष्णा के बारे में बा कृष्ण ओखाज के आवाज़ में और ये गीत सुने चाहत हवन फौजी साख से उमा जी आप राधा के सुभेला और ये गीत के आप फरमाइश करत हवा ख़ास तौर पर अपन दुगो नातिन जे वाकवा से हवन आरोही और रिव्याजू रोंपा से हवन अदाधिया। ये गीत आप सब के नाम जे राधा और कृष्णा के माने लजा राधा और कृष्णा के चाहे लजा और ये गीत सच में बहुत सुंदर गीत बा। चला संगे ये गीत के आनंद उठाई जा।

राधा नाचेला कृष्णा बजावे बांसुरिया। ई सुंदर गीत के बाद अगला जो गीत चली आप सब कोई के नाम जे ई बखत बीच सीमा में हवा जा और गाड़ी चलावत हवा जा, साथ में आपके चाहे ई बात के खास ख्याल रखे के कि जब आपके पुलिस रोकी त आपके जितना भी कागजात बा कागज पत्तर के साथ साथ आपके हाल चाल भी चाहे ठीक रहे के, आपके नशा में नहीं चाहे गाड़ी चलाए के, पी के नहीं चाहे गाड़ी चलाए के, और फिटनेस और लाइसेंस के

0: खास ख्याल रखा कहे कि आजकल देखत है जहाँ हमने के सड़क पर ढेर दुर्घटना हुआ था रोज़ रोज़ हमने के सुने के मिलता कि यहाँ पर ऐसा दुर्घटना होल हुआ पर औसन एक्सीडेंट होल तो इस सब से बचे खातिर आपके चाहे पूरा सावधानी बरते के और रतन हरि के आवाज़ में ये गीत आप सब कोई के नाम जे ई बखत सफ़र में हवा जा और अपन सफ़र के आप लोग खूब आनंद उठावत हवा जा
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ.
5: अच्छा हुआ मिली वरना मेरा गेम खराब हो जाता.
6: Excuse me. आपको मेरा नाम किसने बताया?
5: आपका नाम? मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या है?
6: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली.
5: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था अच्छा हुआ मिली. आप भी मिली है क्या?
6: जाइए यहाँ से. एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से.
5: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
7: कहता है बाबू
4: रविवार 7 जून को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की ये मूवी अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई बाबुल.
7: बाबुल तो दिल से दे रहा है दुआ यही.
4: भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 10 बजे में और 15 मिनट बाकी बा और अभी से 11 बजे तक हमने साथ रहब जा और आप बीच सीमा में हुई बा तो आपके पास पूरा समय बा अपन मंजिल तक पहुँचे के और अगला जन गीत चली नदी किनारे सुनार नदी किनारे सुनारवा एरिन दिखावे पूर्णिमा फोकिरा जी की आवाज़ में ये गीत सुने चाहत हवन शीला जी और सुरेन भी उनकर साथ हवन आप लोग अपन पूरा परिवार के नाम चाहे वो मॉरिशस में होए मॉरिशस से बाहर फ्रांस में होए या कहीं भी जहाँ जहाँ आप लोग के लयका लोग बा नाती लोग हवन सा और पूरा परिवार हवन सा वो सब कोई के नाम आप ये गीत चलावे की मांग करत हवा और ये गीत ख़ास तौर पर पूर्णिमा फोकिरा जी के नाम जे हमेशा फ़ोन करते रहेलन बात करते रहेलन और ये प्रोग्राम के आप जितना चाव से सुने ला जा उतना ही खुशी के साथ उत्साह के साथ वो भी सुने लन और जितना भी हमने के मॉरिशन भोजपुरी कलाकार हवन जा आप सब कोई के हमर ओर से नमस्ते और जितना कोई हमने के अभी सुनत हो वजह आपके ओर से भी सब कलाकार लोग के प्रणाम नमस्ते और ये रात हमेशा की तरह सुहावन रही ये रात हमेशा की तरह आप सब कोई के एगो बहुत अच्छा नींद सुते में मदद करी ऐसन उम्मीद के साथ ऐसन शुभकामना के साथ चला प्रोग्राम के अगला गीत के ओर बढ़ी जा।

शारदा सिन्हा के आवाज में ये गीत की फरमाइश के करले हुई आप समझ गल हुई बा शारदा सिन्हा के एक बहुत बड़ा फैन हवन हमनी के ये भोजपुरी तरका के और आप हवा बाशेरी के धनी जी धनी जी ये आवाज बहुत पसंद करेलन और ये आवाज में जो अलग अलग गीत बा पसंद करेलन चलावे के मांग करेलन हमेशा हमने ये आवाज में एगो फिल्मी गाना चलाएला जा मैंने प्यार किया फिल्म से कहे तो से सजना तुम्हारी सजनिया और आज धनी जी के इच्छा होलबा कि कोनो और गीत चली उनकर आवाज में तो चला धनी जी आशा करत है जा कि आपके जो मुराद बा वो पूरा हुआ था और आपके बहुत बहुत शुभकामना

0: रात के 10:01 हो गल बा और जिन अगला गीत चली उ रंभा राम तोहल के आवाज़ में जुबेदा लो तो लेके जाए और ये गीत सुने चाहा था वन भाई अब्बू। भाई अब्बू हमेशा के तरह अपन पूरा परिवार के नाम ये गीत चलावे चाहा था वन और इमें हवन अफेज अयाज जयर जहीरा काला चोटी उनकर दोस्त अपी और उनकर पत्नी और उनकर पूरा परिवार खातिर और भाई अबू ई बखत जितना कोई ई प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के नाम ई फरमाइश कर ले हवन और ख़ास तौर पर जे लोग काम कर रहे हवन जा। अब भाई अबू के साथ साथ गोंगोप के सुनीता जी सुनत हवन और वो अपन बहिन कोंगोमा के विमाला के नाम ई गीत के फरमाइश करत हवन। उधर रोजिल से हमने के सजीद सुनत हवन हमेशा की तरह और सजीद अपन जोन उनकर एगो साथी हवन उनकर सहपाठी जेकर साथ वो छोटा से पढ़ले हवन सरोवर सरोवर जे एगो छोकरी हवन हम हमेशा हम सोचते रही सरोवर एगो कोनो लड़का के नाम होई लेकिन नहीं सरोवर एगो लड़की के नाम है जे कनाडा में स्थापित हवन और सजीद के उनकर दोस्त हवन त आपके भी नाम ई गीत और ई बखत जे हमने के रंभा जी सुनत हुयन त रंभा जी ई गीत खास आपके नाम और जितना भी हमने के श्रोतागण हवन जा सुनत हवन जा आपके नमस्ते बोलत हवन जा।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
5: अरे औलाद नहीं है फिर भी हम समझते हैं औलाद क्या होती है
6: क्योंकि डरते हैं हम।
5: इस नेशन में इलेक्शन एक खेल है 5 साल में 3-3 बार खेलना पड़ता है।
7: अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं होती ना मंजरी जी
8: चुभे है क्यों ये जिंदगी।
1: शनिवार 6 जून को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म शूल 1999 की ये मूवी मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म

रात के 10:12 होल बा और जिसे थोड़ा आगे बोलत रही अभी फरमाइश जोन जन्मदिन से जुड़ल बा उ बाकी बा त चला किशोर खिमिया के आवाज़ में एगो सुंदर जन्मदिन के गीत सुनी जा और ये गीत सुने के इच्छा रखत हवन फ्लाक से माला दुर्गा माला दुर्गा बोलत हवन कि आज उनकर बड़ा बेटा के जन्मदिन बा और बड़ा बेटा के नाम बा रोशन रोशन विक्रम दुर्गा उनकर पत्नी के ओर से अरुणा उनकर माता पिता के ओर से उनकर छोटा भाई किरण के ओर से और किरण के जो दुगो बेटी हवन आंशी और दिव्यांशी उ लोग के ओर से साथ में खुद रोशन के बेटी लोग के ओर से रक्षा और रक्षिता और किरण के पत्नी प्रीति के ओर से साथ में दुर्गा जी बोलत हवन कि उनकर दामाद प्रकाश और उनकर नाती युव के ओर से रोशन जी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना और हमने के ओर से भी भोजपुरी तड़का के टीम पूरा एमबीसी टीम के ओर से दुर्गा जी आपके बेटा रोशन के जन्मदिन के ढेरों शुभकामना यही हमने के जो आज के दिन हमने के जो इच्छा बा हमने के जो विश बा वही है कि आपके बेटा

आपके परिवार के हमेशा खुश रखी, आपके परिवार उन पर अपन पूरा खुशी निछावर करी और आपके परिवार हमेशा यही तरह मिलजुल के हर एगो खुशी के दिन मने बजा। ऐसन शुभकामना के साथ उ सब व्यक्ति के एक बार फिर जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई जे लोग आज के दिन और आज से लेके आवत बीफे तक अपन जन्मदिन मनावत है वजह का है कि हमने के मुलाकात

और इस जन्मदिन के गीत के बाद जो नगला गीत चली ये गीत के मांग कर ले हवन ललिता जी और बिस्वानी दीपा के आवाज़ में गमठ कराइला ये गीत आप सुने चाहत हवा और अपन सब सखी सहेली अपन बहन लोग के नाम सुदेवी देवीना प्रभावती छोटी आपके मौसी सुकलाल माला राम जावन हरीश भैया आत्माराम भैया सब कोई के नाम ललिता जी ये गीत करत हवन और ये गीत के बाद जो अगला गीत चली नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में वो गीत के फरमाइश कर ले हवन आत्माराम जी। आत्माराम जी बेलिया से हवन और आप ये जो गीत चली ये आप चलावे चाहत हवा अपन तीन गो दामाद के नाम तीन गो दामाद के साथ साथ अपन चार गो बहिन ललिता सुदेवी छोटी और प्रभावती के नाम। उधर सुदेवी जी वाकुआ से भी गीत के फरमाइश करत हवन आत्माराम भैया ललिता खातिर।

0: जन परिवार बा कुशल और रामरतन परिवार जे मालागा से हवन त चला आप सबको के फरमाइश पर ये सब गीत चली और सुदेवी जी विनोद शिवदत्त के आवाज़ में गीत सुने चाहत हवन त बिस्वानी दीपवा नीरज गुप्त मधु और विनोद शिवदत्त के आवाज़ में एक के बाद एक आप के जुन फरमाइश बा वो चले होला बा
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: आपका नाम क्या है?
1: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
0: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
1: जाइए यहाँ से। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
0: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
2: कहता है बाबू
3: रविवार 7 जून को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की ये मूवी अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई। बाबुल

भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आप सुना था ये बखत रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर और ये बखत 10:43 होलबा मतलब कि 11 बजे में लगभग 15 मिनट कमती बा हमने के साथ देवा था बहुत बहुत धन्यवाद और हमने के मुलाकात फिर से हुई काल फजर के हमारी धरोहर में और नहीं तो भोजपुरी तड़का में फिर मिलब जा पूरा एक सप्ताह के बाद आवत बिफे के तब तक अपन ख्याल रखिया और MBC रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के साथ देते रहिया हमने के फिर से बहुत जल्दी भेंट हो शुभ रात्रि अच्छा नींद सुता अच्छा संकल्प करा संकल्प से ही सिद्धि होवेला और काल फजीर आप सब कोई के एगो नया मौका रही नया दिन रही नया अवसर रही ऐसा शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं प्रोग्राम के सुनते रहिए अभी और 15 मिनट बाकी बा एकर बाद भी सुंदर से सुंदर बॉलीवुड गीत चली हमके आज्ञा द धन्यवाद नमस्ते

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे.

0: एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन हैं, बुरे लोग हैं,
2: और इतनी सी बात के लिए हमारी बहन से शादी नहीं करेगा।
3: है कोई घर में बहन, बेटी, भाई, कोई भी शादी के लायक
2: है ना? लड़की संजना बहन।
4: और हमारे से ज्यादा शरीफ खानदान आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा। प्लीज वेलकम।
0: रविवार 7 जून को एनबीसी 3 पर दिन के 12 बजे स्पेशल फादर्स डे हिंदी फीचर फिल्म वेलकम 2007 की ये मूवी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म वेलकम।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
2: हाय, दिस इज रेडियो मॉरिशस।
3: நமஸ்கார் ஸ்ரோதரந்திரிக்கு ஹிருதய பூர்வக நமஸ்காரம்.
4: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
5: ரேடியோ மாரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹை ஆப் சபி கா.
0: रेडियो मॉरिशस के साथ
6: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। जी हाँ, फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इस खूबसूरत सी सफ़र में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल दोस्तों, हम जैसे कि आपको पता है गणेशा, आ जाते हैं खूबसूरत मीठे मीठे पुराने गीतों के साथ, जो पुराने बॉलीवुड के गीतों के खजाने से निकाल के लाए हैं। तो इस एक घंटे के सफ़र में कुछ ऐसे गिने चुने नगमे हम पेश करने वाले हैं जो सीधे सिर्फ आपके दिल तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और हमारा साथ दीजिए सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

0: हमेशा याद रखना जब भी पुराने बॉलीवुड गीत बजते हैं तो दिल अपने आप मुस्कुराने लग जाते हैं और इसी मुस्कान के साथ हम लेकर आए हैं सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, साथ रहिए और गीतों का लुफ्त उठाइए। यादों का सफर शुरू हो चुका है आपके और हमारे बीच में।
1: मर कर भी तुमको

आज हम सजाएंगे गीतों की एक ऐसी महफिल जहां हर सुर एक नई याद जगाएगा। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल का आनंद लीजिए। पुरानी कैसेट, पुराना रेडियो और पुराने गीत, याद आ गया? हाँ जी, याद आ गया ना वो ज़माना। तो चलिए फिर से जीते हैं वो लम्हे सुनहरे पल के साथ। बॉलीवुड के अमर गीत और उनकी मिठास लेकर हम हाजिर हैं। ये है सुनहरे पल, जहाँ हर गीत दिल से जुड़ जाती है।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा सा वक्त निकालिए और खो जाइए उन गीतों में जो हमेशा दिल के करीब रहे हैं। बिल्कुल, स्वागत तो हमने आपका कर लिया। आपके मनपसंद गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठंडी ठंडी हवा का झोंका चल रहा है और आपके मनपसंद गीत ऑन रेडियो मॉरिशस। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, और क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं कि आप बस इन खूबसूरत गीतों में खो जाइए और हमारा साथ यूं ही देते रहिए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती, बिल्कुल कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती है मेरी जान। आज उन्हीं आवाज़ों और गीतों के साथ हम लेकर आए हैं यादों भरी एक खूबसूरत शाम। गीत जो कभी आपकी मोहब्बत का हिस्सा थे, गीत जो कभी आपके सफ़र के साथी थे, आज फिर सुनेंगे उन्हें, आपके मनपसंद गीत सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

यादों का सिलसिला हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास। ये है आपका अपना सुनहरे पल किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल जी, पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम आ जाते हैं, तो बस तैयार रहिए हमारा साथ देने के लिए एक सुहाने संगीतमय सफर के लिए।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। इन खूबसूरत गानों के जरिए जब आप अपने उन खूबसूरत यादों को याद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, आपको पता है हमें कितनी खुशी होती है। हाँ जी दोस्त, वाकई में जब भी हम आ जाते हैं, ये यादों का खजाना आपका खुल जाता है तो हमारे दिल को खुशी मिलती है, क्योंकि यादें कुछ ऐसे होते हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे जो हमेशा आप अपने दिल के किसी कोने में उसको सजा के और दबा के भी रखते हैं। तो चलिए उन्हीं यादों के नाम ये खूबसूरत सा गीत आपके

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू। बिल्कुल जी, वादा तो हम करते हैं कि फिर वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। जी हाँ, ऑन रेडियो मॉरिशस। शुभ रात्रि, शब बखैर और अपना ख्याल रखना।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो

पाकिस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।